0: செய்யும்.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: आज के लिए वेदर में बताया जाता है मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट 10 डिग्रीज तक और साथ में सनसेट एट 5:46 PM. इसके अलावा पीरियड्स ऑफ रेन पॉसिबल है, इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहें और कीप वार्म.

0: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. Main hu abhi aapke saath mein on a beautiful Thursday, jabki aaj hai 13th of August, aur hamara aur aapke saath abhi se lekar 3 tak rahega. Ye hai Lunchbox ka garma-garam program aapke liye, hot and sizzling, save karne ke liye aaye hain, on your favorite dial, 104.2 FM, saath mein Rova par, aur abhi se lekar 3 tak, hamara aur aapka pyara sa saath rahega. साथ देते रहिएगा और सुनते रहिए हम कीप हमिंग और आपका डे जैसा भी हो सुबह से अभी से लेकर शाम तक आपका कंपनी करने के लिए आ गया हूँ. ढेर सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपके साथ में शेयर करने के लिए. ये सभी कुछ हमारे साथ में, हम पर बस बने रहिए.
1: बचाओ क्या

0: हम पर यह है लंच बॉक्स, मैं हूं अवि आपका साथी। और कुछ लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है रात को सोने में। जी हाँ, आप कितने ही जल्द जाकर सो जाते हो, शायद 8 बजे या 9 बजे रात को, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इंटेंशन होता है टू हैव अ गुड स्लीप, ये इंटरप्ट हो जाता है शायद 2 बजे सुबह या 3 बजे सुबह, जाकर आपकी आँख वापस खुल जाती है एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गो बैक टू स्लीप। तो अगर जो आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकती है और कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हो। यह सभी कुछ जबकि प्रोफेसर ग्रांट स्कोफील्ड ने शेयर किया है सीक्रेट्स टू अ गुड स्लीप एंड हाउ टू अटेन इट, बस थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
5: तो फिर देर किस बात की? बुला रहा है
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी,
3: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
9: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
13: Showerdome.co.nz.
14: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
15: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company.

0: chance to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
1: The award goes to Indelible Homes.
0: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
3: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Child Care is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Child Care Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक. हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शो वन. माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड.
3: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे. कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA. दैट्स HIRA. और विजिट assure1.co.nz. Northernville Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
10: हम office shout out.
12: हम पर यह है लंच बॉक्स और ऑफिस शाउट आउट में हमारे पास में मैसेज किया है अमित ने. अमित है फ्रॉम अन्नपूर्णा किचन और आपका मैसेज आया है कि आप अपना लंच कर रहे हैं और ऐसे में हम के साथ में जुड़े हैं. लंच बॉक्स को आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. शुक्रिया दोस्त, इसी तरह से हमारा साथ देते रहे. और थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने स्लीप हैबिट्स को, अपने पैटर्न को बदल सकते हैं, इसको बेटर बना सकते हैं बाय मेकिंग सम स्मॉल चेंजेस. बस सुनते रहिए, इसके बारे में थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे.
8: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

हम पर अरिजीत सिंह के बाद में आपको बता दें, जबकि बातें हो रही थी हाउ टू फिक्स योर स्लीप पैटर्न्स, तो प्रोफेसर स्कोफिल का कहना है कि दे आर सम लिटिल वेज जहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो टू हैव अ गुड नाइट ऑफ स्लीप. तो पहला ये बताया गया है कि आप अपने कमरे से फोन को बाहर करें, क्योंकि आप जितना स्क्रॉल करोगे उतनी ही आपकी जो ब्रेन है ये हाइपर एक्टिव रहेगी. तो जबकि सोने से पहले अगर जो आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलने लगता है कि इट हैज़ टू नाउ वाइंड डाउन. इसके साथ में दूसरा ये बताया गया है कि यू हैव टू गो ईजी ऑन योर एल्कोहल. अगर जो आप एल्कोहल का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको मिनिमाइज करें, इसको कम करें, क्योंकि इससे आप इसको मिनिमाइज करने से इट विल हेल्प यू टू हैव अ गुड नाइट ऑफ स्लीप. इसके साथ में ये भी बताया गया है कि अगर जो आप दिन में एक्सरसाइज करते हो, आप एक्टिव रहते हो फिजिकली, तो ये भी आपको रात को विल हेल्प यू आउट टू हैव अ गुड नाइट ऑफ स्लीप. आपको सोने में बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि जबकि आप फिजिकली टायर्ड रहोगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा टू डोज ऑफ टू स्लीप. ये कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि वी नीड टू डू समथिंग फिजिकल इन द डे, लेकिन हाँ, बिजी स्केड्यूल के बाद में शायद कहीं ना कहीं हमको ये मौका नहीं मिलता है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी समय बनाएं. और ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ में शेयर कर रहे थे, जो प्रोफेसर स्कोफिल ने बताया है कि देयर आर सम चेंजेस जो हम खुद कर सकते हैं टू हैव अ गुड नाइट ऑफ स्लीप. देयर यू गो.

0: दिस इज मी अवी कीपिंग यू कंपनी ऑन हम, और यह है लंच बॉक्स का कारोबार। और लंच बॉक्स की मैजिक क्या है मैं आपको बताऊं कि एक के बाद एक यहां पर जो लाइनअप रहती है आपके लिए यह चलती रहती है टिल थ्री, जैसे कि अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे चटनी शॉट्स में कुछ इंटरेस्टिंग। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम।
4: Forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hum boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
8: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together.
9: There's even a name for it.
8: Dogetherness.
9: Oh, cute.
8: So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together.
9: This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
10: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
11: Join the Tribe!
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
11: join the Tribe!
12: 99 Centaur here with more 99 cent deals this week at Pack and Save. Yeehaw! Ah, come here. Ah, gotcha. Yeah, this isn't my first rodeo. 99 cent week on now at Pack and Save.
13: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire Unit, now $165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
14: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
15: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
16: And award goes to Indelible Homes.
15: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
17: Kahani of Indelible Homes.
18: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
19: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Lunchbox with Keithan.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
3: हम चटनी शॉट्स।
0: हम पर लंच बॉक्स में ये है चटनी शॉट्स, और आज के चटनी शॉट्स में एक ऐसी टॉपिक को लेकर आए हैं विच विल ऑलवेज बी रिलेटेबल, क्योंकि आप में से कई सारे प्राउड पेट ओनर्स है, तो आपके लिए, जबकि एक रिपोर्ट आया है वेट कैट लिटिल वुड ने कहा है, दे आर सम सटल साइंस जहां पर आप देख सकते हो कि आपके पेट्स अब शायद खुश नहीं है या फिर दे मस्ट बी अंडर गोइंग सम प्रॉब्लम्स। और ये साइंस क्या है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसे आपके पेट्स बिल्कुल लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपने स्लोली नोटिस किया है कि आप ये दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द सेम एक्टिविटीज़, यानी कि अब वो एक्टिविटीज़ इनको उतना एक्साइट नहीं कर रही है। तो इस वेट प्रोफेशनल का कहना है कि ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो ये एज हो रहे हैं यानी कि इनकी उम्र बढ़ रही है तो अब ये एक्टिविटी उनको उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है, और दूसरी ये बताई गई है रीज़न कि कहीं ना कहीं दे आर हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर जो आप नोटिस कर रहे हैं आपके पेट्स उस एक्टिविटीज़ में या किसी भी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं एंड दे हैव नो वे टू एक्सप्रेस, तो आप ये समझ लेना कि ये आपसे बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दे कुड बी हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में इट विल बी अ टाइमली विजिट टू द वेट्स दैट यू हैव टू मेक ताकि आपके पेट्स एक बार फिर वापस बिल्कुल लाइवली और एक्टिव रहे आपकी ज़िंदगी में। तो जबकि ये अनबोलता है यानी कि आपके लिए कुछ आपसे कह नहीं सकता, दे कैन ओनली एक्सप्रेस, तो शायद ये भी एक साइन है, टेल टेल साइन कि नॉट एवरीथिंग इज वेल। तो इस पर भी आपको बिल्कुल जल्द से जल्द एक्ट करना होगा।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: हम पर लंच बॉक्स में अब आपके लिए लेकर आए हैं थ्रोबैक, जहां पर आपको बीते दिनों में लेकर चलते हैं। और इस बार के लिए अगला जो ये नंबर है खास आपके लिए

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के लिए वेदर में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्रीज और साथ में सनसेट एट 5:46 पीएम और साथ में शावर्स पॉसिबल है आपके एरिया में।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे यू आर लिसनिंग टू अविनीत।
1: हम पर आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स अभी के साथ में और जबकि जस्ट आफ्टर वन इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं, जबकि तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा। चलो इस हवा की शुरुआत करते हैं हम बोर्डिंग कॉल 2026 के साथ में। जी हाँ, हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन। आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप, इट जस्ट कुड बी वन बोर्डिंग कॉल अवे, जहां पर आप 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु जीत सकते हैं विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। और कैसे आपको एंटर करना है, बस हमको एवरी वीकडे आप सुनते रहें और अपने कान को खुले रखें टू हियर आउट द स्पेशल बोर्डिंग कॉल। जो बोर्डिंग कॉल है ये आपके लिए सुबह 8 बजे के आसपास, साथ में दिन में 11 बजे के आसपास और इसके अलावा 1 PM के आसपास और साथ में 5 PM इन द आफ्टरनून, इसी आवा के आसपास आपके लिए स्पेशल बोर्डिंग कॉल प्ले हो सकता है। और जैसे ही आप इस बोर्डिंग कॉल को सुने, आपके पास में 60 मिनट्स टाइम है टू हेड टू रोवा और टाइप करें बोर्ड नाउ और फिर सबमिट क्लिक कर दें। और इसके अलावा अगर जो आप चाहते हैं कोई एक ऐसा लिंक जो आपको मिल जाए इजीली, तो BC लिखकर 5599 पर भेजें ताकि आपको जो कंपटीशन पेज लिंक है ये आपको इजीली आपके फ़ोन पर आ जाए। बस दैट्स इट, इतना ही करके आप ड्रो में शामिल हो जाएंगे टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे। डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolmans.com. T's and C's do apply.
0: Bachao kya?

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में लेकर आया हूं लंच बॉक्स। और आपको बता दूं, जबकि ढेर सारे प्रमोशन हम पर चल रहे हैं, रक्षाबंधन ऑन एयर के बारे में खासकर, जबकि आपके पास में मौका रहेगा $250 कैश इनाम जीतने का जब भी आप रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू में भाग लोगे। हमारे जो आरजेज हैं यहाँ पर आपको अपने अपने शो में मौका देंगे लाइव ऑन एयर, एज द नेम सजेस्ट, सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देने के लिए। और सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू में आप सिर्फ वही बताएं जो आपके अपने सिबलिंग के बारे में पसंद है, या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आप पुट ऑफ हो जाते हो, और बस इतना ही करके आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। और 28 अगस्त को जब ये ड्रॉ रहेगा, दो लकी विनर्स ठहरेंगे जो $250 का जो कैश इनाम है ये जीत सकेंगे। तो इस मौके को बिल्कुल मिस ना करें। जब भी आपको मौका लगे यहाँ पर हमारे आरजेस इसके बारे में आपको बताए, 0800-004-866 पर आप कॉल करें। और हाँ, लगे हाथ आपको ये भी बता दे कि कमिंग अप नेक्स्ट इज रेंट लाइन, लंच टाइम रेंट लाइन, इसके बारे में जो टाइटल है यानी कि आज की जो टॉपिक है बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम।
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a

0: 100-kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
1: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
2: Join the Tribe!
1: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
2: join the Tribe!
3: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
5: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
6: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
5: आवारापन 2, रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन अगस्त 14th. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
7: Andy didn't think he needed a DVS system.
8: Nah, we're all right, aren't we?
7: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
9: Yeah, Dad.
7: So Andy got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: With Ketan.
11: मुझे पसंद है लड़का.
10: हम. Lunchtime Rant Line.
12: हम पर यह है लंच बॉक्स और मैं हूं आपका साथी अवि. और आज के लिए रेंट लाइन में कुछ एक ऐसी टॉपिक लेकर आए हैं जो हम सभी पर आप बीती है. जी हां, आज की जो टॉपिक है खासकर ये आपके लिए है. क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ जहां पर किसी ने आपसे कुछ बोरो किया है और फिर लौटाना भूल गए. ये कुछ भी हो सकता है, शायद पैसे हो सकते हैं या फिर कोई टूल हो सकता है या फिर किचन का कोई सामान हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग जहां पर आपसे समय आने पर बहुत ही प्यार से मांगा गया लेकिन फिर ओवर द टाइम ये लौटाना भूल गए और फिर वापस आपको उनको याद दिलाना पड़ा. तो ऐसा अगर जो आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है और आप चाहते हैं कि आपके मैसेजेस को मैं ऑन एयर पढूं तो 5599 इज द नंबर. यहां पर आप जरूर टेक्स्ट करें.
10: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर दिस इज लंच बॉक्स विद अवि और जबकि रेंट लाइन में हमने टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ में कि कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जहां पर किसी ने कुछ आपसे बोरो किया और फिर लौटाना भूल गए। तो ऐसे में दो मैसेजेस आए हैं जहां पर आशु लिखते हैं और मैं आपके लिए जल्द से पढ़ देता हूँ। आशु लिखते हैं, माई मेट वंस बोरो $300 ऑफ मी एंड लिटरली आई हैड टू बेग एंड बोरो फॉर हिम टू रिटर्न इट बैक एंड इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू डू दैट। तो हाँ आशु, ऐसा होता है कि वंस आप किसी को लेंड कर देते हो पैसे तो फिर वापस मांगने के लिए आपको खुद बोरो या बेग करना पड़ता है। इसके साथ में सुनीता ने भी मैसेज किया है। सुनीता लिखती है, वंस समबडी बोरोड माय ब्लेंडर एंड आई डिड लेंड इट टू देम एंड ओवर टाइम दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट एंड व्हेन आई आस्क्ड देम और रिमाइंडेड देम दे सेड दे डिड नॉट हैव इट। अपॉन माय नेक्स्ट विजिट आई कुड क्लियरली सी इट सिटिंग ऑन द किचन काउंटर and then I reminded them that it belongs to me and it was returned. तो देखिए ऐसा ऐसा भी होता है। और जबकि रेंट लाइन में ये दो प्यारे मैसेजेस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इसमें कहना कहीं एक सीख है कि अगर जो आप देते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको वापस मिलेगी। और कैसे ना, वो कहते हैं ना कि कभी कभी ना बोलना ही सबसे बड़ी बात होती है या सबसे डिफिकल्ट बात होती है।

0: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बोर्डिंग कॉल फॉर सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 104.2 FM टू वनुआटू। बोर्डिंग इज नाउ इन प्रोग्रेस। प्लीज प्रोसीड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ।
2: थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू। विजिट flysolomons.com।
3: लंच बॉक्स विद केतन।
4: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
5: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
6: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
7: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
8: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
7: क्या? कौन है? अरे
8: Hunua और Waitakere।
7: अच्छा Hunua west में?
8: किधर है Hunua?
5: The Breakfast Show with VJ and Pooja।

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you'd much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August, and you could win one of 25 $200 Prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
0: Coming soon, the Volkswagen 5-day sale is on from the 18th to 22nd August. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win a Samsung TV worth 7699. See your local dealer for more info. T's and C's apply. Volkswagen.
9: Lunchbox with Ketan.
10: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
9: Iske piche. Lunch ke manch pe.
11: लंच बॉक्स में, लंच के मंच पे मैं हूँ आपका साथी अवि. और जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डायल है, ऐसे में आपके साथ में कुछ बॉलीवुड की गॉसिप्स भी शेयर कर लेता हूँ. जबकि दो यू कहें अवेटेड मूवीज़ के ट्रेलर्स ड्रॉप हुए हैं. पहला तो मिर्ज़ापुर द मूवी, इसका भी जो ट्रेलर है ये रिलीज़ हो गया है. इसके साथ में हैवान का भी ट्रेलर रिलीज़ हो गया है. हैवान में आप अक्षय कुमार और साथ में सैफ अली खान को देख पाओगे एक बार फिर साथ में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रिया दर्शन ने. तो आप हमें ये बताएं, मैंने तो अभी तक कोई भी एक भी ट्रेलर्स इनमें से नहीं देखे. अगर जो आपने देखी है तो आप हमें ये बताइए कि कौन सी ट्रेलर आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, हैवान की या फिर मिर्ज़ापुर द मूवी की. 5599 पर ज़रूर शेयर कीजिएगा. और या फिर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो नाउ इज़ एन अपॉर्चून टाइम. जबकि लंच बॉक्स है, ऐसे में अ बिट ऑफ बॉलीवुड, तो आप अपने ट्रेलर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Welcome, Jiggy.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: हम पर यह है लंच बॉक्स गर्मा गर्म। मैं हूं अभी आपके साथ में और 104.2 FM साथ में रोवा पर आप तक लेकर आ रहे हैं थ्रोबैक। इसे भी एंजॉय कीजिए।

0: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अभी जबकि जस्ट आफ्टर टू, तो ऐसे में तीन बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। तीन बजे के बाद आपके साथ में सिंडी जुड़ जाएंगी, लेकर आएंगी कॉफी ब्रेक। लेकिन अभी के लिए इस आवा की शुरुआत करते हैं। कुछ और गाने भी है लाइनअप में जो आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। मैं हूं अभी आपके साथ में ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM, साथ में रोवा पर
1: बचाओ क्या।

यह है लंच बॉक्स विद अवी ओनली ऑन हम। और अब जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ये काफी इंटरेस्टिंग है। खादी, आपको ये मटेरियल या फैब्रिक मालूम होगा जो ट्रेडिशनली हैंडस्पन किया जाता है या फिर हैंड वोवन किया जाता है। इस फैब्रिक को लेकर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया गया है।

0: राइट हियर इन ओकलैंड। टिकट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेकआउट करें nzfashionweek.com। और इसके साथ साथ आपके पास में मौका है जब आप डबल पासेस भी जीत सकते हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ खादी लिखकर KHADI लिखकर 5599 पर अपने नाम के साथ में भेज दें एंड यू कैन विन योरसेल्फ डबल पासेस टू दिस अमेजिंग अमेजिंग शोकेस।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना।
3: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
11: Farmers Red Dot sale is now on with 50% off Red Dot clothing, 60% off Red Dot Sleepyhead chiropractic beds, 40% off Red Dot beauty and lingerie, and 40% off Red Dot men's underwear. Farmers Red Dot sale is now on. Conditions and exclusions apply.
12: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire unit, now 165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
13: कभी भी कहीं भी। लंच बॉक्स विद केतन।
14: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
13: इसके पीछे
1: हम
13: स्किप या रीप्ले।
0: लंच बॉक्स में मैं हूं अभी आपके साथ में और आपको बता दूं कि अब समय हुआ आपके साथ में स्किप या रिप्ले खेलने का। और स्किप या रिप्ले में जो ऑप्शंस आपके पास में आज है वो है जुबिन नौटियाल की आवाज़ में जिंदगी कुछ तो बता, आपको ये सुनना है, या फिर अरिजीत सिंह की आवाज़ में हम नशे में तो नहीं, ये सुनना है। 5599 पर ज़रूर मैसेज करें और जिसका वोट, जिसका पकड़ा भारी रहेगा वही आज बजेगा आपके लिए स्किप या रिप्ले में।
13: Hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: skip या replay।
1: हम पर स्किप या रिप्ले में और जो वेडिक्ट आया है, लोगों ने आउटराइट चूज किया है अरिजीत सिंह और साथ में तुलसी कुमार की आवाज में सुनना हम नशे में तो नहीं है, जबकि प्रीत और साथ में रे आपने भी मैसेज किया है इस गाने की फेवा में। इसके अलावा आहुति आपने भी मैसेज किया है और केश आपका भी जवाब आया है, आपने भी लिखा है कि हम नशे में तो नहीं ही सुनना चाहते हैं। तो चलो ये गाना आपके लिए प्ले करते हैं अब कमिंग अप नेक्स्ट।

0: हम पर ये है लंच बॉक्स और आपको बता दे लगे हाथों रक्षाबंधन जो हमारे सोशल मीडिया पर कंपटीशन प्रमोशन चल रहा है इसके बारे में, जहां पर कूल हार्ट कैश है $300 जीतने को और आपको सिर्फ क्या करना होगा, आप जो सिबलिंग्स है आपके लिए कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए बिल्कुल यादगार होगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो बिल्कुल सेंटिमेंटल होगी और उसे देखते ही आप अपने रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को, नाते को आप बिल्कुल चेरिश करते हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है उसी ऑब्जेक्ट को लेकर हमारे हम फेसबुक पेज पर आपको जाकर जो राखी का जो पोस्ट है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वो उस ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर है अपलोड करना है और उसके बाद में सिर्फ दो ही तीन लाइन आपको लिखने हैं कि क्यों ये ऑब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है और आपके रिश्ते के लिए क्यों बिल्कुल स्पेशल है और अपने सिबलिंग को टेक कर लीजिए। बस इतना ही करके आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे जहां पर $300 इनाम आपके हाथ लग सकता है। जो विनिंग स्टोरी है ये पढ़ा जाएगा लाइव होने ऑन फ्राइडे 28th of August और विनर को दिया जाएगा $300 का गिव अवे। हाँ, जबकि मैं देख रहा था तो अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने यहाँ पर जो अपने स्टोरीज है अपलोड किए हैं और अगर जो आप इनको कंपटीशन या टक्कर देना चाहते हैं ताकि यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कम्पीट कर रहे हो $300 कैश इनाम के लिए, तो आप भी जल्द से अपना जो फेवरेट ऑब्जेक्ट है या फिर जो चीज़ है जो आपके भाई या बहन की याद दिलाती है इसके बारे में जाकर जल्द से लिख दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, T's, C's, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
8: We've all been there. 6 p.m., traffic sucks, and that chicken for dinner? Still frozen.
9: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce ready in the fridge when you are.
8: Take back dinner time with HelloFresh.
10: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापातोएतोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा,
11: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
2: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अमास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अमास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर। 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
5: Keep business moving with the American Express Gold Rewards Business Card. Pay suppliers today and extend your cash flow by up to 55 days. Plus, with Reward Pay, you can pay almost any supplier in New Zealand and earn points on payments. Get started with 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex Travel. Search Amex Business to discover a more rewarding way to pay suppliers. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. Membership rewards, T's and C's apply and Reward Pay enrollment required.
1: Non-stop Bollywood.
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
17: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
18: इसके पीछे
1: हम Tech Talk.
0: हम पर लंच बॉक्स में ये है टेक टॉक, जहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। और अभी हाल ही में रोबोटिक्स के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर फेर्नांडो आओचिन का कहना है कि यहां पर ऐसे रोबोट्स को आगे चलकर तैयार किया जा सकता है विद न्यू टेक्नोलॉजी, जहां पर इनकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल सिमिलर रहेगी टू ह्यूमंस। इनको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाएगा, जबकि नेक्स्ट स्टेज इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन फार्मिंग ऑटोमेशन, यानी कि जहां पर फार्म पे अभी हार्ड लेबरर्स काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेसर यानी कि फेर्नांडो का कहना है कि आगे चलकर रोबोट्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग बिल्कुल ह्यूमन की सिमिलर रहेगी, एक ही तरीके से ये काम कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट्स जो सामने आ रही हैं, और इन्होंने कहा है वेरी कॉन्फिडेंटली कि आप इनको बिल्कुल प्रोग्राम कर सकते हो ताकि ये फार्म पर आप ही की तरह यानी कि ह्यूमंस की तरह हार्वेस्ट कर सके, और इसके अलावा प्रूनिंग कर सके, और साथ में और सारे जो ड्यूटीज़ है, काम है, ये फार्म पर अलोंगसाइड ह्यूमंस कर पाएंगे। तो स्ट्रेंजर टाइम्स, और ये सभी कुछ आने वाले सालों में शायद आप देख सकेंगे। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप न्यूजीलैंड में ड्राइव कर रहे हो और फार्म पर आप देखते हो इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस जो फ्रेंडली स्माइल और वेव करते थे आपको, आप रोबोट्स को देखोगे वेरी यू नो नॉर्मली अपने काम को करते हुए, है ना जी।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Welkom, Jackie. Ham. Throwback.
1: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: हम पर अब समय हुआ कि आपको सुनवाए थ्रोबैक, लेकिन उससे पहले जल्द से आपको भजन जेम्स के बारे में बता दे, जबकि रवितेश देव को प्रेजेंट कर रहे हैं साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट, और ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए फ्यूजन भजन्स और कीर्तन्स परफॉर्म्ड बाय रवितेश देव ऑन अ लाइव बैंड. जी हाँ, लाइव बैंड पर यह आपके लिए भक्ति रस म्यूजिक को पेश करेंगे, और ये सभी कुछ आप देख सकेंगे 22 अगस्त को एट 7 PM वैदिक सेंटा 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोए ओकलैंड में. टिकट्स आर सिर्फ $30. साथ में बच्चे जो अंडर द एज ऑफ 5 है इनके लिए एंट्री फ्री है. स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी यहां पर बेचे जाएंगे. टिकट्स के लिए eventbrite.com, जेस फ्रेश पपटोए, वेली फ्रेश पपटोए और साथ में शिव प्रसाद किल्स्टन आप जा सकते हैं. जितने भी प्रोसीड्स रहेंगे इस इवेंट से, ये दिए जाएंगे सीधे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी. और इसी के साथ हमारा भी यहां से जाने का समय हुआ. थैंक यू सो मच, आपने साथ दिया. आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी 12 पर, लेकर आएंगे एक और एक सेगमेंट लंच बॉक्स का. इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
3: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में. उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
3: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजंस. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
5: New Zealand, a large Australian retailer, cancelled their sofa order and Big Save got it. So today, you get half-price sofas. Get 50% off selected sofas. Yes, 50% off. We've got a four-seater chase sofa, only $19.99. Save a massive $2,000. Plus, get a three-piece recliner suite, now only $17.99. Get 50% off selected sofas today. Stock is very limited, only at Big Save.
6: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
10: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
11: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
10: Well,
11: within my budget?
10: Zillow? Zillow by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
11: Price?
10: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
11: Zillow. I like the sound of that.
10: Discover the Zillow difference at zello.co.nz.
12: Knock, knock. It's me, Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
0: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Christopher Luxon maintains he does not want to work with the Opportunity Party. The latest One News Varian poll puts Top on 8%, well above the threshold to enter Parliament. Asked whether he's still ruling them out, Luxon insists their policies are not aligned with Nationals.
14: Another 1.75% land tax, making every New Zealander a beneficiary. Those are policies that do not fit with our agenda. We are a party that wants less tax, not more tax.
13: A rising number of homes are reselling for a loss. Around 13% did so in the 3 months to June. Coatality's Kelvin Davidson says, unlike in the global financial crisis, it had been stagnating for years.
15: Compared to the GFC, we're looking at probably higher credit standards to some extent, and we're looking at less of an adjustment in employment.
13: A Wairarapa school principal is on leave, with the board urging the community not to speculate on the reasons. RNZ reports that in a message to families, the Masterton Intermediate Board says it's not able to comment on confidential employment matters or on any processes that may be underway. Several Latin music stars will hold a benefit concert for those impacted by the devastating earthquakes in Venezuela and Colombia. Acts including Marc Anthony are set to perform at United for Our Own, which will be held over the weekend in Miami. To sport, after all those questions about his eligibility and his omission, 56 test, first five, Richie Mo'unga is off to join the All Blacks in South Africa as the injury replacement for Billy Proctor. Rugby with shift four. And Kiwi swimmers on the first night of finals at the Pan Pacific Championships in California. Erica Fairweather was third in the 200 metres freestyle, Zoe Pedersen seventh in the 50 metre butterfly.
0: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 16.3 डिग्रीज हो चुका है और आज ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. वैसे कल भी बारिश होने के चांसेस रहेंगे. सनसेट आज का 5:46 पर.
0: The beat of Bollywood.
16: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee break with Sandy.
1: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हैविंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा ड्राइव शो में. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. आज डे टाइम ऐसे बहुत ह्यूमिडिटी थी वेदर में, काफ़ियों के लिए वार्म वेदर भी था आज का वैसे. बट यह आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक द टेम्परेचर गोना ड्रॉप डाउन अगेन, लाइक 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज ओवरनाइट ऐसा टेम्परेचर भी रहने वाला है. कॉफ़ी ब्रेक में आज ऑल्सो कैरम के बारे में बात करेंगे. सो न्यूजीलैंड में एक कैरम टूर्नामेंट होने वाला है, तो इसके डिटेल में हम बातें करने वाले हैं कि कैरम आपकी लाइफ में अगर मायने रखता था कभी, एंड आपने कभी कैरम बोर्ड कभी खेला है, सो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड.

0: Hollywood's most wanted.
1: Gundi ghar dao ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:15 हो चुके हैं एंड आरजू इज बैक. गुड आफ्टरनून आरजू, कैसी हो?
4: गुड आफ्टरनून चीकू, आप कैसे हो?
3: एकदम फर्स्ट क्लास. यू वाज अवे ना लास्ट वीकेंड पे?
4: जी, आई वेंट टू, बहुत मजा आया. वेंट डाउन टू साउथ आइलैंड वेस्ट कोस्ट में. वो होकिटिका आपने सुना है? होकिटिका और फ्रेंड्स जोसेफ वाली जगह में,
3: वो बहुत ब्यूटीफुल है.
4: एक्चुअली में आई थॉट हम वो करने वाले थे वो ग्लेशियर हाइक, बट नहीं, हमारी सिर्फ हाइक था. बट स्टिल सेइंग दैट बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल.
3: इट वाज गुड.
4: या
3: गुड एक्सपीरियंस.
4: गुड एक्सपीरियंस.
3: ठंड कैसी थी?
4: ठंड, यू नो, ऑकलैंड में ज्यादा ठंड थी. यू नो,
3: मैं वही पूछने वाली थी कि लास्ट वीक इट वाज फ्रीजिंग
4: क्रेजी. सो वो लास्ट कोल्ड था. सो जब भी हमने लैंड किया था उधर जाके, वी थॉट इट वाज गोना बी मोर कोल्ड, बिकॉज़ ऑब्वियसली लिटरली लास्ट नाइट हमने वो एक्सपीरियंस किया था कि इट वाज सो कोल्ड इन ऑकलैंड. सो वी थॉट कि साउथ आइलैंड यूजुअली इज कोल्डर, नो? सो वी लाइक, ठीक है, वी टेक ऑल अ जंपर, हाफ लाइक पफर जैकेट वगैरह वगैरह. जाकर इट वाज एक्चुअली नॉट दैट बैड. एक जैकेट, एक आई हैड अ हुडी, उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ जैकेट. And I was fine. I didn't need like puffer or anything.
3: Wow.
4: It was fine. It was beautiful though. Foggy tha. It was still a bit raining, but apparently 365 days mein 210 days it's always raining. So kind of saw the reality.
3: Haan,
4: aisa hai udhar.
3: To abhi bhi rain ho rahi thi proper.
4: Haan, like it was like raining, it'll stop. And then again it'll drizzle. It was like a wet weather.
3: And there's also hiking.
4: Hiking bhi hai, bahut sundar.
3: So how do you hike? It's rainy, rain hai, bhi hiking. Karte.
4: Hiking karte. And like, you would think ki you can't see reflection. Because ek lake tha, we walked and then even though it was foggy, I thought kuch bhi nahi dekhenge. Like we can't see anything. So we went there, but oh my god, the mountains and even the foggy reflection pani mein tha, and it was like beautiful. Because at that point it wasn't raining so much, so there was no like pani ki.
3: Aur pani mein bahut saaf hai na wahan pe, like it's very clear.
4: So clear and it was so nice. Very maza aaya. Bahut
3: so fun. Franz Josef
4: ji.
3: Yeah, so guys, अगर आप कभी गए हैं फ्रांस जोसेफ तो आप भी शेयर कीजिए. अदरवाइज यू हैव अ रिकमेंडेशन नाउ, यू कैन गो देयर.
4: Yeah, 100%.
3: But yeah, be prepared because rainy रहता है अगर वहाँ पे. So if you want to do the hiking over there, and apparently hiking is quite famous over there. So you have to be prepared. Right shoes मेरे को लगता है कि इसके लिए होने चाहिए.
4: Right shoes जी, इसके लिए होना चाहिए.
3: अगर hiking करना है तो shoes आपके अच्छे होने चाहिए, because slippery होगा ना वहाँ पे.
4: मेरी दोस्तों ने तो स्नीकर्स लेके आए थे. एंड देन देयर वाज अ पार्ट की जब हम वी हैड टू क्रॉस अ रिवर, लाइक अ लिटिल वन, बट एंकल तक. एंड देन ऑब्वियसली उनके जूते तो वेट फ्रॉम द मोमेंट. लकीली मेरी जूते में देयर वाज बिट लाइक वाटरप्रूफ करना, सो कुछ भी, आई वाज स्टिल वार्म, आई वाज फाइन. बट
3: या
4: बट यस, बट इट्स नो बिग डील. आप जा सकते हो स्नीकर्स में भी, बट वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल.
3: यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एग्जैक्टली. वेल, आरजू भी यहाँ पे है. आरजू से एक और टॉपिक के ऊपर एक्चुअली मैं मुझे बात करनी है, बट या वी विल गो देयर, बिकॉज मेरे को वो नाम अच्छे से पहले सर्च करना है बिफोर मैं

0: आरजू के साथ इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करनी है. हम सब ने इस न्यूज के बारे में पढ़ा और काफी लोग इनको जानते भी है जिन्होंने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है. एंड ही इज फ्रॉम नेपाल. आरजू, टेल मी अबाउट निम्स पूर्जा.
1: Names were I think one of the most legendary person and like mountaineering community, especially since Tenzing Norgay. You know, Tenzing Norgay, everyone knew Tenzing Norgay. Obviously he was the first person with Sir Edmund Hillary to climb the Mount Everest. And there's been so many incredible mountaineers since then. But to take it to the world internationally, itna hamari Nepal ko, and also to bring the Sherpas to, you know, like respect the way.
0: Maine wo series dekhi hai Sherpas wali, Netflix pe hai wo.
1: Yeah,
0: very interesting series. Aur wahan pe unki struggle samajh mein aati hai. मतलब कि उन्होंने तो कितनी बार क्लाइम किया है माउंटेन्स को भी
1: किसी को भी नहीं पता.
0: है ये.
1: एंड लाइक ही वाज वन ऑफ दोस गाइस, लाइक आई गेस द मेन गाय जिसने शेरपास को इतना रिस्पेक्ट दिलाया सबसे. लाइक इट वाज जस्ट अबाउट दिस पर्सन क्लाइम्ड बट नेवर अबाउट द शेरपा. लाइक दे वर ऑलवेज देयर हेल्पिंग गाइडिंग. सो बहुत like he really put Nepal on the international map or uske upar obviously given the Sherpas the respect that they deserve.
0: Actually kisi ko pata nahi hota tha unke bare mein. Mujhe ye naam zyada nahi pata tha jab tak maine wo series nahi dekhi thi.
1: Maine bhi
0: Netflix pe.
1: Exactly, kyunki Nirmal Dai ki Nims Purza Dai ki bhi wo मूवी है नेटफ्लिक्स में जिसका नाम है प्रोजेक्ट पॉसिबल.
0: यस, वो अभी ट्रेंड कर रही है.
1: इट इज सच अ ग्रेट डॉक्यूमेंट्री एंड लाइक बहुत यू नो लाइक यू गेट सो इंस्पायर्ड रिगार्डलेस इफ यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन और नॉट, जस्ट लाइफ के लिए. क्योंकि आपको भी पता है वो फेमस कोट जो है
0: वो क्या था, इम्पॉसिबल वाला.
1: नहीं, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर. हाँ,
0: गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर.
1: या सो वो वेरी ट्रू है. एंड लाइक इट्स सो सो अनफॉर्चुनेट कि ही एंड ऑब्वियसली द अदर 9 क्लाइंबर्स सैडली पास्ड अवे. ब्रॉड पीक में
0: सो भी एवलांच जो हुआ था. सो ही एक्चुअली 14 हाईएस्ट माउंटेन्स इन्होंने क्लाइंब की है इन द वर्ल्ड इन 6 मंथ्स एंड 6 डेज. दैट्स अ रिकॉर्ड.
1: एग्जैक्टली. सो इसके बिफोर दैट द पर्सन हु क्लाइंबड इट हैड फिनिश्ड द 14 पीक्स इन 7 इयर्स.
0: ओह माय गॉड.
1: सो व्हेन ही वाज सेइंग कि I'm gonna attempt to do that, people around told him ye possible nahi hai.
0: तो पहले 14 माउंटेन्स गई थी 7 इयर्स में.
1: हां,
0: लाइक ही डिड इट इन 6 मंथ्स.
1: या.
0: Wow.
1: So he was like, I'm gonna that's why he named it Project Possible. And
0: so guys, if you want to check this out ki 14 highest mountains in the world jo inhone 6 months 6 days mein complete ki hai, you can check this Project Possible. And is 14 mountains mein Everest bhi hai, by the way.
1: Of course.
0: Just to let you know, K2 bhi hai isme, which is another one big one. So Everest bhi hai isme, and aur bhi thai sari hai actually mein. सो इन्होंने बहुत सारे फेमस लोगों की हेल्प भी की है समिट में. तो इन्होंने उनको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. इंडियन क्लाइंबर्स की इन्होंने हमेशा हेल्प की है, डेथ जोन में भी. सो ये इनके बारे में एक बार न्यूज़ भी आई थी कि ही इनकाउंटर टू डिस्ट्रेस्ड इंडियन क्लाइंबर्स कुंतल करार एंड बिप्लब इन द डेथ जोन. सो उनकी टीम ने वहाँ पे दे गेव देम देयर ऑक्सीजन एंड स्पेंड अराउंड 12 आवर्स ट्राइंग टू हेल्प वाइल वेटिंग फॉर द असिस्टेंस. सो
1: रिस्क करके भी अपना
0: सारा रिस्क करके. सो ऐसी चीज़ें भी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हमेशा की है, नॉट जस्ट क्लाइंबिंग ही क्लाइंबिंग की है, बट हेल्प अराउंड अ लॉट एज वेल.
1: एंड वन थिंग आई नोटिस्ड आफ्टर द पासिंग अवे, ऑब्वियसली I thought, obviously, for Nepali people like me, we know he's like a legendary person, a mountaineering industry, like, you know, community mein. But I didn't realize how much of an impact he had put, like, across
0: globally.
1: The world, globally.
0: Yeah.
1: I saw so many posts, like, you know, dusre countries ke people ki, and like, I was so like, wow.
0: Big celebrities jo the, wo post bhi. Kar rahe
1: the. I think, Bollywood say Sonam Kapoor ki bhi I saw a photo of his because unhone I think dinner they had together before few years back.
0: Maine apne friend circle mein do teen post dekhi thi actually mein.
1: Yeah.
0: Even maine bhi inke bare mein kafi post dekhi. Jin logo ko na ye mountains mein Mount Everest mein agar kisi ka dream hai ki base camp mein bhi jana hai, wo sab cheeze जो ये सब ड्रीम करते हैं उनको पता था इनके बारे में ऑलरेडी एंड मैनी ऑलरेडी न्यू बिकॉज ऑफ द सीरीज एज वेल
1: एंड मैनी वांटेड टू क्लाइम विद हिम एज वेल वो सब नहीं होगा.
0: सो या अगर आपको नहीं पता है दिस इज अनदर रिकमेंडेशन आपके लिए टू गो एंड वॉच. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच प्रोजेक्ट पॉसिबल एंड यू विल नो इस लेजेंड के बारे में हु क्लाइम 14 हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड इन 6 मंथ 6 डेज.

36 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रही है फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट के लिए जो कि 22 एंड 23 अगस्त को होने वाला है. सो अगर आपने कभी अपनी लाइफ में कैरम बोर्ड खेला है तो हमने बात की है इस हमने पॉडकास्ट किया है रिसेंटली अनफिल्टर्ड में पंकज मोंगा के साथ जिन्होंने फॉर्म किया है नेशनल ये न्यूजीलैंड में नेशनल कैरम एसोसिएशन ये इन्होंने यहाँ पे न्यूजीलैंड में बनाई है. तो हमने इनसे सवाल पूछे भाई बाकी सब चीज़ों को छोड़िए कैरम बोर्ड ही क्यों बिकॉज कैरम बोर्ड का नाम जैसे ही हम सुनते हैं एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है अपने बचपन के साथ कनेक्टिविटी होती है. सो इन्होंने बहुत सारी बातें इसके बारे में शेयर की कि कैरम बोर्ड के साथ उनका नाता कितना पुराना है कौन कौन सी कंट्री के साथ है वर्ल्ड कप से लेके अभी न्यूजीलैंड में वो जो कैरम बोर्ड को लेके कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. सो अगर यू नो आप इस टूर्नामेंट में जाना चाहते हैं आपने एक बार सोचा देन यू आर थिंकिंग कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपको वहाँ पे जाके खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए आप तो इतने प्रोफेशनल भी नहीं हो शौक के तौर पे आपने कैरम बोर्ड खेली है तो ये पॉडकास्ट आप सुनिएगा देन आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए उसके बेनिफिट क्या हैं. सो जस्ट टाइप CB एज इन कैरम बोर्ड CB लिख के भेजेंगे 5599 पर तो आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा. अदरवाइज रोवा स्पॉटिफाई पे अनफिल्टर्ड विद सैनी एंड रुज़बे में ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. हमने इनसे यू नो प्रॉपर बातें की इन्होंने इनफैक्ट कैरम बोर्ड गेम के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो भी इन्होंने क्लियर की और उनका रीज़न इस क्लासिक स्पोर्ट्स को अलाइव रखने का. कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था कैरम बोर्ड तो यू नो ऐसे इंटरेस्ट के लिए हम खेलते हैं घर पे. सो इस सब के बारे में भी इन्होंने बातें की है. सो अगर आप एक सीजन प्लेयर हैं या फिर आप शुरू कर रहे हैं कैरम बोर्ड खेलना एक बेयरली सिर्फ एक स्ट्राइकर के साथ एक स्ट्राइक ही कर पाते हैं फिर भी इस गेम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कैसे इसके लिए आप ये पॉडकास्ट सुनो तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो CB लिख के भेजिए 5599 पर you will get the full episode. Keep calm because Punjabi swag is on.

3:46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. आज सिल्विया पार्क मॉल को एक्चुअली में लॉकडाउन किया गया था वहाँ पे, एंड अभी वैसे पुलिस ने कंफर्म किया है कि कोई भी थ्रेट पब्लिक के लिए वहाँ पे नहीं है. सो पुलिस ने, ऑकलैंड पुलिस ने बोला है कि जो आज इंसिडेंट हुआ सिल्विया पार्क मॉल में एंड इज एंडेड, देर इज़ नो रिस्क टू द पब्लिक. काफ़ी लोगों ने बताया है कि दे हैड बीन शॉपिंग एट द माउंट विलिंगटन सेंटर जब रिटेलर्स ने बोला कि दे वर टोल्ड टू लॉक देयर डोर्स. सो वन पर्सन सेड कि उन्होंने सुना कि व्हाट वाज बिलीव्ड टू बी अ गन शॉट्स. सो उसके बाद सेंट जॉन्स को भी अलर्ट किया गया था शॉर्टली बिफोर 3 PM एंड एम्बुलेंस जो थी एंड बाकी भी व्हीकल्स सिल्विया पार्क की ओर एक्चुअली में गए थे. सेंट जॉन ने वैसे रिवील नहीं किया है कि उन्होंने किसी पेशेंट को ट्रीट किया है या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी कन्फर्मेशन उन्होंने नहीं बताया. पुलिस इज स्टिल इन द एरिया, गनशॉट की भी ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है. बट या सो पुलिस ने लेकिन इतना ज़रूर बोला है कि कोई भी पब्लिक के लिए वहाँ पे थ्रेट नहीं है. अगर कुछ था भी तो पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया. सो देर वर रिपोर्ट्स ऑफ अ पर्सन विद अ गन एट सिल्विया पार्क दो, तो जिसके कारण पूरा का पूरा सिल्विया पार्क मॉल जो है ये लॉकडाउन में जा चुका था. द वर्कर्स has seen armed police and police dogs around the area as well. But yeah, for now, police ka ye kehna hai, confirmation di hai police ne ki there is no risk to the public. But Sylvia Park Mall jo hai, ye abhi bhi lockdown mein rehne wali hai. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.9 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 10 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहा, कल बारिश होने के चांसेस रहेंगे। सनसेट आज का 5:46 पर।

0: from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: 4:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू हैविंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड रुजबे अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा. सो कैसे हैं आप? आपका डे आज का सो फार कैसा जा रहा है? सिल्विया पार्क में जो लॉकडाउन हुआ है उसकी अपडेट वैसे आपने अभी न्यूज़ में भी सुना, लेकिन अपडेट मैं आपको बता देती हूँ. अभी तक पुलिस ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि हु वाज अ पर्सन, बिकॉज काफ़ी जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने विटनेस किया अ पर्सन वाज कैरिंग अ गन वहाँ पे, जिसके वजह से पुलिस ने सिल्विया पार्क को लॉकडाउन कर दिया था. लेकिन किसी भी स्टैबिंग की शॉट्स की कंफर्मेशन अभी तक पुलिस ने नहीं दी है. दो काफ़ी लोगों ने ये ज़रूर बोला है कि उन्होंने गन शॉट जो थे ये वहाँ पर उन्होंने सुने थे. सो होल मॉल इज़ इन द लॉकडाउन टिल नाउ. पुलिस अभी भी वहाँ पर है, बट कोई भी रिस्क नहीं है पब्लिक के लिए. जो भी कुछ था उसको जो इंसिडेंट जो भी था उसको रिपोर्ट करके उसको सॉल्व भी कर लिया गया है, बट स्टिल पुलिस इज़ देयर अराउंड द एरिया. सो इस समय पर इट्स अ ट्रैफिक टाइम एज वेल, उस एरिया के अराउंड काफ़ी ट्रैफिक भी हो जाता है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल अराउंड दैट एरिया, अराउंड सिल्विया पार्क एरिया, माउंट वेलिंगटन, तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से अपना जो ट्रैवल है ये आप प्लान कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है. सो ऑल्सो सेंट जॉन्स, इन्होंने भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्होंने किसी को ट्रीट किया है या फिर नहीं किया है फॉर द इंजरीज, इसके बारे में नहीं बताया है. दो पुलिस हैज़ बीन सीन पुटिंग अप वाइट शीट्स, उन्होंने वन ऑफ द कार पार्क के पास उन्होंने यू नो एरिया के ऊपर ऐसा कवर करने के लिए उन्होंने वाइट शीट वहाँ पर ज़रूर डाली है, बट आगे क्या है इसके बारे में पुलिस ने कोई भी कंफर्मेशन राइट नो नहीं दी है. द मीडिया ओवर देयर इज स्टिल वेटिंग एक्चुअली में कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है ये पुलिस थोड़ी देर में वहाँ पे प्रोवाइड करेगी. सो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ यहाँ पे हम ज़रूर शेयर करेंगे. बट या फॉर नाउ पुलिस ने बोला है कि वो जो एरिया है वो अवॉइड करने के लिए, बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक आपको वहाँ पर मिल सकता है.

ए साहिबा, गोवाने का खाने का पीने का और मस्त चिल मारने का, लेकिन दम दम बिल्कुल नहीं मारने।

4:13 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं, you're coming along with Sandy right now, and बहुत ही superb event आपके super city में होने वाला है, खादी beyond borders. So न्यूजीलैंड फैशन वीक जो है ये अगस्त के महीने में यहाँ पे होता है एवरी ईयर, और इस बार न्यूजीलैंड फैशन वीक में इंडिया यहाँ पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला है फैशन के ज़रिए, खादी के ज़रिए. सो खादी के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि खादी क्या

0: ये एकदम परफेक्ट होती है। सो इसलिए जो खादी है वो वहाँ से है, इंडिया से है। इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत बड़ी है बिकॉज ये एसोसिएट करती है इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट को। सो इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी एंड इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ही इनकरेज्ड इंडियंस की उस समय पर जब इंडिया इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी कि बाहर का कोई भी कपड़ा नहीं पहनेगा, यहीं का जो कपड़ा है, जो खादी है, वो पहनेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग ब्रिटिश मेड क्लोथ्स। सो उस समय वहाँ पर खादी को ज़्यादा प्रमोट किया गया था बिकॉज खादी रिप्रेजेंटेड सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी ऑफ लेबर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बेसिकली स्वदेशी। सो ये जो खादी है इसको प्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर न्यूजीलैंड में। सो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी डील है ये खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये इवेंट होने वाला है जहाँ पे 4 लीडिंग इंडियन डिज़ाइनर्स जो कि ऑकलैंड में शोकेस करने वाले हैं इस ट्रेडिशनल हैंडस्पन फैब्रिक को इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी आज के फैशन के हिसाब से। सो एक मेजर इंटरनेशनल फैशन नेम है एंड इसे हेडलाइन कर रहे हैं राजेश प्रताप सिंह जो कि इंडिया के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर हैं। सोफिस्टिकेटेड टेलरिंग के लिए जाने जाते हैं एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट के ऊपर ये एक मॉडर्न टेक देते हैं। तो इट्स गोना बी अ मोर देन फैशन शो। मैं तो डेफिनेटली इस फैशन शो के लिए जाने वाली हूँ टू एक्सपीरियंस दिस। आप भी अपनी टिकट ज़रूर बुक करवा सकते हैं nzfashionweek.com/tickets पे। आप खादी पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर इस इवेंट के लिए आप जो टिकट्स है ये बाय कर पाएंगे। 18 अगस्त को ये होने वाला है, ट्यूसडे की शाम को, एंड ये होने वाला है शेट 10 क्वींस वॉर्फ जो कि ऑकलैंड CBD में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल पास जीतना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी देयर, अगर आप यहाँ पे पास जीतना चाहते हैं, अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, खादी अपने नाम के साथ लिख के भेजिए 5599 पर KHADI। सो KHADI खादी के ये स्पेलिंग है, खादी स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599 और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है।
1: Wisdom, wit, and wild conversations.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Clothing.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi OnePlus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings.
3: Bunnings Warehouse.
2: Lowest prices are just the beginning.
4: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
5: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा
6: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
7: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke

0: कीजिए. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला. रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
5: 4:20 हो चुके हैं. अगर आपने अभी अभी ट्यून किया है तो सिल्विया पार्क का एरिया आपको अवॉइड करना है. पुलिस ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है बिकॉज वहाँ पे अभी भी जो मॉल है, सिल्विया पार्क मॉल जो है, ये अभी भी लॉकडाउन में है. दो पुलिस ने इसके बारे में कंफर्मेशन दी है कि देर इज़ नो रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी. जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था वो कंक्लूड हो चुका है. देर इज़ नो रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी बट यू विल हैव टू अवॉइड द एरिया बिकॉज ये ट्रैवलिंग टाइम होता है काफ़ी लोगों का. एंड वो एरिया पे कुछ एरियाज़ को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया गया है जिसकी वजह से देर गोना बी ह्यूज ट्रैफिक. तो आपको उस एरिया में काफ़ी डिलेज मिल सकते हैं. सो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं सिल्विया पार्क के अराउंड वो एरिया जो माउंट विलिंगटन एग्जिट भी आप लेते हैं तो इट विल बी एक्चुअली बेटर फॉर यू. आज 3 के अराउंड एक्चुअली में वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जब काफ़ी लोगों ने स्पॉट किया पर्सन को विद अ गन. एंड कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने गन शॉट सुने भी है जिसके बारे में पुलिस ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी. बट पूरा का पूरा मॉल को लॉकडाउन में कर दिया गया था. एंड या देयर इज क्वाइट अ पुलिस ओवर देयर. काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे है एंड एम्बुलेंस भी है वहाँ पे. सेवरल पीपल अभी भी वहाँ पे मॉल की जो कार पार्क है वहाँ पर है. एंड कॉर्डन ऑफ जो कॉर्डन टेप जो है उसे एक्चुअली में काफ़ी एरियाज में वहाँ पे लगाया गया है. अभी कोई भी कमेंट पुलिस ने या फिर सेंट जॉन्स ने इसके बारे में नहीं किया है. एवरीवन इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द कमेंट. बट उन्होंने इतना रिक्वेस्ट ज़रूर किया है पुलिस ने कि आप उस एरिया को अवॉइड कीजिएगा.
4: Hollywood's most wanted.
6: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
7: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अवारापन 2 का गाना आप यहाँ पे सुन रहे हैं और ये मूवी कल रिलीज हो जाएगी। वेल, हमारी टिकट तो यहाँ पे बुक्ड है, आप भी अपनी टिकट्स बुक ज़रूर करवा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल ये भी आपके लिए कभी भी प्ले हो सकता है। हम बोर्डिंग कॉल है क्या, अगर आपने इसके बारे में मिस आउट किया है, आप यहाँ पे जी सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनाटू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी भी आप इसके साथ जी सकते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से हमें सुनते रहेगा, ध्यान से सुनेगा। एक स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है ये आपके लिए कभी भी प्ले हो सकती है और ये जो स्पेशल बोर्डिंग कॉल है ये होगी बिटवीन 8 AM टू 9 AM, 11 AM टू 12 PM, 1 PM टू 2 PM एंड बिटवीन 5 PM टू 6 PM। सो 5 बजे के बाद आज कभी भी प्ले हो सकती है बोर्डिंग कॉल कि इट्स नाउ रेडी, द बोर्डिंग इज इन प्रोसेस। इस वजह से जैसे ही आप वो बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं, जब आप बोर्डिंग कॉल सुनते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बोर्ड करते हैं। तो बस आपको भी यहाँ पे यही करना है, जैसे ही बोर्डिंग कॉल सुनेंगे आपको बोर्ड करना है। लेकिन बोर्ड कहाँ करना है, 60 मिनट्स का समय होगा। हमारी रोवा ऐप पर जाइए एंड वहाँ पे टाइप बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट। आर्टिकल है वहाँ पे, एक्चुअली में स्क्रॉल डाउन हम बोर्डिंग कॉल का आर्टिकल है वहाँ पे, कंपटीशन पेज है वहाँ पे। बोर्ड नाउ लिखिए, जो टाइम लिखा हुआ है 5 PM का फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम आएगा, उसके आगे बोर्ड नाउ लिख दो, उसी समय वो एक्टिवेट होगा एंड उसके बाद सबमिट कर दो, दैट्स इट, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकले टू वनाटू। और इसके लिए वैसे आप डिटेल्स के लिए विजिट कर सकते हैं solomons.com, टर्म्स एंड कंडीशन हमारी वेबसाइट पे है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है एंड कंपटीशन का पेज आपको फटाफट अपने पास ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, BC एज इन बोर्डिंग कॉल, BC लिख के भेजिए 5599 पर, तो आपको कंपटीशन का लिंक मिल जाएगा। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, जैसे ही बोर्डिंग कॉल का यहाँ पर वो प्ले होगा तो उसी 5 बजे के बाद वो प्ले होगा, बिटवीन 5 to 5:30 प्ले होने ही वाला है। मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ, तो जैसे ही वो आपके लिए प्ले होगा आपको करना क्या है, जो BC कीवर्ड आपने लिए यहाँ पे लिख के भेजा है, ऑटो रिप्लाई में आपके पास कंपटीशन पेज का लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करो, ओपन करो, वहाँ पे बोर्ड नाउ आपको टाइप करना है, आपको समझ में आएगा कहाँ पे टाइप करना है जैसे आप पेज ओपन करेंगे, एंड सबमिट इट, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। दिस इज़ सो ईजी। सो अगर आपको रोवा ऐप पर जाके ढूंढना नहीं है तो BC लिख के यहाँ पे आप भेज सकते हैं 5599 पर, सो दैट आपके लिए ये जो प्रोसेस है ये और भी ज़्यादा इजी हो जाए। वेल, उधर सिल्वे पार्क की अपडेट सो फार अभी तक कुछ और अपडेट नहीं आई है। पुलिस ने जो लास्ट बताया है वो यही बोला है कि इंसिडेंट वहाँ पर ओवर हो चुका है, बट या लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को अवॉइड करना है एरिया वहाँ पे। किसी अगर आप सिल्वे पार्क की ओर जा रहे हैं, यू स्टिल नीड टू अवॉइड द एरिया बिकॉज पुलिस अभी भी वहाँ पे है। कुछ एरियाज को अभी भी कॉर्डन ऑफ किया है, दो देर इज़ नो इंसिडेंट हैपनिंग राइट नाउ। वेल, कुछ स्टाफर्स का वहाँ पे ये कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ है दे वॉन्ट स्केयर ड्यूरिंग द इंसिडेंट बिकॉज उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है। एंड उन्होंने RNZ को बोला कि शी सॉ कार क्रैश इन द रोड साइड एंड वॉज कन्फ्यूज एंड उन्होंने गन शॉट नहीं सुने। एंड कुछ लोगों का ऊपर से ये कहना है कि उन्होंने गन शॉट सुने हैं एंड कुछ का ये कहना है कि उन्होंने एक पर्सन को देखा है गन के साथ। सो क्लैरिटी क्या है वो अभी तक नहीं पता है बिकॉज पुलिस ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। बट RNZ के रिपोर्टर का ये ज़रूर कहना है कि जो सीन है वहाँ पर, जो ट्रैफिक है अलॉन्ग साइड द मॉल एंड ट्रैफिक लाइट्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हो रहा है। पुलिस ट्राई कर रही है उस एरिया को क्लियर अप करने के लिए एंड इसीलिए उन्होंने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप सोच रहे थे उस एरिया की ओर जाने के लिए सिल्विया पार्क के अराउंड या फिर माउंट फुलिंगटन का जो एग्जिट है, तो मे बी आपको वो एरिया अभी अवॉइड करना है।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
2: 3:20 4:40 हो चुके हैं फिलहाल. एक्चुअली में 3:20 एक्चुअली मैं न्यूज़ देख रही थी कि उस समय पर ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ, इसलिए मैं पार्क के बारे में बात कर रही हूँ. बट फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. कोई भी अपडेट मिलेगी पुलिस की ओर से तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. बट इतनी कन्फर्मेशन ज़रूर है बिकॉज पुलिस ने बोला कि बहुत र्यूमर्स है सोशल मीडिया पर. द इंसिडेंट ऑन गोइंग नहीं है, इट इज़ ओवर. पार्ट ऑफ सिल्विया पार्क ओपन भी किया है आई थिंक, लेकिन पब्लिक को अभी भी एरिया को अवॉइड करने के लिए बोला गया है. इट वॉज थर्सडे नाइट बिकॉज काफ़ी लोगों के लिए यू नो मूवी नाइट भी होती है, उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने आफ्टर द वर्क वहाँ पे जाना था. सो स्टिल पुलिस ने बोला है टू अवॉइड द एरिया बिकॉज बहुत सारी कार पार्क्स है जो अभी भी सील की गई है. रीज़न क्या है उसके पीछे ये पुलिस ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है. रक्षाबंधन आने वाली है, राखी का त्यौहार आने वाला है 28 अगस्त को. तो सोशल मीडिया पे हमारे फेसबुक पेज पे एक कंपटीशन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन विन $300 कैश. सिबलिंग बॉन्ड्स जो होता है नॉट जस्ट गिफ्ट के अराउंड होता है, बहुत सारी मेमोरीज होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ. तो आपकी मेमोरी किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है ये आपको शेयर करना है हमारे सोशल मीडिया पे. व्हाट यू हैव टू डू इज़ हमारे हम के फेसबुक पेज पे जाइएगा एंड वहाँ पे हमने एक पोस्ट की है ऑफ रक्षाबंधन. उसके कमेंट सेक्शन में यू नीड टू अपलोड अ फोटो जो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट है जो आपको और आपके सिबलिंग को कनेक्ट करता है एंड देन राइट 2-3 सेंटेंस अबाउट द मेमोरी अटैच टू इट. टैग योर सिबलिंग और आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पे $300 कैश ये आपके नाम हो सकता है. तो रिमेंबर हमारे हम के फेसबुक पेज पे जाना है आपको इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ऑन एयर भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका आपको नेक्स्ट आवर में यहाँ पे मिलने वाला है. एंड ऑल्सो नेक्स्ट आवर में हम बात करेंगे एशियन फैमिली सर्विसेज के नील पटेल से, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ वो शेयर करेंगे. सो यस, इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड.

0: 4:52 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं श्रीदेवी को. सो श्रीदेवी जिसे वाइडली रिगार्डेड किया जाता है इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार. वैसे आज श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी है तो आज हम श्रीदेवी को सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो ऐसे में आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो कि श्रीदेवी का फेवरेट सॉन्ग है आपका, ये आप लिख के भेज सकते हैं 5599 पर. श्रीदेवी का ऐसा कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगे, या फिर श्रीदेवी की फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी, ये भी आप लिख के भेज सकते हैं. 5599 इज अ नंबर. सो आज 6 बजे ट्रेंड मेकर्स में ट्रिब्यूट रहेगी श्रीदेवी को.
1: क्या बोलते हैं नेजी दबा, क्या बोले ले भमाई, अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए, करते ना अबा पटेल लोग के लिए भाई.

0: मेरी गली में सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक
2: द meatbox.co.nz.
3: Cloudy with some patchy rain and a low of 11 for Auckland tonight. Heading out of the city is a little busy. Along the northwestern to Massey, it's around 45 minutes. There's reports of a crash near Motat on State Highway 16. It's heavy from Upper Harbour, easing around Grey Lynn. On the southern, about 43 minutes out to Monaco and an hour plus to Drury, reports of a crash south of Green Lane roundabout, clearing past Sylvia Park.
2: 95% lean, high protein, low fat mints. TheMeatbox.co.nz.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
6: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, Kiwi Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, TCs, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
7: Winger Motors are your home of Cherry, jahan nahi

0: We had Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge. Ow.
4: 5:02 on the 13th of August. Good afternoon. नहीं, good evening बोलने का time आ गया है.
5: Good evening, Rizvi.
4: Welcome to the drive show.
5: Welcome.
4: अगर अभी आपने join किया है तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं.
5: Yeah, कैसे हो तुम Rizvi?
4: मैं तो बढ़िया हूँ यार Sandy.
5: आपको क्या लगता है? Been very busy, right?
4: चल रहा है थोड़ा.
5: Yeah, very busy with the police as well. Sylvia Park में जो incident unfold हो रहा है, RNZ का मानना है, confirmation report नहीं है. One person has died. And might be the person carrying the gun, but इसके बारे में कोई confirmation नहीं है. So लेकिन एक और witness ने बताया है One News को कि she saw a man drive up next to her onto a traffic light, लेकिन उसकी गाड़ी वहाँ पर stuck हो गई. And then the man got out of the vehicle with a large gun and began walking towards her vehicle.
4: Which vehicle?
5: Her vehicle.
4: Oh, बाप रे.
5: The man then ran towards the mall after about 5 police cars came and helicopter आया वहाँ पे. And she said कि they shot him.
4: Oh.
5: So 3 shots were there. But police ने इसके बारे में अभी कुछ भी statement नहीं दी है. So far these people they are talking to the news channels and वहाँ पे अपनी story अभी बता रहे हैं. Police ने so far कुछ नहीं बताया है. So these are just the witnesses who are recounting the incident.
4: हम भी जानना चाहेंगे अगर आप रहे या सिल्विया पार्क के आसपास एरिया में, अगर आपने ये विटनेस किया है या कुछ किया है, अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो
5: 0800-004-866. ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी हो सकता है, पुलिस ने बोला है एरिया को अवॉइड करने के लिए. दो लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट अप हो चुका है.
4: ओ, तो जो लेट नाइट है वो हो सकता है अभी भी,
5: लेट नाइट हो सकता है, बट स्टिल यू नो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एरिया की ओर जाने की फिलहाल, आई विल से 1 or 2 hours, देन या
4: ऐसा मत करो सैंडी.
5: तो
4: हाँ वही ना, मूवी होती है
5: वही ना,
4: फिर उसके बाद कितनी सारी चीजें होती है वहाँ पे यार.
5: पोर्शन ऑफ द सेंटर रिमेन्स कॉर्डन्ड ऑफ, ये पुलिस ने बोला है.
4: स्वागत है आपका. हेलो, चले गए वो, ऑफ एयर शायद बात करना चाहेंगे. एनीवे कॉल कीजिएगा आप हमें ऑफ एयर भी, 0800-004-866. गाने सुनाएंगे आपको एक से एक और हम बोर्डिंग कॉल के ऊपर ध्यान दीजिए,
5: कभी भी हो सकती है,
4: कभी भी बच सकता है हम बोर्डिंग कॉल.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
2: Get up and Gold Coast.
3: Cloudy with some patchy rain and a low of 11 for Auckland tonight. Heading out of the city is a little busy. Along the northwestern to Massey, it's around 45 minutes. There's reports of a crash near Motat on State Highway 16. It's heavy from Upper Harbour, easing around Grey Lynn. On the southern, about 43 minutes out to Monaco and an hour plus to Drury, reports of a crash south of Green Lane roundabout, clearing past Sylvia Park.
2: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
4: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar par milti thi, to milwate hain aapko Kashish natural yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free, perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi, available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish, natural yogurt.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
6: Are you ready to go home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
7: Power Drive at 5.
8: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
9: 5:12 हुए हैं एंड आज कौन सा दिन थर्सडे है आज थर्सडे के दिन आज 13th अगस्त को हम यहाँ पे हमारे एक गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करना चाह रहे हैं सैंडी आप भी बात करो यार आपसे भी बात करना चाह रहे हैं हमारे गेस्ट
10: जी हाय हमारे साथ एक्चुअली मैं यहाँ पे एशियन फैमिली सर्विसेज से नील शामिल हो चुके हैं गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग नील कैसे हो
11: गुड इवनिंग रुस्बी और सैंडी मैं एकदम बढ़िया हूँ आप दोनों कैसे हो
9: हम बहुत बढ़िया है हमने पिछले हफ्ते आपसे बात की थी अबाउट एशियन फैमिली सर्विसेज एंड यू स्पोक अबाउट रीच एंड रीच आउट हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आए उसके बाद सो नील फॉर समवन हु इज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज रीच एंड रीच आउट
11: ओके सो रीच एंड रीच आउट एक प्रोग्राम है जो एशियन फैमिली सर्विसेज रन कर रहा है इट्स अ नेशनल सॉर्ट ऑफ कैंपेन फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और जो हमारे कम्युनिटीज में कुछ लोग ने दे हैव यू नो टेकन देयर ओन लाइव्स एंड स्टफ सो उसके लिए प्रिवेंशन कैसे करना है उस टॉपिक पे हम लोग ने कैंपेन बनाया है इट्स अ नेशन वाइड कैंपेन एंड वी आर इनकरेजिंग पीपल टू स्पीक ओपनली अबाउट मेंटल हेल्थ और कैसे हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं कैसे हम खुद को अपस्किल कर सकते हैं कि हम किसी को और को भी हेल्प कर पाएँ और सो ये एक प्रोग्राम है बाय एशियन फैमिली सर्विसेज एक फैंटास्टिक प्रोग्राम बनाया गया है
9: And I think it's important, the important point that you've said is that it's for everyone because काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में हमारे फ्रेंड्स में some people, if they're going through something, एंड इफ दे ओपन अप विद अस, उसके आगे फिर हमको क्या बोलना है, क्या करना है, वो हमें नहीं पता काफी बार.
11: एग्जैक्टली. सो बहुत बार लोगों को हेल्प करना होता है बट दे डोंट नो कि कैसे हेल्प की जाए, कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, राइट? बिकॉज जैसे आप लोग यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल अराउंड इन कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी लीडर्स भी जो सुन रहे हैं अभी, उनके पास भी लोग आते हैं जो नए नए इंडिया से आते हैं, उनको स्ट्रेसेस होते हैं. सो बेसिकली हमको हेल्प करना है थ्रू वर्कशॉप्स.

0: इस चीज को लेके, तो कैसे आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं?
1: श्योर, सो हम लोग फ्रॉम एशियन फैमिली सर्विसेज, हम लोग नेशन वाइड इन क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड, हैमिल्टन, सब जगहों पे वर्कशॉप्स रन कर रहे हैं फॉर कम्युनिटी ग्रुप्स. कोई भी कम्युनिटी ग्रुप हो, जैसे ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन हो गया, जैसे गुजराती एसोसिएशन हो गया, मराठी एसोसिएशन हो गया, इफ यू आर लिसनिंग टू अस एंड आपको लग रहा है कि आपके ग्रुप के लिए हम एक वर्कशॉप रन कर सकते हैं जहाँ पे वी कैन इक्विप एवरी मेंबर ऑफ योर ग्रुप विद सम स्किल्स एंड सम नॉलेज, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस एशियन फैमिली सर्विसेज. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0800-862-342. वो हमारा हेल्पलाइन नंबर, एक्चुअली एशियन हेल्पलाइन नंबर. और आपको स्पेसिफिकली अगर वर्कशॉप्स के लिए रीच आउट करना है तो आप हम एफएम के थ्रू भी हमको रीच कर सकते हैं. आई एम श्योर सैंडी एंड लूसी कैन गेट योरसेल्फ इन टच विद अस.
0: या श्योर, वी विल डू दैट.
2: That's awesome, Anil. Neil, thank you so much for the update. And we'll reach out to you. Jaise hume aur bhi koi questions aate hai about the services that you're providing. But that's a great initiative by Asian Family Services. Reach and Reach Out is a national campaign jiska fayda aap bhi utha sakte hai.
0: Thank you, Neil.
1: Correct. No problem. And agar kisi ko bhi madad chahiye hogi mental health ke upar, so you can reach out us at 0800-862-342 ya fir email us at help@asianfamilieservices.nz. Thank you.
2: Thank you, Neil. Thank you.
3: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Fly Solomon Airlines.
3: Cloudy with some patchy rain and a low of 11 for Auckland tonight. Heading out of the city is a little busy. Along the northwestern to Massey, it's around 45 minutes. There's reports of a crash near Motat on State Highway 16. It's heavy from Upper Harbour, easing around Grey Lynn. On the southern, about 43 minutes out to Monaco and an hour plus to Drury, reports of a crash south of Green Lane roundabout, clearing past Sylvia Park.
2: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
4: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
11: Celebrate big screen icons with pocket size pals at Woolworths. Get Nescafe 8 to 10 pack mixes for just $4.79 each. You'll also get a free Disney Ushi with every $30 you spend. T's and C's apply while stocks last.
12: डॉक्टर ने क्या बोला
13: BP और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
12: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
14: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अश्योर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
15: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as Ashore One is a licensed financial advice provider
16: weeknight You're flat out. And it's leftovers again?
17: Don't settle for meh dinners. Spice things up with HelloFresh.
16: Zesty laksa, viral tacos, or a juicy steak. Ready in minutes.
18: Mm.
16: Take back dinner time with HelloFresh.
19: Hello.
20: Are you ready to go home?
21: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Bukit Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
22: Power Drive at 5.
23: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
24: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Aapke liye hum waise थर्सडे का दिन है ना आज
25: या कन्फेशंस भी लेके आते हैं लेकिन फिलहाल हम फोन लाइन ओपन अप करेंगे फॉर द रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन
24: यस रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन में $250 जीत सकते हैं दो लोग जस्ट बाय कॉलिंग इन हियर एंड डूइंग लाइक अ परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर योर सिबलिंग तो आपके आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टॉक अबाउट योर सिबलिंग नहीं तो आप कब ऐसे ऑनर आके बात करोगे ना
25: अपने सिबलिंग के बारे में परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब कभी दोगे अभी दे सकते हो इनफैक्ट जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू देंगे तो आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे $250 कैश ये आपके नाम हो सकता है 28 अगस्त को विनर का नाम यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा सो गिव अ सरप्राइज टू योर फ्रेंड आउट देयर और उनके लिए मे बी यू नो आप जी सकते हैं ये या सॉरी For your sibling, friendly होते हैं ना
24: sibling, sibling friend होते हैं
25: Yeah.
24: Are you sure?
25: Yeah. आप मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने सिबलिंग्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो आप शायद बाहर वो उतने अच्छे से आपको समझ सकते हैं जो बाहर कोई और ना समझे. बिकॉज थ्रू आउट आपको बचपन से जानते हैं ना वो.
24: बट उसके कारण काफी बार ये भी हो जाता है ना कि आप बिकॉज वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं तो काफी बार आप उनके साथ इसलिए शेयर भी नहीं करते हो क्योंकि वो शायद आपका मतलब वो शायद जान जाएंगे कि ये सही नहीं है तुम्हारे लिए या यू नो
25: या
24: लाइक वो भी होता होगा ना.
25: 100% वो भी हो सकता है. सो यस, आपको यहाँ पे कॉल करना है. आपको एक मिनट का और समय हम यहाँ पे देते हैं बिकॉज हमारे पास समय की बहुत ही कमी है. तो एक मिनट और हम आपको यहाँ पे देते हैं.
24: समय तो इंडिया में है ना अभी
25: फिलहाल वो ऑकलैंड में नहीं है. सो यू कैन कॉल ऑन 0800004866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है. एंड उधर जो इंसिडेंट है सिल्विया पार्क की अगर मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करूँ, सो आई विटनेसेस जो है और RNZ का कहना है कि वन पर्सन हैज़ डाइड इन द इंसिडेंट सिल्विया पार्क के इंसिडेंट में. एंड इट माइट बी द पर्सन जो गन कैरी कर रहा था.
24: राइट ओके, अभी रक्षाबंधन पे फिर से आते हैं. रक्षाबंधन के लिए कॉल शायद आया हमारे पास यहाँ पे. हाय, आपका स्वागत है.
0: हेलो.
24: हाय.
0: हाय रुस्बे. हाय संदी.
25: यस हाय.
24: क्या नाम है आपका?
0: आराधना.
24: आराधना.
25: आराधना,
24: क्या परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाह रहे हो आप?
0: ये तो मेरे भाई का परफॉर्मेंस रिव्यू है. आई मीन टू से उसका तो मैं ओवरऑल रिव्यू करना चाहती हूँ.
25: हाँ, ओवरऑल कीजिए.
24: जी हाँ. बड़ा भाई है छोटा भाई है?
0: मुझसे छोटा है.
24: आपसे छोटा है, ठीक है. और कितने साल छोटा है?
0: 10 साल.
24: ओ, 10 साल छोटा है. अच्छा ओके, ठीक है, बताइए बताइए.
0: हाँ तो आई मीन ओवरऑल अगर उसको मैं राइटिंग 5 में से दूं तो आउट ऑफ 5 आई'ड गिव हिम 5.
24: ओ, 5 आउट ऑफ 5.
25: मतलब 5 में से 5 ही दोगे आप? इतना सोचा क्यों आपने आराधना?
24: और 10 में से 5
0: बिकॉज आई मीन दिस इज 5 आउट ऑफ 5 नॉट 10 आउट ऑफ 5.
25: Not 5 out of 10. Yeah, yeah, मतलब ऐसा बताओ. Full marks देने हैं उसको.
24: हाँ,
25: हाँ,
24: हाँ, हाँ.
0: Full marks देने, yes. अच्छा.
24: Full marks देने. बताओ क्यों क्यों?
0: Yes. So, because उसके जो बाकी areas है जैसे जिस तरह का person वो है, he is very caring and very understanding. जैसे मेरा नेचर उस तरह का नहीं है.
24: अच्छा.
0: So, I'm very much upfront and straightforward. पर उसके पास जैसे वो अंडरस्टैंडिंग है देन ही अंडरस्टैंड्स कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. सो सभी के नहीं ऐसे वो नहीं होते बिकॉज ऑफन अगर तुम ये कहोगे तो वो उसको ऑपोजिट से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे.
25: ओके.
0: सो पर वो ऐसा नहीं था, ही अंडरस्टैंड्स.
24: तुम उन्होंने आप
0: वो टाइम है वो जैसे वो टाइम है जब वो ही नोज की आई एम सीरियस. बट अगर ऐसे जैसे जब खिंचाई करने की टाइम आती है देन ही डज ऑल द प्लेफुल स्टफ.
24: राइट,
25: वेरी नाइस. या टिपिकल
24: लव.
0: या सो जैसे लाइक ही इज वेरी फनी. वो उस तरह का पर्सन है बट देन ही नोज व्हेन नॉट टू क्रॉस द लाइन.
24: नाइस
25: ओके.
0: एंड यार हमारे जो अपने सीक्रेट्स होते हैं जो जैसे जब कोई भी ट्रबल में हो जाता है तो उसको बचाने का
25: फंसाने का नहीं
0: इस तरह. हाँ बचाने का. राइट. सो ही इज गुड एट कुकिंग टू. ही इज क्वाइट गुड एट दैट. सो जब मेरी बारी आती थी कुछ बनाने के लिए तो ऑफन आई मीन आई एम ऑपोजिट हिम.
24: अच्छा.
0: मुझे वो बहुत कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो व्हेन आई हैड टू आई वुड जस्ट डू इट बिकॉज़ आई हैड टू डू इट. वैसे पूरा सब कुछ करना है बट एकदम उसकी तरह इंटरेस्ट लगा के नहीं करना.
25: ओके.
24: राइट. ओके.
0: सो एक बार मुझसे क्या हुआ कि मैंने कुछ खाना चढ़ा दिया पकने के लिए एंड मैं कुछ अपने असाइनमेंट वगैरह में बिजी हो गई. और बाद में आके चेक किया तो वो जैसे sort of थोड़ा थोड़ा नीचे पकड़ने लगा था जो पोट के. तो मैंने उसको बताया अब अब आओ इधर, अभी ये इसको सीधा करो वरना आई एम गोइंग टू गेट इन टू ट्रबल. तो हम लोगों का कोड था, हम लोग उसे जेबी फेस्टिवल बोलते थे.
24: जेबी फेस्टिवल
0: मतलब जान बचाओ फेस्टिवल.
25: जान बचाओ,
24: क्या बात है, वाह वाह,
25: सही है, वेरी नाइस.
0: सो उसने फिर आके उसको सुधार दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि इसमें हुआ क्या था.
24: क्या बात है यार. तो अगर आपके भाई को पूछे कि वो आपको कितना रेटिंग देंगे, मेरे को लग रहा है वो आधा देंगे आपको. मतलब
0: उसकी डिक्शनरी में, आई मीन उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक, आई मीन आई डोंट नो मैं कहाँ रहूंगी, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी स्ट्रिक्ट. सो उसके साथ में काफी टफ रहती थी जब व्हेन ही वाज यंगर, बिकॉज ये लोग बहुत शरारती थे. एंड देन I was like all the time I had to make sure that ये पढ़ाई वगैरह में ये अपना पूरा contribution दे, and then they're just not mucking around, because
24: that's right.
0: उसका ये थोड़ा playful तरह का नेचर है.
24: सही है. उसमें से ऐसा लगा, पता चल रहा है कि आप ही हो शरारती पर्सन. आपके भाई तो बहुत ही इनोसेंट पर्सन थे.
0: मैं शरारती हूँ
24: ऐसा साउंड आ रहा था, ऐसा मतलब ऐसा आपकी कहानियों पे से ऐसा लग रहा था.
0: ओ अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं.
24: नहीं अच्छा अच्छा गुड. नहीं थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, वी विल पुट योर नेम इन द ड्रॉ.
25: थैंक यू सो मच आराधना.
0: ओके थैंक यू.
25: थैंक यू, बाय
24: बाय
0: बाय.
24: ऑल राइट, सो आज का रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन यहाँ पे समाप्त होता है. आपके लिए हम और भी यहाँ पे टॉपिक्स लेकर आएंगे. देखते हैं अगर किसी को कन्फेशन करना है कुछ, तो क्योंकि आज का दिन है कन्फेशन वाला.
25: हाँ, तो अगर कन्फेशन करना है तो अभी मैसेज कीजिए 5599 पर.
24: एंड अभी जो गाना आपको सुनाने वाले, रुको पहले.
23: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
24: आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में एक बहुत ही प्यारा गाना दोबारा आपके लिए लेकर आ रहे हैं.
25: सो आवारा बंटू कल रिलीज हो रही है, हमारी तो टिकट्स बुक है, हम तो जा रहे हैं. उसी मूवी का ये गाना, मतलब इसको बहुत ही ब्यूटीफुल वे से रीमेक किया गया है.
24: सुबोध शर्मा आपके लिए, ओनली ऑन हम

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए जारी है अभी, और थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे हम ट्रेंड मेकर्स।
2: यहाँ जहाँ पे श्रीदेवी का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इवेंट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। हमने कैरम बोर्ड, कैरम टूर्नामेंट, इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट किया है एंड जहाँ पे हमने बातें की है पंकज मोंगा के साथ अबाउट व्हाट इज़ उनका जो पैशन है कैरम को लेके, उसके ऊपर जो उन्होंने टूर्नामेंट क्यों किया है एंड उसकी हिस्ट्री क्या है, एंड अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टूर्नामेंट में तो आपको क्या करना होगा। मतलब अगर आपने एक बार भी कैरम बोर्ड खेला है ना तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेल्स फुल आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। आपको करना क्या है, CB एज इन कैरम बोर्ड, CB लिख के भेजिए 5599 पर, तो आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा।
1: जी तो फटाफट आप करके भेज दीजिए यहाँ पे एंड सो दैट वी कैन सेंड यू द लिंक फॉर द एपिसोड।
2: या
1: और इस टूर्नामेंट का हिस्सा आप जरूर बनिएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें भजन जैम्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे रवितेश दियो और उनकी इनक्रेडिबल लाइव बैंड एक बहुत ही बढ़िया अपलिफ्टिंग इवनिंग ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन एंड कीर्तन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 22 अगस्त वैदिक सेंटर आप पहुँच जाइएगा और इसकी टिकट्स आप ले सकते हो eventbrite.com या फिर कुछ लोकेशंस है जहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगे, लेकिन eventbrite पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। $30 की टिकट्स हैं एंड या गो एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट आर लोकल टैलेंट।
2: या सो इसके अलावा वैसे आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो वेरियस पॉडकास्ट के लिंक्स हैं वो वहाँ पर भी हम पोस्ट करते हैं। सो अगर आपको कहीं भी पॉडकास्ट नहीं मिलता है, यू कैन जस्ट विजिट आवर सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक पेज या फिर इंस्टा, एंड वहाँ पर भी आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: BYD South Auckland now open.
3: Cloudy with some patchy rain and a low of 11 for Auckland tonight. Traffic's starting to clear up through the northern around half an hour through Constellation Drive and about 40 minutes to Silverdale, where there's still some congestion over the Harbour Bridge and clearing until Onewa Road. To Massey, around 40 minutes along the northwestern and southern, it's looking okay. 35 minutes to Monaco and 46 minutes to Drury.
2: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Monaco Supersite on Great South Road.
4: It's Woolworths Multi-Buy Week. Get more for less, like Sparkling Duet 1.5 litre bottles are just $2 for $2.50. And Dine Single Cat Food 85 gram, any 10 for just $12. T's and C's apply.
5: डॉक्टर ने क्या बोला?
6: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए.
5: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता.
7: That conversation is happening in more TV homes than you think. Hi, I'm Nitesh Hira from Assured One. My job isn't to just sell policies, it is to help you understand your options and make sure your family is protected.
8: Book your free insurance review today. Call Assured One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North and Bill Advisory Limited, trading as Assured One, is a licensed financial advice provider.
9: Rebels 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
11: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
10: Business finance ya income protection ho. हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
11: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
12: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
13: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
14: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. Single white switch, just $3. Clear silicone sealant, just $4. Painter's masking tape, just $2. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
0: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. A worker at Sylvia Park says he heard people yelling and running after reports of gunshots at the mall. Emergency services swooped on the area this afternoon in an incident which put the shopping centre in lockdown. Nandan told RNZ he was sitting in the lunchroom waiting for his next meeting when he heard screaming.
16: Two of my staff came running inside the back room and saying that, did you hear it? People are shooting, there's a shooting.
15: RNZ understands one person has died. Police say they'll release more information as soon as possible. Police are satisfied that Rakesh Naidu complied with policy when informing the force of his intention to stand for Labour. News of the superintendent's political intentions prompted a review of his engagement with the party and police. A new petroleum mining permit has been approved for the Taranaki region. Matahio New Zealand Onshore Limited has been given 10 years to extract oil and gas from the Puka field near Stratford. A rallying call to mums who can spare some breast milk in Canterbury. A combination of winter and the number of families in need of the service is contributing to a shortage. The Human Milk Bank's Scholastica O'Berry says it's not just nutrition that donors provide.
17: It's a part of them, and to have that in their heart, that araha, it is the most incredible thing to experience.
15: To sport, first five Richie Mo'unga will be in South Africa tomorrow as the injury replacement for midfielder Billy Proctor. Proctor is returning home today. Week three of the NPC kicks off in just over an hour, Wellington hosting North Harbour Rugby with shift four. And Erica Fairweather broke her own New Zealand record in finishing third in the 200 metre freestyle at the Pan Pacific Swimming Championships in California this afternoon.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
18: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
19: सूचित किया जाता है अनुराधिका डेविड जेनेट और जोसेफ की माताजी ज्वाला पल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार सोमवार को 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं डेविड को ऑन 0210-434-283 सूचित किया जाता है अनुराधिका डेविड जेनेट और जोसेफ की माताजी ज्वाला पल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार सोमवार को 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं डेविड को ऑन 0210-434-283 पर सूचित किया जाता है अलका कल्पा नीता ममता मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माताजी भूतपुर सुवा और मैंगरी के गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई प्रार्थना सभा शनिवार को 9 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में होगी जिसके बाद अंतिम संस्कार मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में 11 बजे किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0272-810-968 पर सूचित किया जाता है अलका कल्पा नीता ममता मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माताजी भूतपूर्व सिवा और मैंगरी के गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई प्रार्थना सभा शनिवार को 9 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में होगी जिसके बाद अंतिम संस्कार मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में 11 बजे किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0272-810-968 पर
20: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
21: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: आज है 13 अगस्त और आज ट्रेंड मेकर्स में आपका पहले तो स्वागत है. गुड इवनिंग. हाय सैंडी.
4: हाय रुज़बे. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. ट्रेंड मेकर्स आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं जिसमें श्रीदेवी का बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा.
3: ओह, फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार. ऐसा टैग है उनका.
4: फेम में सुपरस्टार तब बोला जाता है किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को जब वो बैक टू बैक हिट्स देते हैं. पर्टिकुलर नंबर ऑफ हिट्स वो जब देते हैं. सो इसीलिए श्रीदेवी इनकी जो मूवीज थी इनके नाम पे ही उस समय पर सोल्ड होती थी.
3: अच्छा.
4: कि इस मूवी में श्रीदेवी है तो भाई ये मूवी तो देखने जाने जाना है. तो इसलिए इनको टैग दिया गया था उस समय पर इंडियाज फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार.
3: एक क्वेश्चन है मेरे पास सैंडी आपके लिए. हु डू यू थिंक इज द करंट इंडियन फीमेल सुपरस्टार.
4: करंट इंडियन फीमेल सुपरस्टार.
3: इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन बिकॉज आलिया भट्ट ने मूवी बनाई अल्फा, कोई देखने नहीं गया. हुमा कुरैशी ने मूवी बनाई, वो भी बहुत कम लोग देखने गए. प्रियंका चोपड़ा मे बी.
4: प्रियंका चोपड़ा हो सकती थी अगर बॉलीवुड में वो अभी भी होती. मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा का बहुत लंबा गैप आ गया ना बॉलीवुड में.
3: बट
4: सो दैट इज वन रीजन एज वेल.
3: सो वुड बी दैट इन बॉलीवुड राइट
4: नाउ. दीपिका भी हो सकती थी लेकिन दीपिका का भी गैप है बॉलीवुड में राइट नाउ. तो मुझे नहीं लगता है किसी का भी केस स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अगर इससे पहले का टाइम देखा जाए तो माधुरी दीक्षित माइट हैव बीन द वन. 90s का टाइम अगर हम देखें तो उसमें काजोल, माधुरी दीक्षित ये सब एक्ट्रेसेस काफी थी जो काफी समय तक ऐसा कंसिस्टेंट जिन्होंने काम किया है.
3: या करीना कपूर आल्सो आई थिंक.
4: इवन करीना कपूर भी. करीना कपूर को मोर देन एक्टिंग लोग उसके एटीट्यूड उसके बिंदासनेस की वजह से ज्यादा पसंद करते रहे हैं.
3: दैट्स राइट. ऑलराइट, तो आज आपको श्रीदेवी के गाने हम सुनाने वाले हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी करने वाले हैं एंड सेलिब्रेट करने वाले हैं आज उनका बर्थ एनिवर्सरी.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: Back to back Shri Devi ke gaane aaj aapko sunne milne wale hain. एट ट्रेंड मेकर्स टुडे मतलब 7 बजे तक. और श्री देवी के गाने इसलिए प्ले हो रहे क्योंकि आज उनका बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है. एक्चुअली आज सेलिब्रेट होती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी.
2: या वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस अपनी एरा की ये रही है. एंड जिन्होंने हर टाइप का रोल किया है, कॉमेडी की है मिस्टर इंडिया चालबाज में, ड्रामा किया है, सदमा मूवी इज़ वन ऑफ द एपिक मूवी, देन फैंटेसी नगीना मूवी इन्होंने की है, चांदनी मूवी, रोमांटिक मूवी, मॉम एंड इंग्लिश विंग्लिश वॉज तो नेक्स्ट लेवल. जो कम बैक किया श्रीदेवी ने बाद में आफ्टर अ गैप, दैट वॉज रियली ऑसम,
1: दैट वॉज रियली गुड. बट क्या आपको पता है कि पहले श्रीदेवी की जो भी मूवीज होती थी वो सारी हिंदी मूवीज डब्ड होती थी.
2: ओह वाओ.
1: इंक्लूडिंग एक्ट्रेस रेखा ने आखिरी रास्ता में डब किया था क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में वो काफ़ी स्ट्रांग होती थी, फ्लुएंट होती थी. लेकिन लुक एट हर कमिटमेंट ओवर द टाइम, उसने उन्होंने हिंदी भी मास्टर कर दी एंड देन वो खुद फिर अपनी लाइंस डब करती थी. सो चांदनी मूवी वाज द फर्स्ट मूवी वेयर शी हैड हर ओन वॉइस, ओन डायलॉग्स.
2: वैसे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था 4 साल की उम्र में. तमिल मूवी की थी इन्होंने 1967 में.
1: बट इनके पास एक्चुअली में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है सैंडी, तो इनका कॉमिक टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, इमोशनल रेंज बहुत सही था, डांस मूव्स बढ़िया थे, बट कभी भी उन्होंने एक्टिंग या डांसिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी.
2: काफ़ी लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया ना, लाइक इंस्पायर होके फैंस ने. फॉर एग्जांपल जैसे वो गाना है मेरे हाथों में नौ रंग चूड़ियाँ हैं, आई थिंक चांदनी मूवी का गाना है वो शायद से.
1: एंड
2: मैं नौ नौ बोलती थी बट इट्स नौ रंग चूड़ियाँ.
1: मैं भी नौ नौ ही बोल रहा हूँ.
2: एग्जैक्टली,
1: इट इज नौ नौ है ना.
2: नो, इट्स नौ रंग चूड़ियाँ है, 9 कलर्स की चूड़ियाँ.
1: मैं नौ रंग चूड़ियाँ, ऐसा साउंड नहीं अच्छा था यार.
2: आई नो, लेकिन
1: मेरे हाथ तो मैं नौ नौ चूड़ियाँ,
2: 9 चूड़ियाँ थोड़ा पहनी थी उसने.
1: ओके, ओ तो 9 रंग चूड़ी थी वैसे.
2: या
1: ओ माय गॉड, दैट्स ओ
2: वन ऑफ दैट सॉन्ग,
1: अनदर थिंग आई लर्न टुडे. बढ़िया. ये एक्चुअली मैं एक्टिंग के बाहर श्रीदेवी यूज्ड टू बी अ वेरी पैशनेट पेंटर. उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पेंटिंग करने में. उन्होंने सबैटिकल भी लिया था ना एक्टिंग से, तो तभी उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था अपना आर्ट जो है कैनवस पे डाल के मतलब पेंट करने में. और फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन भी प्लान किया था.
2: वाओ.
1: सो या सो टुडे इज़ ऑल अबाउट श्रीदेवी. और भी बातें करेंगे, सुनते रहिए हम.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। Accurate traffic.
3: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: Cloudy with some patchy rain and a low of 11 tonight for Auckland. Traffic out of the CBD is starting to clear up nicely along most routes. Along the northern, it's about 20 minutes to Constellation Drive and 37 minutes to Silverdale, where it's starting to clear past Anewa Road. Just a bit of congestion past AUT now. Along the southern, around half an hour to Monaco and to Drury, around 45 minutes. And through the northwestern, 20 minutes to Massey.
3: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
2: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
3: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
4: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, TCs, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
5: Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails, and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
6: Big Save sells New Zealand's best value beds, and today we're having a massive bed sale. Single beds from $5.99, queen beds from $8.99, cooling beds on sale, electric adjustable beds with anti-snore and massage functions on sale, single bunks from $3.99. Plus we have stock of all bed sizes. Save hundreds on New Zealand's best value beds today, only at Big Save.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go! 3, 2, 1.
1: Trend Makers. आप सुन रहे हैं हम ट्रेंड मेकर्स, आपके लिए जारी है 104.2 एफएम पे और रोवा ऐप के जरिए यू कैन लिसन टू अस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
2: सो श्रीदेवी के बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आज श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी है, उनके गाने आपके लिए हम कुछ प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रही है श्रीदेवी। वैसे देर वॉज वन कॉन्ट्रोवर्सी जहाँ पे इट वॉज अबाउट मिथुन चक्रवर्ती। रिपोर्टेडली दे वर इन्वॉल्व टूगेदर एंड उन्होंने सीक्रेटली शादी की है।
1: क्या बात कर रहे हो?
2: या ऐसी भी बीच में एक कॉन्ट्रोवर्सी आई थी। एंड ये रिलेशनशिप उस समय पर न्यूज आया था जब मिथुन वॉज ऑलरेडी मैरिड टू एक्ट्रेस योगिता बाली।
1: अच्छा।
2: या सो लेकिन इसके ऊपर कोई भी फैक्ट वगैरह कोई सामने नहीं आया। देन यू नो ऐसी चीज़ों में कई बार वो ऐसा फंस जरूर जाती थी चीज़ों में। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इंसिडेंट इन्वॉल्व द मूवी गुरु। सो श्रीदेवी शी रिपोर्टेडली ऑब्जेक्टेड अ सीन जिसमें मिथुन चक्रवर्ती वॉज फिल्म्ड विदाउट हर कंसेंट एंड अप्रूवल। उनके साथ एक रोमांटिक सीन था एंड उसके ऊपर शी टुक लीगल एक्शन
1: मिथुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट
2: मेकर्स के ऊपर।
1: ओह ओके।
2: या बिकॉज उसकी कंसेंट नहीं थी कि ये सीन वो करेगी।
1: अच्छा। ओह वाओ।
2: बट इट हैपेंड।
1: बट एक्चुअली में श्रीदेवी वाज आल्सो उन्होंने टर्न डाउन किया था स्टीवन स्पीलबर्ग को।
2: वाओ।
1: उनको जुरासिक पार्क 1993 में रोल ऑफर किया गया था और उन्होंने टर्न डाउन कर दिया बिकॉज शी वाज एट द पीक ऑफ हर बॉलीवुड करियर और उन्हें लगा था कि ये जो रोल था वो इनफ स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दे रहा था उन्हें। तो उनको ऐसा लगा नहीं था कि ये जस्टिफाइड होगा टू टेक अ ब्रेक इन इंडिया।
2: वाओ।
1: सो या टर्निंग डाउन स्टीवन स्पीलबर्ग
2: एंड इट वाज क्वाइट अ बिग।
1: या उनका आपको मालूम है उनका व्हाट इज हर रियल नेम? यार ये सब मुझे ना ये मैंने पहले पढ़ना चाहिए था क्योंकि ये मैं इसको यूज कर सकता था मैं कैरेक्टर गेस में।
2: उनका रियल नेम मुझे नहीं लगता है काफी लोगों को पता होगा।
1: हाँ, उनका रियल नेम है श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन।
2: या शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। शी वाज बोर्न इन तमिलनाडु एंड इसीलिए उनका साउथ सिनेमा में तमिल मूवी से ही एक्चुअली में इसीलिए उनकी शुरुआत हुई थी। वेल शी पास्ड अवे इन 2018। शी डाइड इन दुबई एंड उनकी जो डेथ थी उसके अराउंड भी काफ़ी स्पेकुलेशंस रही थी बिकॉज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस से उस समय पर। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूड किया था कि शी डाइड फ्रॉम एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन द बाथटब बिकॉज शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड अल्कोहल कंजम्पशन थी उनके फॉरेंसिक फाइंडिंग्स में। बट देर वॉज नो वे कि शी वॉज मर्डर्ड ऐसा उन्होंने बताया ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने। बट उसके अराउंड स्पेकुलेशंस काफ़ी समय तक बनी रही और अभी तक बनी हुई है। अभी तक उसके ऊपर बातें होती है कि शायद से मर्डर को छुपाया गया है।
1: बट नो एविडेंस।
2: नो एविडेंस रिगार्डिंग दैट।
1: या वेल काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है इनके बारे में। जैसे कि एक मूवी का सॉन्ग वो शूट कर रहे थे ना जाने कहाँ से आई है। चालबाज मूवी का ये गाना और वो उन्होंने परफॉर्म किया था रेन सीक्वेंस परफॉर्म किया था विथ 103 डिग्रीज फीवर।
2: ओह माय गॉड।
1: तो मतलब वो होता है 103 फ़ारेनहाइट डिग्री जो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। 103-104 मतलब बहुत हाई हो गया। तो वो टेम्परेचर में भी उन्होंने रेन सीक्वेंस वाला शूट किया था। एक्चुअली इनकी ना काफी मीडिया फ्यूल्ड राइवलरी भी काफी रही है। मतलब जया प्रदा।
2: हाँ जयप्रदा के साथ ये मैंने सुना हुआ है।
1: हाँ, तो
2: ये मैंने अपने डैड से ही सुना है कि देयर वाज ऑलवेज दिस फाइट बिटवीन जयप्रदा एंड श्रीदेवी कुछ रोल्स को लेके मूवीज को लेके एंड देन कुछ एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स भी इंटरव्यूज में इन्होंने दिए हैं।
1: तो राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक बार क्या किया था पता है? उन्होंने जयप्रदा और श्रीदेवी को ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दिया था एक साथ।
2: ओह माय गॉड।
1: और ये मकसद का शूटिंग हो रहा था शायद से उस टाइम पे। और फिर उन्होंने आवर्स लेटर दरवाजा जब खोला तो दोनों कंप्लीट साइलेंस में बैठे थे ऑपोजिट कॉर्नर्स में। They were not talking to each other.
2: Cold war.
1: काफी real था rivalry. Well, with that, it's time for us to say bye-bye. Thank you so much आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए.
2: Take care of yourself, guys. और आपसे अभी कल मुलाकात होगी कॉफी ब्रेक में 3 बजे, then drive show में 4 बजे.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: डिनर इज सॉर्टेड विद फ्रेश डील्स एट न्यू वर्ल्ड नॉर्थ आइलैंड। गेट स्किनलेस चिकन थाई फिलेट्स $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
3: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
7: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. An armed man fleeing police has been shot dead at Auckland's Sylvia Park Mall. Officers had tracked the man from Gun City in Penrose after reports he'd stolen an air rifle. They say he was carrying the gun as he ran onto the grounds of the shopping centre. Christopher Luxon's trying to put yesterday's events behind him despite winning a confidence vote. Speculation is ongoing about exactly what happened. The national leader says only two people know the actual numbers of the vote and he's not one of them. Heavy rainfall has caused sewage overflows in Auckland's north. Watercare says the Hobbs Bay pump station on Whangaparoa Peninsula was damaged in the deluge, with temporary pumps now operating. In sport, week three of rugby's NPC, Wellington hosting North Harbour. It's half-time, Harbour leading 12-7, rugby with shift four. And approaching stumps, and so far day one of the cricket test in Darwin has belonged solidly to Bangladesh. Australia won the toss, batted and rolled for 198. Steve Smith played a lone hand, making 71. And Bangladesh, in reply, 93 for one.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi brands nahi hai. Hum.
9: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
12: A very good evening, everyone. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए. आज थर्सडे नाइट है, 13th August है और नाइट कैफ़े लेकर मैं बिल्कुल तैयार हूँ मिड नाइट तक आपका साथ देने के लिए. प्यारे प्यारे सॉन्ग्स तो मैं लेकर आया हूँ, एक के बाद एक आप खुद ही सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. इनफैक्ट आज के गाने सारे रोमांटिक होंगे बिकॉज टुडे इज थर्सडे एंड वी ब्रिंग टू यू रिदम इन रोमांस
13: जस्ट बात की नरमी मोहब्बत के राज
14: विस्पर्स ऑफ इश्क
12: वेलकम एवरीवन रिदम एंड रोमांस में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ 12 तक ये पूरा 12 तक इनफेक्ट चलेगा आपके लिए जिसमें रोमांटिक सॉन्ग सेंसुअस गाने लवली मेलोडीज ये प्यारे सॉन्ग्स ही आपके लिए हम लेकर आएंगे जो आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ होकर बहुत सारी सूचनाएं भी हमारे पास है वो भी लेकर आऊँगा समय रहा तो शेर व शायरी भी जो हमारे पास है वो आपके लिए मैं पढ़ूँगा लेकर आऊँगा और कुछ प्यारे भरी बातें भी आपके साथ करूँगा आज बहुत सूचना है बहुत कुछ आपको बताना है बहुत फ़ायदेमंद जानकारी हमारे पास है जो मुझे आप तक पहुंचाना है तो इसके लिए आप हमें सुनते रहो क्योंकि एक एक करके वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ

0: की नरमी, मोहब्बत के राज,
1: Whispers of इश्क।
2: रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। प्यारे प्यारे गाने तो लेकर आया हूँ, लेकिन एक दो शेर व शायरी भी आपके लिए मैं शामिल करना चाहूँगा। बहुत सारी सूचनाएं हैं, वो भी आपके लिए मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। दोस्ती वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, दोस्ती वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, दोस्ती वो है जो दिल से निभाई जाए। चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाए, चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाए, दोस्त वो है जो हर हाल में याद आए। कुछ और शेर व शायरी भी हमारे पास है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में बहुत खास होते हैं। वक्त बदल जाए, ज़माना बदल जाए, सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते हैं। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। प्यारे प्यारे और भी जो शेर व शायरी है वो भी शामिल करेंगे आपके लिए। कुछ और गाने फ़िलहाल आपके लिए

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया
4: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: 19 साल बाद शिवम इज बैक. अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
9: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
8: आवारापन 2, रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन अगस्त 14th. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
10: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
11: Join the Tribe!
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
11: join our tribe.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: Hum. Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
14: Let's go.
15: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनोय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रॉ में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है. 2 लकी विनर्स को $250 ईच दिया जाएगा. 28 अगस्त को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap hum ko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 a.m. 11 a.m., 1 p.m. और 5 p.m. होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज. थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: the wasps legit.
1: Send us your kayak tutors. Time check.
2: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. Police shot dead a man who ran towards Auckland's Sylvia Park shopping centre this afternoon carrying a stolen long-barrelled air rifle. A car was tracked after the theft, driving erratically. The man was shot as he headed towards the mall entrance. PM Christopher Luxon has denied moving too soon to rule out working with the Opportunity Party, which could be in a kingmaker position after the election. Opportunity reached 8% support in last night's One News Verian poll. Iran has reiterated the Strait of Hormuz is under its control and management. This comes after US President Donald Trump has said the US has total control over the Strait, writing on his Truth Social platform, "I think we will keep it." In sport, week three of rugby's NPC in Wellington this evening, North Harbour led 12-7 at half-time and kicked on to thrash Wellington 47-7. Rugby with shift four. And Kiwi golf star Ryan Fox tees it up for his first tournament tomorrow morning since claiming the Open last month. He's playing the St. Jude's Championship in Memphis. He's taken just over 3 weeks away to process what's happened.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: 1 यू लिसनिंग टू यू नंबर 1 हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स रिदम एंड रोमांस जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ प्यारे प्यारे गाने लेकर आया हूँ आपके लिए रोमांटिक सॉन्ग्स और साथ में कुछ शेर व शायरी भी आपके लिए हम शामिल करेंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं नादान परिंदे बुलिया आँखों से तूने ये क्या किया दिल ने जिसे अपना कहा आज फिर तुम पे प्यार आया सैयारा का टाइटल ट्रैक जीना जीना आतिफ असलम की आवाज़ में सारे सॉन्ग्स आपके लिए रहेगा आज तेरी दोस्ती मेरी ज़िंदगी का सुकून है तेरी दोस्ती मेरी ज़िंदगी का सुकून है तेरे बिना हर खुशी थोड़ी सी अधूरी है तू साथ रहे या दूर कहीं तू साथ रहे या दूर कहीं तेरी यारी हमेशा दिल के करीब है क्रिश के साथ है सुनते रहो हम
2: जज्बात की नरमी मोहब्बत की राज
5: Whispers of इश्क

You're listening to number one hump playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम पॉडकास्ट आप सुनना ना भूले. दो पॉडकास्ट आपके लिए पेश होते हैं. ब्रेकफास्ट कैचअप बी एफ टेक्स करें 5599 पर कैचअप लिख करके आपको ब्रेकफास्ट कैचअप विद विजय एंड पूजा फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशन जो इनके साथ होता है वो भी सुनने का मौका रहेगा. अनफिल्टर्ड ड्राइव का जो पॉडकास्ट होता है विद सिंडी और उज़्बे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस हफ्ते लाया गया है. अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं काफ़ी टाइम हम लोग शायद फाइन प्रिंट के बारे में समझते नहीं हैं जानते नहीं हैं या ऐसे ही साइन कर देते हैं एंड वी एक्चुअली हैप्पी कि हमें काम मिल गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि आपका राइट्स क्या है व्हेन यू वर्क इन न्यूजीलैंड? क्या एम्प्लॉयर आपको अनपेड काम करा सकता है? क्या आपको करेक्ट सिक लीव मिल रहा है? एनुअल लीव एंटाइटलमेंट्स मिल रहे हैं? क्या आपको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है या आप अंडरपेड है या आप प्रेशर्ड होते हैं इनटू एक्सेप्टिंग कंडीशंस जो राइट नहीं है जो सही नहीं है? तो ये अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्बे इनफैक्ट इज गोइंग टू अनपैक ऑल दीज क्वेश्चंस जहां पर अभय खोले से बातें होंगी. प्रिंसिपल एडवाइजर एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम गाइडेंस एंड एंगेजमेंट एट एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड MBIE जहां पर वो सारे क्वेश्चंस का जवाब होंगे जो वर्कर और एम्प्लॉयर को जानना ज़रूरी है, चाहे आप माइग्रेंट है या जो यहाँ पर ये सालों से काम कर रहे हैं, चेंजिंग करियर्स के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस होना, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए. योर जॉब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, इसलिए आपका राइट्स जानना ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज़ एसेंशियल. तो ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर, फुल ऑडियो आपको मिलेगा. ऑडियो के लिंक मिलेंगे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्बे ऑन रोवा या स्पॉटिफाई पर भी आप इनको सुन पाएंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Imagine कीजिए दो countries, one epic adventure, zero stress. सिर्फ 12 spaces रह गए. Bali और Bangkok getaway with Sandy and Ruzbe March 2027 में होने जा रहा है. Bali का visit करना, Bangkok में tuk-tuk में सफर करना, majestic temples देखना, bargains इनके colorful market से लेना, माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मजा लेना, और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है. तो ट्रेवल विद सैंडी और रिज़्बे, ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं. इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव. ऑल यू हैव टू डू इज पैक योर बैग्स. अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है. अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो वन फ्री नाइट्स अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू. सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूअर्स को कॉल करें 0800-4-SUN-TOURS, यानी 0800-4-786-8688 पर, और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट

0: सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स Reliance Ventilation System से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
6: कॉन्टैक्ट Reliance Ventilation System ऑन 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: It's winter, but you already know that.
10: What you might not know is that demand for blood and plasma donors is high.
9: Yet the supply of blood and plasma donors is low.
10: It happens every year when the dreaded Lurgies do their darndest.
9: You know, the cough.
10: The splutter.
9: The nose that runs like Usain Bolt.
10: So, we're asking you to get your blood buddies together and book a group blood or plasma donation today at nzblood.co.nz.
9: Give blood, give plasma, save lives.
11: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
12: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening to you. With the latest at 10, I'm Jeff Bryan. Police have launched a critical incident investigation after officers shot dead a man armed with a stolen long-barreled air rifle at an Auckland shopping centre this afternoon. The driver ran with the gun towards the entrance of the Sylvia Park shopping centre. Officers shot him dead in an underpass. Exporters want more done to resolve non-tariff barriers to trade. It's claimed measures such as technical standards and labelling rules are costing billions every year. A plane with about 70 greyhounds has landed at an airport in Queensland from New Zealand following the implementation of the new racing ban here on August the 1st. In sport, week three of rugby's NPC opening in Wellington, North Harbour, having led 12-7 at half-time over Wellington, dominated the second half, running away with it 47-7. The NRL weekend just underway. What a game to start the round. The top two teams, the Panthers and Roosters. And Kiwi golf star Ryan Fox tees it up at 5:25 in the morning, his first tournament since claiming the Open last month. He's playing the St Jude's Championship in Memphis.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Put your head to Gandhi.
12: Hum. Night Cafe. Just baat ki narmi. Mohabbat ki raaz.
14: Whispers of Ishq.
12: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: वेलकम बैक एवरीवन. रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. कुछ शेर व शायरी भी लेकर आएंगे इसी घंटे पर भी आपके लिए. कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी है जो आपको बताना है, जल्दी जल्दी आपको आपके साथ शेयर करना है, वो भी हम लेकर आएंगे. थर्सडे नाइट है, गेटिंग वेरी क्लोजर टू द वीकेंड. और अच्छा लगता है जैसे ही थर्सडे नाइट आता है, क्योंकि रौनक आ जाती है, अलग वाइब क्रिएट होता है. क्योंकि एक और दिन फ्राइडे बनता है, फिर वीकेंड छुट्टी के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं. इनफैक्ट अभी से ही हमारा मूड बन जाता है फॉर द वीकेंड. ना कोई मतलब ना कोई हिसाब होता है, ना कोई मतलब ना कोई हिसाब होता है. दोस्ती में बस एक दूसरे का साथ होता है. मुसीबत में जो हाथ पकड़ ले, मुसीबत में जो हाथ पकड़ ले, वही तो असली यार होता है. क्रिश के साथ है. कुछ और गाने बैक टू बैक आपको सुनाते हैं. 30 मिनट्स के लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स अभी आपके लिए, सारे रोमांटिक.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is the Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
7: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
8: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
7: Zillow by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
8: Really?
7: Yep. And they can deliver in as little as 8 weeks.
8: Zillow. I like the sound of that.
7: Discover the Zillow difference at zelo.co.nz.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. Hamari good brands nahi hai.
1: Night Cafe. You're listening to Krish.
2: Let's go!

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits, Raksha Bandhan. Ke dauran, aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects or extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रो में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या फैमिली के लिए डिलीशियस फीस्ट बना रहे हो, द डी एंटोनियो विंटर सेल हैज यू कवर्ड. शॉप कीजिए माइकटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स. द डी एंटोनियो विंटर सेल ऑन नाउ, एंड्स अगस्त 16th.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.

0: से ऑन हम जज्बात की नरमी मोहब्बत के राज
1: Whispers of इश्क
0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
2: वेलकम बैक एवरीवन यू आर लिसनिंग टू रिदम एंड रोमांस और ये हमारा फाइनल आवर है जिसमें बहुत सारे प्यारे रोमांटिक सॉन्ग्स मैं लेकर आऊँगा मोर म्यूजिक लिस्ट टॉक ऐसा ही कुछ आपके लिए होगा इस घंटे पर मैं आपको जो सामाजिक सूचनाएं होने को है न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन द्वारा जो टूर्नामेंट होने जा रहा है साथ ही में ग्रैंड भजन नाइट इस पर भी जानकारी आपको दूंगा बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस घंटे पर ये भी आप इन्जॉय कर पाएंगे हमारे साथ होकर जिंदगी में हज़ार लोग मिलते हैं पर कुछ ही दिल में घर करते हैं ज़िंदगी में हज़ार लोग मिलते हैं पर कुछ ही दिल में घर करते हैं किस्मत वालों को मिलती है सच्ची यारी किस्मत वालों को मिलती है सच्ची यारी और हम खुश नसीब है कि तुम जैसे दोस्त हमारे साथ हो तो जितने भी हमारे दोस्त हैं आपके नाम ये बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए इस बार

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बकनहेड स्काउट्स हॉल में. प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: gotta go. Are you ready? Come and take a trip with me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shri Prasad, Kelston.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ. अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह.
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: Cafe on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek ke baad ek aapke favorite songs bhi lekar aayenge. Waise RRB, Radhe Radhe Boys NZ proudly present kar rahe hain A Night to Remember. Grand Bhajan Night sunne ka mauka rahega. Hanuman Vistar hone ko hai. To be continued from where it was left last year. Avinesh Balram Australia ke hai aur Junia Ashok America ke hai. 14th August ko ye hone ja raha hai. To Vedic Center Papatoy mein ye hoga. स्पॉन्सरशिप इंक्वायरी के लिए आप जने नायडू बंटू को कॉल कर सकते हैं 0211-758-602 पर. ग्रैंड भजन नाइट हनुमान विस्तार ये होने जा रहा है 14 अगस्त को वैदिक सेंटर पापटोए में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Ka Moment, Krish Ka Magic, only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर नेक्स्ट वीक मंडे को आ जाएंगे, मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे मैं लेकर आ जाऊंगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय एवरीवन, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: 19 साल बाद शिवम इज बैक. अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
7: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
6: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म. आवारापन रेटिंग TBC.

0: try by me.
1: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: Flight on Hum.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
1: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
6: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
11: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
12: And award goes to Indelible Homes.
11: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
13: Kahani of Indelible Homes.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
10: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
11: Join the Tribe!
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
11: join the Tribe!
12: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
17: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
16: Well,
17: within my budget?
16: Zelo.
17: Zelo?
16: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
17: Price?
16: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
17: Zelo. I like the sound of that.
16: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
18: The beat of Bollywood.
19: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: नाइट फ्लाइट।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
5: Night Flight on Hum.

0: flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए हर मील हेल्दी और डिलिशियस हाई प्रोटीन रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर ये है हर घर का बेस्ट चॉइस अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध आज ही करें ट्राई आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है स्वाद भी सेहत भी
5: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग स्प्रिंटिंग पिचिंग किकिंग सिंबिनिंग And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and...
6: Join the Tribe!
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
8: अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua west में।
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
5: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
4: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म।
6: आवारापन
4: रेटिंग टीबीसी।
7: You filled the piñata before I sealed it, right?
8: No, you did.
7: I thought you did.
9: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
13: हम टाइम चेक।
14: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 6 बज रहे हैं।
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
15: Morning, I'm Grace Cochran with the latest at 6. A critical investigation is underway into the fatal police shooting of an armed man who ran towards a busy Sylvia Park shopping mall in Auckland. Police say he fled Gun City and Penrose with a stolen air rifle yesterday afternoon. Superintendent Sunny Patel says officers acted quickly.
16: The deceased has run towards the mall with a weapon, an air rifle. We don't know what his intent would have been once inside the mall. We have not spoken to the officers, so we don't actually know in terms of the decision making of the officers.
15: Parents are being warned about medical misinformation. The medical journal looked at the case of a 9-year-old who needed emergency surgery after her parents rejected antibiotics in favour of silver nitrate. Author Dr. Morgan Arnold says it's not isolated.
17: You can look at the rising measles rates and the rising syphilis rates across the country. A lot of that is attributed to misinformation in terms of vaccines.
15: ACT claims it has a better way to support tourist-heavy regions than a bed tax. The party's campaigning on a new dividend, which would see local councils get a dollar for every guest night. Funding would come from GST and the already existing visitor levy. Woolworths Australia warns its supply of Ooshies will likely run out by the end of the week. The supermarket chain is asking customers to be patient with staff members. To rugby with Shafour, Cody Taylor will captain the All Blacks for the first time against the Bulls in Pretoria on Sunday. The veteran hooker is over a calf injury for coach Dave Rennie.
18: Pretty cool moment for Cody. He's had to watch him the sidelines the first couple of games, so physically he's ready to go.
15: Props at Tyrell Lomax and Xavier Numia will also start their first games on tour. Halfback Cam Roygaard and outside back Will Jordan aren't being risked. And North Harbour have thrashed Wellington 47-7 in the capital to kick off week 3 of the NPC.
13: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
19: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
0: सूचित किया जाता है कि अलका कल्पा नीता ममता मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ यानी सुबह के भूतपूर्व निवासी मैंगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत भारत में हो गई। प्रार्थना सभा कल सुबह 9 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डोर प्लेस वीरी में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार 11 बजे बेनेकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272-810-968 पर संपर्क कर सकते हैं। अलका कल्पा नीता ममता मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ यानी सुबह के भूतपूर्व निवासी मैंगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत भारत में हो गई। प्रार्थना सभा कल सुबह 9 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डोर प्लेस वीरी में होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार दिन में 11 बजे मेनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0272-810-968 पर संपर्क कर सकते हैं। ज्वाला प्रसाद या ज्वालापाल की पत्नी यानी अनुराधिका डेविड जेनेट और जोसेफ की मां मैंगरी की तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार के दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डोर प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0210-434-283 पर संपर्क कर सकते हैं। ज्वालापाल की पत्नी यानी अनुराधिका डेविड जेनेट और जोसेफ की मां मैंगरी की तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार के दिन में 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डोर प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0210-434-283 पर संपर्क कर सकते हैं।
19: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
20: जबरदस्त हिट्स
21: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
20: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
21: हम।
20: Weather update brought to you by Go Bananas Child Care, where learning is fun. Call 0800-462626.
14: सुपर सिटी ऑकलैंड में फिलहाल टेम्परेचर है 12.5 डिग्रीज, फील्स लाइक 13 डिग्रीज, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है। बाद में चलकर जस्ट लाइक यस्टरडे ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक आज रहेगा। मौसम के लिए कहा गया है एरियाज ऑफ लो क्लाउड एंड मॉर्निंग फॉग तो है ही, लेकिन बाद में चलकर ओट शावर्स जो है ये भी हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे आज। और सनराइज अगले घंटे 7:05 AM पर होगा, सनसेट आज का 5:47 PM पर।
20: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
22: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड Essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
20: Breakfast catch up.
14: हेलो कियोरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 4 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 6 बजकर, और आपके लिए जबकि हम लेकर आ रहे हैं आज हमारा जो ब्रेकफास्ट कैचअप का ये सफर आप सभी के साथ, और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इधर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज सबसे पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
0: गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू?
14: आई एम ऑल गुड, एक्साइटेड फॉर फ्राइडे, बट अ बिट क्या बोलते हैं हस्की वॉइस जो है ये आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत प्रेशर पड़ रहा है ऐसा लग रहा है।
0: वीकेंड है, वीकेंड
14: इसी वजह से। अच्छा, मेरा दिमाग मतलब माय बॉडी इज टेलिंग मी टू गो ऑन छुट्टी,
0: ना
14: देन
0: डू समथिंग अबाउट इट। खैर जो भी हो, द फाइनल डे ऑफ द वीक ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आपका स्वागत हम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस हफ्ते के इस आखिरी सफर में हमारा साथ देने के लिए आप तैयार होंगे।
14: बिल्कुल, और सुबह सुबह आपके इतने सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है ये भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे बॉबी मान जी, इन्होंने भी सुबह सुबह हमें याद करते हुए वेरी गुड मॉर्निंग जो है ये विश किया है, और बड़ा ही प्यारा सा मैसेज जो है कि इन्होंने ने आज हमारे पास भेजा है। मॉर्निंग पूजन विजय, हैप्पी फ्राइडे, एंजॉय द वीकेंड, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे, जय माता दी। थैंक यू सो मच बॉबी जी, और राम राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ गुड डे। मिस्टर माना माटा ने भी मैसेज किया है, मैंडी ने भी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे पास भेजा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी के साथ और समय के लिए। ब्रेकफास्ट कैचअप की शुरुआत आप सभी के साथ हो रही है, तो डेफिनेटली एक क्विक कैचअप करेंगे हम और देखेंगे खबरों में क्या कुछ है, बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है, और ऑफ कोर्स हमारे साथ कंपटीशन में पार्ट लेकर प्रोग्राम में शामिल होने का मौका भी आपके पास रहेगा।

0: Sunnyside Up.
1: तो आपको तो पता है ही कि आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ खूबसूरत पॉजिटिव स्टोरीज इन द मॉर्निंग सनी साइड अप में, जहां पर कोशिश यही होती है कि सुबह की और सफ़र की शुरुआत एक हैप्पी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हो. सो आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरीज ऑल द वे फ्रॉम यूएसए अगेन. और ये जो कहानी है एक लोकल आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर की है, और बहुत खूबसूरत कहानी है. ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी जब लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो उससे सभी का फ़ायदा जो है ये होता है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ अबाउट अ स्मॉल नेबरहुड इन अ स्मॉल सिटी ऑफ यूएसए, जहाँ पर एक आइसक्रीम ट्रक ड्राइवर है और इनकी ट्रक ड्राइव मतलब आइसक्रीम ट्रक का जो इंजन है ये फेल हो गया ऑन वन ऑफ द हॉटेस्ट आफ्टरनून्स ऑफ समर, जिसकी वजह से ही वॉज स्ट्रैंडेड विद दिस ट्रक. और साथ में उनका जितना भी सामान था, डजन्स ऑफ आइसक्रीम एंड एवरीथिंग जो इनकी गाड़ी के अंदर था, वो वॉज इन अ सिचुएशन ऑफ मेल्टिंग बेसिकली. एंड ऑफ कोर्स आसपास के जो बच्चे थे इनके ट्रक के पास, जो आकर यू नो लाइन अप कर खड़े हुए थे टू गेट द आइसक्रीम, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज इफ़ ऑल द आइसक्रीम मेल्टेड तो वो खाएंगे कैसे ना. सो एक रिटायर्ड मैकेनिक जो उसी नेबरहुड में रहते थे एंड ही वॉज लिविंग डाउन द ब्लॉक, उन्होंने ये पूरा सिचुएशन देखा. उन्होंने अपना एक टूल किट जो है ये ग्रैब किया अपने गैराज से एंड 2 घंटे उन्होंने स्पेंड किए अंडर द बॉइलिंग हॉट फूड फिक्सिंग ऑल्टरनेटर, जहाँ पर इन्होंने राइट ऑन द साइड ऑफ द रोड इनके ट्रक की इंजन को फिक्स किया. एंड द आउटकम, जो मैकेनिक है इन्होंने गाड़ी तो फिक्स कर दी, चलने लगी एंड ऑफ कोर्स एवरीवन गुड हैप्पी, बट ही रिफ्यूज टू टेक अ सिंगल डॉलर फॉर द इमरजेंसी रिपेयर. और इस वजह से ड्राइवर ने उन्हें फ्री आइसक्रीम जो है ये दिया, और उनके साथ साथ जितने भी बच्चे ऑन दैट डे आए उनके पास इन दैट पर्टिकुलर नेबरहुड टू ग्रैब द आइसक्रीम, सभी को फ्री आइसक्रीम दिया टू सेलिब्रेट दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस.
2: सबको फ्री आइसक्रीम.
1: हाँ,
2: दैट्स नाइस,
1: दैट इज ब्यूटीफुल ना. आई मीन वो शुक्रगुजार थे, ही वाज थैंकफुल कि समवन केम टू हिज रेस्क्यू, समवन हेल्प्ड हिम. और उसके बाद चलकर उन्होंने उस एक्ट ऑफ काइंडनेस को अपनी ओर से एक और एक एक्ट ऑफ काइंडनेस में बदला, विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली हैपेंस. आप कभी नोटिस करो, कोई आपके साथ कभी भी कुछ अच्छा करता है ना, यू फील सो अप्रिशिएटेड कि आप में खुद ब खुद वो जेस्चर आता है कि आप भी किसी के साथ अच्छा करो. और दैट फीलिंग इटसेल्फ चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. 17 मिनट हो रहे हैं 6:00, आज है फ्राइडे 14th ऑफ अगस्त, आज की सुबह खास आपके नाम करते हुए. चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस. लेट्स डू अ क्विक कैचअप, क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास अन्य कंट्रीज में भी एंड व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
9: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
11: At Southern Cross Pet Insurance, we know your pets are your besties. They love cheering you up when you're down, and they're always there for you, even when you much rather be left alone. So show your pet bestie some love by signing up to Southern Cross Pet Insurance with the promo code BESTIE by 31st of August. And you could win one of 25 $200 Prezi cards for you and your pet bestie to enjoy. Offer ends 31st of August. TCs and exclusions apply.
8: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
12: Ma,
8: is
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
12: मुझे भी।
13: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
15: Global Headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की कोशिशें तेज हो गई है क्योंकि आईईए ने ऑयल स्टॉकपाइल्स घटने की चेतावनी दी है जबकि ट्रंप ने दावों के बावजूद वोटों में ट्रैफिक अभी भी अच्छा होने का दावा किया है तेहरान ने कैशम आइलैंड पर ऑयल स्पिल के लिए कॉम्पेंसेशन मांगा है जबकि ओमान के पास 500 स्क्वायर माइल्स में फैले एक और ऑयल स्पिल ने अरेबियन सी में बड़े इकोलॉजिकल डिजास्टर का खतरा बढ़ा दिया है इस बीच यूएस एक नया कैरियर ग्रुप मिडल ईस्ट भेज रहा है जबकि रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट के दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन के साइलेज की खराब स्थिति और मेंटल हेल्थ पर लॉ मेकर्स ने जवाब मांगी है भारत में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोजेक्ट के दौरान एक टनल में पानी और कूड़ा करकट भरने से कम 8 वर्कर्स फंस गए हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है टनल में काम कर रहे 28 वर्कर्स में से लगभग 20-21 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे जबकि बाकी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है लोकल एमएलए लखपत बुटोला ने इस इंसिडेंट पर दुख जताते हुए बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी फंसे हुए वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकालना और रेस्क्यू टीम को हर तरह से सपोर्ट देना है फिजी में 38 साल के विमल विकास नंद के मर्डर के आरोप में भूतपूर्व रग्बी प्लेयर रातू विलियामे रतुवा और उनके बेटे जिनकी उम्र 19 ईयर्स है रातू किनी जोजी रतुवा को सिंगाटुका मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है इस मामले को लोटोका हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है जहां इसकी अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी फार्म एनिमल के विवाद में हुए इस जानलेवा हमले के बाद विक्टिम को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई जबकि दोनों आरोपियों पर मर्डर और असोल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं स्पोर्ट्स में अगर देखें ओएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस कल एक बार फिर खेले गए कल ऑकलैंड सिटी की जीत बड़ी मुश्किल से टीगर स्पोर्ट के खिलाफ 1-0 से हुई जबकि सेंट्रल कोस्ट ने आईएस वीनस को 3-0 से हराया अगले राउंड के मैचेस कल दिन में 12 बजे से खेले जाएंगे उधर आईसीसी या फिर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच जो है ये कल शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 53 ओवर्स में 198 रन्स बनाए बांग्लादेश ने एक खिलाड़ी खोकर 24 ओवर्स में 96 रन्स बनाए हैं ये मैच एक बार फिर आज जारी रहेगा और एनआरएल के एक मैच में कल रूस्टर्स की जीत पैंथर्स के खिलाफ 12.26 से हुई ये रहे सुबह के मुख्य समाचार
0: Hollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आऊं
17: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

तो बादशाह का ये गाना आपके लिए टाइटल्ड पागल हम आज सुबह सुबह पेश कर रहे थे एंड अपेरेंटली ये गाना काफी चला। 2019 में ये ट्रैक जो है ये आया था, सिंगल रिलीज एंड

0: 12 तो आज चार्टबस्टर में आपके लिए हम इसे पेश कर रहे थे. नाउ गेटिंग बैक टू आवर बॉलीवुड स्टोरी, क्या कुछ हो रहा है एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड. तो इसके बारे में आपको बता दें, एक फिल्म है जिसका टीजर ये रिलीज हुआ है, एंड आफ्टर द टीजर रिलीज वी कैन से कि एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है. सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार, लास्ट इन दोनों ने एक साथ काम किसी फिल्म में किया था, आपको याद हो?
1: मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी.
0: यस, दैट वाज अ मूवी जिसमें इनको बहुत पसंद किया गया था इनके डिफरेंट रोल्स के लिए. कॉमिक फिल्म विद लॉट ऑफ एक्शन एंड रोमांस जो ये था. लेकिन अब ये दोनों आ रहे हैं एक साथ वो हैवान, एंड इसके बारे में कहा गया है कि इसका जो टीजर रिलीज हुआ है इसे डेलिब्रेटली काफ़ी मिस्टीरियस रखा गया है. 45 सेकंड्स का ये टीजर जिसमें आपको दिखेंगे सैफ अली खान हु सीम्स टू बी विजुअली इम्पेयर्ड और एक वॉकिंग स्टिक के साथ और साथ में एक स्पेशल वॉच के साथ इनका कैरेक्टर दिख रहा है. जबकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सीम्स लाइक समवट यू नो हार्मफुल डेंजरस थोड़ा विलनस टाइप कैरेक्टर और एक डिस्टर्बिंग इमेज ऑफ अ ब्लडी हैंड, खून भरा हाथ, यू नो,
1: हाँ खून से रंगे हाथ.
0: हाँ वही खून भरा हाथ है, खून भरी मांग थी मेरे दिमाग में. पर एनीवेज, तो या ये सारी चीजें दिख रही है. एंड ऑफ कोर्स अक्षय कुमार वॉकिंग इन अ वेरी इविल लाइक नेचर और फिर एक उनका डरावना सा हंसी जो है ये सब कुछ आपको टीजर में दिखेगा. बट नाइदर द एक्टर्स फेस हैज बीन रिवील्ड प्रॉपर्ली और ना ही तो इस फिल्म का जो प्लॉट है. ये दोनों चीजें काफी सीक्रेटिव रखी गई हैं इस टीजर में.
1: Have you seen the teaser?
0: नहीं.
1: I've seen the teaser.
0: I've read about it. I haven't seen it as yet. But जो implication है ये यही कह सकता है कि whatever is being seen so far कि अक्षय कुमार is the हैवान. But I somewhat feel कि opposite होगा. The person who seems like very सीधा साधा भोला बाला, which is Saif Ali Khan in this case. And obvious Akshay Kumar जो ये दिख रहे हैं is the dangerous guy, the evil guy. मेरे को लग रहा है opposite होगा. Saif Ali Khan might be the हैवान in this particular movie.
1: I don't know. लेकिन I've seen the teaser और इतना कह सकता हूँ कि ये काफी intriguing लग रहा है. जब आप देखेंगे तो oh my god, आप सोचेंगे कि क्या हो रहा होगा.
0: What if the movie is nothing of that sort जो हम सोच रहे हैं? अगर comedy film निकली तो
1: नहीं, कॉमेडी नहीं है.
0: प्रियदर्शन की फिल्में जो है ये अगर कोई
1: अभी कल मैंने बताया ना नीरज पांडे के बारे में, वो हाँ, कोई फिल्म
0: बायोपिक,
1: हाँ
0: आर डी बर्मन साहब पर बायोपिक बना रहे हो,
1: उनका तो काम है बनाना.
0: आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक प्रियदर्शन का जो फिल्म का अंदाज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूल भुलैया ये आप ले लो, उसमें कॉमेडी भी थी, उसमें सस्पेंस भी था, उसमें हॉरर भी था. You know, similar line में शायद ये हो अगर, I don't know, but let's see how it turns out to be. क्योंकि फिल्म तो 20 इसी साल अगले महीने 11 सितंबर को रिलीज होगी.
1: Not a long way to go. Yeah. So अगर आपने नहीं देखा है, आप जाकर फिल्म हैवान जो है इसका टीजर जरूर देखें.
0: प्रियदर्शन इज डायरेक्टिंग इट, बमन ईरानी और सायामी खेर, साथ में श्रेया पिलगांवकर भी है इस फिल्म में, अपार्ट फ्रॉम अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान. फिलहाल थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे आज का हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे. देखते हैं कि आप इसे गेस कर पाते हैं या नहीं. और आज है 14 अगस्त जहां पर पाकिस्तान का आजादी दिवस ये मनाया जा रहा है ना,
1: जी
0: इंडिपेंडेंस डे. तो इसके बारे में भी कुछ बातें जो है ये हम जरूर करेंगे बस थोड़ी देर में.
2: Final call for hump passengers. Your chance to escape to paradise is coming soon. Listen for the next boarding call and you could win two return air tickets to beautiful Vanuatu with Solomon Airlines and $1,000 spending money.
3: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
4: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
5: High of 17, cloudy today, just the chance of some showers. Coming into the city, very quick on motorways. Drive times haven't shifted since about 5 this morning. Northern, 16 minutes in from Constellation Drive. Just a little traffic, but quick. Northwestern, same deal, 17 minutes Massey to the city. And Southern, 20 in from Monaco. A little bit of traffic south of there, but we're quick too. And Southwestern, fine both ways.
4: Keep more of your money with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाए। हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर। ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर, 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध। आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है। स्वाद भी, सेहत भी।
8: Kiwi kids are active kids, creative kids, sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?
3: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
9: Breakfast catch up.
1: अभी 23 मिनट रह गए हैं 7:07 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट अभी आपके लिए हम लेकर आएंगे। बाय द वे, बड़े दिनों बाद आज जया जी का मैसेज जो है ये आया है सुबह सुबह। जया जी उन्होंने कहा है राम राम विजय जी, पूजा जी, वेरी हैप्पी फ्राइडे। आज का दिन सबको शुभ और मंगलमय हो, आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जय जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और 14th of August आज क्या कुछ मार्क कर किया जाता है आज दिन, जैसे आपने बताया कि आज पाकिस्तान के आज़ादी का दिन है, साथ में आज वर्ल्ड लिजर्ड डे,
0: लिजर्ड डे
1: हाँ ये मार्क किया जाता है।
0: अच्छा,
1: और इसके अलावा अगर देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है।
0: तो चलिए आज जो भी दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर यू कैन सेलिब्रेट, आप सभी को उस दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है यू अचीव इन लाइफ व्हाटएवर यू विश टू अचीव। टुडे इज द डे टू गेट थिंग्स सॉर्टेड फॉर यू टू एक्ट ऑन इट, तो मेक श्योर वो आप जरूर करें। और फिलहाल इधर आगे बढ़ते हुए अब बारी है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है इसके लिए कुछ क्लूज देने की। कल हम लेकर आए थे धड़कन फिल्म और बहुत से लोगों ने पहले अटेम्प्ट में जो है ये गेस नहीं किया था, एक दो लोगों ने हमारे पास सही जवाब भेजा था। जब हमने बाकी के नाम रिवील किए तब जाकर कुछ एग्जैक्ट आंसर्स हमारे पास आए थे। चार नाम थे ना कल, आज हमारे पास सिर्फ तीन नाम हैं।
1: ओके,
0: तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आज सिर्फ एक नाम पहले रिवील करूंगी, उसके बाद मैं एक और एक नाम रिवील करूंगी, एंड आई थिंक जब मैं सेकंड नेम रिवील करूंगी तो थोड़ी आसानी होगी लोगों को गेस करने में। फर्स्ट नेम थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इज व्हाट आई फील।
1: ओके,
0: एंड इफ सेकंड नाम रिवील करने के बाद भी मेरे पास सही जवाब नहीं आया तब मैं जाकर थर्ड नाम रिलीज करूंगी आज। सो द फर्स्ट नेम दैट यू हैव टू वॉक अराउंड विद फॉर बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे टुडे इज ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन,
1: ओके,
0: बहुत सी फिल्में हैं इनकी, पर आपको क्या लगता है आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इनकी कौन सी फिल्म है? अपने अपने आंसर्स हमारे पास आप लिख कर भेजे। BF लिखे सबसे पहले अपना आंसर फिर अपना नाम 5599 पर आपको सेंड करना। बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, क्या हुआ?
1: मैं सोच रहा हूँ ऋतिक रोशन ना,
0: अरे इतनी सारी फिल्में की यार इन्होंने।
1: हाँ, तो वही सोच रहा हूँ कौन सा बताऊँ उसमें से।
0: लेट्स सी, आप में से क्या कोई एक ऐसा है जो पहले अटेम्प्ट में आज के बॉलीवुड मूवी को पहचान ले? इफ यस, अपने आंसर्स आप BF स्पेस आंसर नेम लिखकर 5599 पर भेजे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का गाना आपको सुनाते हैं, इसके ठीक बाद हम दूसरा नाम जो है आज का ये रिवील करेंगे। सनी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यू किक स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टुडे, द वेरी फर्स्ट पर्सन टू मैसेज, और आपका आंसर अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है। सनी ने हेल्प किया सबके लिए कि इन्होंने अपना जवाब भेजा और इन्होंने लिखा है वॉर टू इज नॉट द आंसर। तो अगर ये आप सोच रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ये गलत है. ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म हो सकती है? लेट्स सी.
10: लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल

0: A very, very beautiful song जो आज आपके लिए straight from the heart में हम पेश कर रहे थे. अरिजीत सिंह की आवाज जो है ये रही. And प्रीतम के संगीत पर ये गाना आपके लिए हमने पेश किया. 2020 में फिल्म आई थी लव आजकल 2, उसी फिल्म का ये ट्रैक रहा. Hopefully you enjoyed the song. I simply enjoyed it early in the morning.
1: Nice song, yeah.
0: Very nice song. तो समय की ओर देखे, बस 15 मिनट बाकी है समय हमारी स्टूडियोज में सुबह 7 बजने में. और आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस्ट करने में आप सबको दिक्कत हो रही है, बिकॉज अभी तक लोग शायद बैठे इंतजार कर रहे कि हम दूसरा नाम रिवील करेंगे टू मेक थिंग्स इजीयर, देन वो जवाब भेजेंगे, व्हिच इज स्मार्ट ऑफ देम, नो डाउट. गुंजन ने कोशिश की, इन्होंने काबिल लिखकर भेजा एज द आंसर, व्हिच इज आल्सो नॉट करेक्ट. फीजा ने हमारे पास अपना आंसर भेजा है, गुड मॉर्निंग तो विश किया लेकिन यादें इन्होंने एज आंसर लिखकर भेजा है, व्हिच इज आल्सो नॉट करेक्ट. और परमा महाराज जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है, इन्होंने कहा है, जय सी आराम पूजा एंड विजय जी, एंजॉय योर डे विद माता लक्ष्मी, ब्लेसिंग्स अपॉन यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड. थैंक यू सो मच परमा जी आपके भी मैसेज के लिए. तो कोशिशें की गई हैं कुछ लोगों द्वारा और कुछ लोग शायद इंतजार कर रहे हैं दूसरे नाम का. तो चलिए दूसरा नाम आपके लिए हम आज रिवील कर रहे हैं, हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे फॉर टुडे. और इसके लिए पहला नाम था ऋतिक रोशन, आज का दूसरा नाम इज जया बच्चन.
1: ओके, ऋतिक रोशन, जया बच्चन. आई थिंक
0: मैंने कहा ना मैं सिर्फ तीन नाम रिवील करूंगी.
1: आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि
0: कौन सी फिल्म है.
1: हाँ.
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी कंफ्यूज होंगे और वो कुछ और भेजेंगे जबकि जवाब कुछ और है. दैट्स व्हाई आई डेलिबरेटली सेड जया बच्चन फर्स्ट, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. बी एफ स्पेस यू आंसर योर नेम 5599 पर भेजे. संदीप आपने कहा मुझसे दोस्ती करोगे, मैं ऋतिक रोशन थे लेकिन जया बच्चन नहीं थी.
1: वो अब आपने अभी जया बच्चन जी का नाम लिया ना, तो उस समय पर सोचकर उन्होंने
0: शायद वो जवाब
1: भेज दिया.
0: राइट, ओके. एनीवेज, तो लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट ऋतिक रोशन एंड जया बच्चन कौन सी फिल्म हो सकती है बॉलीवुड मूवी फॉर द डे. और जो तीसरा नाम है ये बस थोड़ी देर में हम रिवील करेंगे, बट लेट्स सी इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स कैन एनीवन गेट इट राइट फॉर टुडे.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर.
5: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
4: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
5: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
4: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
5: सबसे बेस्ट 2 परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
4: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल.
6: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर.
7: Accurate traffic.
8: Rebel Sport celebrating 30 years.
9: Staying cloudy today, mainly dry. The chance of showers, 17 hour high into the city. Starting to slow a little bit on motorways, but only a little southern. Got a slow patch at Manurewa and again at Papatoetoe. 23 minutes Manukau to the CBD is quick. Northwestern fairly calm the whole way in. 18 minutes Massey to town and northern 18 in from Constellation. We're a bit slow there to Sunnynook, otherwise fine to the city.
8: Rebel celebrates 30 years for $30,000 up for grabs. T's and C's apply.
10: Suno, bills badhte ja rahe hain. और महंगाई भी.
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
13: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
12: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
13: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 0984699934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
14: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
7: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
14: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म.
7: आवारापन
14: रेटिंग टीबीसी. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: फिलहाल अभी 10 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और कुछ और आंसर्स आपने भेजे हैं. मोनिका हैं, रोशन हैं, साथ में सनी हैं और 0861 आपने अपना जवाब भेजा है, 8407 और सामरीन इन्होंने भी आपने भी अपना आंसर हमारे पास भेजा है. थैंक यू सो मच.
0: तो कोशिशें की जा रही हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि लोग कंफ्यूज होंगे एंड आई मस्ट से कि आई कैन सी एटलीस्ट 2 सही जवाब यहाँ पर.
1: ओके,
0: तो 2 लोग हैं हु आर ऑन द राइट ट्रैक बट बाकी सारे कंफ्यूज हो गए. मैंने कहा था ना कि अगर ऋतिक रोशन के बाद जया बच्चन बोला तो कंफ्यूज होंगे. दैट्स व्हाट हैपेंड बिकॉज़ मोस्ट ऑफ यू हैव टेक्स्टेड इन कभी खुशी कभी गम एज द बॉलीवुड मूवी फॉर टुडे एंड दैट इज नॉट द राइट आंसर. क्योंकि आज का हमारा फाइनल नाम जो हम रिवील कर रहे हैं फॉर यू टू गेस इज करिश्मा कपूर. ऋतिक रोशन, जया बच्चन, करिश्मा कपूर, दैट इज इट एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मूवीज टू गेस इस कॉम्बिनेशन के साथ.
1: ऋतिक रोशन,
0: जया बच्चन,
1: जया बच्चन
0: एंड करिश्मा कपूर.
1: तो किस फिल्म के बारे में हम बातें कर रहे हैं? 5599 हमारे नंबर हैं. BF अपना आंसर और अपना नाम ये आप हमारे पास जल्दी से भेजें
0: और आपको अगले घंटे की शुरुआत में हम बताएंगे व्हाट्स द करेक्ट आंसर. बट राइट नाउ रिमाइंडिंग यू ऑल, हमारा सोशल मीडिया कंपटीशन रक्षाबंधन के मौके पर जारी है जहां पर देयर इज अ चांस फॉर यू टू विन $300 कैश. अपने भाई और बहन के साथ जो रिश्ता आप तय करते हैं उसमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती क्योंकि कभी कभी कुछ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी यादें जो है होल्ड करते हैं. और ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास है जो आपके रिश्ते से जुड़ी आपने संभाल कर रखी है तो उस सब्जेक्ट की फोटो हमारे साथ शेयर कीजिए. विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM फीचर फोल्डर में आपको जो पोस्ट है ये दिखेगा. सोशल मीडिया कंपटीशन जो हमारा सिबलिंग्स बॉन्ड का, उसके कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट की फोटो डालें और एक दो लाइन में बताएं कि क्यों आपके लिए ये बहुत ही मेमोरेबल ऑब्जेक्ट है और अपने भाई या बहन को टैग करें. दैट्स इट, दीज आर द 3 कंडीशंस. वंस यू डू ऑल दीज 3 थिंग्स आप उस ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे जहां पर आपको मिलेगा मौका टू विन $300 कैश जिसका ड्रॉ लाइव होने होगा ऑन फ्राइडे 28th of August.
15: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
16: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
15: जो भी देख यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Cloudy all day today. Possible showers. 17 hour high into the city. Northern Motorway 18 minutes. Constellation Drive to town. 32 from Silverdale Westlow Constellation to Milford. Northwestern 20 minutes in from Massey. Just line from Greyland to the CBD. Southern 26 in from Manukau. 38 minutes Drury to the city. Slow patches on and off from Manurewa, but overall pretty quick. And southwestern fine both ways.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
5: Wow, indelible home.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: 2pm call out, we're on your way. Heading back to the office? We're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
11: Hi everyone. New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
12: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
13: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
14: गुड मॉर्निंग इस समय ठीक 7 बज रहे हैं
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
15: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 7. A red thunderstorm warning has been issued for the Far North and Whangarei. It has been detected offshore north of Paihia, Cape Brett and Kerikeri. It's expected to hit shortly, just after 7. Met Service warns they will be accompanied by torrential rain, which could cause flash flooding. A critical incident probe is underway after a fatal police shooting in Auckland. Superintendent Sunny Patel says the man ran towards Sylvia Park Mall yesterday afternoon, armed with an air rifle, after his vehicle was spiked.
16: The deceased man never fired a shot?
17: Again, we don't know that information at this hand until we have spoken to the officers concerned.
16: And how many shots were fired by...
17: Again, that's something that we'll have to speak to our officers about.
16: Where was he shot on his body?
17: Again, we do not know that information.
15: The World Health Organization says the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is on track to become the deadliest ever. More than 4,000 cases have been confirmed, with around 2,000 deaths. Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus says it's moving fast.
18: The outbreak had a big head start. It's still way ahead of us, and we're playing catch up.
15: To rugby with Shafour, Richie Mo'unga is on his way to South Africa as an injury replacement for Billy Proctor. All Blacks coach Dave Reddy has a plan for the 56th test first five to get on the field.
19: It wouldn't be in the first test. Might get game time against the Lions to start pushing the claim then.
15: Rennie's named his team to face the Bulls on Sunday, with Cody Taylor to captain the side. And North Harbour have moved to the top of the MPC table with a 47-7 thumping of Wellington in the capital to kick off week three.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: Super City Auckland mein filhal temperature is 12.5 degrees, feels like around 13 degrees, high of 18 expected hai baad mein chill kar overnight temperature 10 degrees rahega. Areas of low cloud and morning fog jo hai hum zarur aaj experience karenge late in the day. Aaj odd showers bhi rahega aisa bataya ja raha hai. Sunrise hoga isi ghante abhi se kareeban 2 minuton mein, yani 7:05 am पर और सनसेट 5:47 पीएम पर.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने ले ले हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिन्स. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
0: Morning Madness.
14: Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 4 minute ho rahe filhal hamare studios mein 7 bajkar. Aaj hai Monday. Oh sorry, Friday 14th of August. Monday. 4 din peeche chali gayi main yaar. Itna excitement. Aur finally weekend is just like a few hours of sleep away, and then welcome karenge hum us most awaited din ka jiske liye hum beqarar rehte hain, especially for all those people jinki chutti hoti hai na Sunday ko.
20: Yeah, संडे को सैटरडे को छुट्टी अगर होती है, आज ही से लोग यू नो अपने इवनिंग प्लान्स, लेट नाइट प्लान्स वगैरह जो है ये बना लेते हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग जिनमें आप हिस्सा भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं जाकर, सो दैट यू नो यू हैव अ गुड स्टार्ट टू द वीकेंड.
14: वैसे आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट डे टू हैव अ डे ऑफ ऑन?
20: द बेस्ट डे टू हैव अ डे ऑफ ऑन, द नेक्स्ट डे नहीं. The best day to have a day off is the day you have to start the week.
14: Monday.
20: किसी का मंडे हो सकता है,
14: किसी का हाँ कुछ और होता है. बट आई फील मंडे के साथ ना एक ऐसा फीलिंग अटैच्ड है कि अगर मंडे को किसी का डे ऑफ होना तो वो फीलिंग ही अलग होती है, मतलब खुशी होती है.
20: जनरली क्या होता है ना कि लोग मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, कई लोग जो सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, बट टू डेज छुट्टी इज नाइस.
14: कुछ लोगों का सिचुएशन ही अलग होता है यार, दे आर वर्किंग 7 डेज अ वीक. छुट्टी सिर्फ उनको तभी मिलती है
20: जब 7 डेज अ वीक,
14: जब क्रिसमस का हॉलीडे हो. उस हिसाब से तो इवन आई वर्क फॉर 7 डेज, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक क्या बोलते हैं,
20: पता नहीं
14: ऑफिस वर्क की बातें, या आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे कि जो
20: घर
14: आपका
20: काम नहीं.
14: हाँ, घर का काम नहीं, जो आपका काम है वो आप कर रहे हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर साइड हसल एज वेल, जस्ट लाइक योर फुल टाइम जो, हाँ जो आपका फुल टाइम जॉब है जो, उसके बारे में बातें कर रही हूँ. तो कुछ लोगों का होता है ऐसा ना, आई नो ऑफ समवन हु हैड बीन वर्किंग फॉर 7 डेज अ वीक फॉर 7 or 8-9 इयर्स.
20: ऐसे नहीं कर सकते लीगली आप ना.
14: अरे वो करते थे ना, क्योंकि उनको जाना पड़ता था नौकरी पे. आप भूल गए मैं किनकी बातें कर रही हूँ, बिजनेस ओनर, ही वॉज अ बिजनेस ओनर, और उनको छुट्टी सिर्फ मिलती थी ईस्टर वीकेंड, और ईस्टर वीकेंड नहीं, वो ईस्टर किस दिन सब मॉल्स वगैरह बंद होते थे, और क्रिसमस को जब मॉल्स बंद होता था.
20: अच्छा
14: हाँ, तो ऐसा कुछ था.
20: ओके हाँ
14: ट्रकिंग, ट्रकिंग नहीं, टेलरिंग इंडस्ट्री के बिजनेस होना.
20: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ,
14: क्लोथिंग लाइन के बिजनेस होना.
20: या वो तो खुद का बिजनेस था ना.
14: दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जिनके खुद के बिजनेसेस होते हैं उनका होता ही है. डेयरी शॉप्स का क्या हाल होता है, यही तो होता है.
20: Yeah.
14: They work 7 days a week. उनको कहाँ छुट्टी मिलती है. But break लेने के लिए शायद they have staff and family members to relieve, वो चीज़ें होती है ना. But even then it's like for some people it's quite hard. 7 दिनों के लिए, हफ्ते के पूरे, I mean पूरे दिनों में आप काम कर रहे हो, it's very hard. एक छुट्टी तो काफ़ी you know relieving होती है, recharging होती है. और जैसे कि मैंने कहा मंडे को किसी की छुट्टी हो तो फीलिंग ही अलग होती है. बट कल है छुट्टी आपके लिए, या फिर इस वीकेंड आपके लिए छुट्टी है, तो प्लान्स आप भी बना रहे हैं, प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं, हम भी आपके साथ डेफिनेटली जुड़े हुए हैं. बट ऑन द अदर हैंड हमने पिछले घंटे जो मूवी ऑफ द डे के लिए आज कहा था, काफ़ी लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हमारे पास. लास्ट मैसेज आपने सिमरीन का पढ़ा था, जिसके बाद सनी ने अपना जवाब भेजा, फिर नीतू ने मनुरेवा से मैसेज किया, शाइना का मैसेज आया, बोटनी से जया जी का मैसेज आया, विधि ने मैसेज किया, और नितिका का मैसेज आया. आज तो बॉबी मान जी ने भी दो दो बार कोशिशें जो ये की, बट थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. फाइनली वी कैन रिवील द करेक्ट आंसर फॉर आवर मूवी ऑफ द डे टुडे इज फिजा. फिजा जो फिल्म है ये 2000 में आई थी, जिसमें काम किया था ऋतिक रोशन, जया बच्चन एंड करिश्मा कपूर ने. और ये फिल्म की कहानी जो है, इट वॉज सेट ड्यूरिंग द 1993 मुंबई रायट्स, उसके आसपास की कहानी है. क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ बदलाव हुआ था इस पर्टिकुलर फैमिली के साथ, द कैरेक्टर्स विच दीज पीपल प्ले, बिकॉज जया बच्चन प्लेड द मदर ऑफ करिश्मा कपूर एंड ऋतिक रोशन. तो अगर आपने नहीं देखी है, आप ये फिल्म जरूर चेकआउट कर सकते हैं. 8 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. थोड़ी देर बाद योर राशि वाइब्स.

0: राशि वाइब्स।
1: तो चलिए चेकआउट करते हैं आज का दिन हमारे लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू आवर हॉरोस्कोप्स। और सबसे पहले आज है
2: मेष यानी एरीज। आज ऑफिस में कहा जा रहा है कामों में सक्सेस आप हासिल करेंगे। जो एडवाइस आपको दी जा रही है बिजनेस रिलेटेड वो भी काफी काम आएगा। पेशेंस के साथ आज काम करना होगा आपको और हेल्थ आपका बहुत बढ़िया रहेगा।
1: और उसके बाद आज देखा जाए तो वृष ने टोरस आपके लिए कहा गया है कि आर्ट फैशन या यू कह सकते हैं क्रिएटिविटी के मामले में आज आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। काफ़ी आर्टिस्टिक शख्स हैं आप, तो उसे सही डायरेक्शन में आप लीड कीजिए एंड पॉसिबली फ्यूचर में चलकर आप अपना करियर भी इससे बना सकते हैं। बिजनेस है अगर जो आपका, तो आज आपको सही फैसले लेने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में आज काफ़ी अच्छा प्यारा सा रिश्ता जो है ये आपका बना रहेगा।
2: उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, अगर आप काम करते हैं तो आज अपनी कोशिशों से प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप कर सकेंगे। बिजनेस डील्स करते समय थोड़ा पेशेंस से काम लेना जरूरी होगा आपके लिए। शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें जरूरत से ज़्यादा पैसे ना स्पेंड करें। और आज किसी चीज़ का एलर्जिक रिएक्शन भी आपको हो सकता है।
1: आज वैसे कहा जा रहा है कि कर्क ने कैंसरियंस के लिए कि आपका जो वर्क लाइफ है, बेसिकली प्रोफेशनल करियर है, लाइफ है, इस मामले में जो आपके बॉसेस हैं, जो सुपीरियर्स, ये आपको काफ़ी इंकरेज करेंगे आज अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। तो इनसे जो इंकरेजमेंट मिलेगा, हो सकता है आप उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। यू माइट बी एबल टू यू नो एक्सप्लोर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट प्रोफेशनली। साथ में आपके लिए कहा गया है कि आज फैमिली रिलेटेड सिचुएशंस में जितना पेशेंस, जितना प्यार हो सके आप ज़रूर बनाए रखें, बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू।
2: और सिंह यानी लियो, आज लीडरशिप कैपेबिलिटीज आपके और डेवलप होंगे, लेकिन दूसरी तरफ काम का प्रेशर भी काफ़ी बना रहेगा। बिजनेस में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आंखों में जलन होगी, हो सकता है कुछ थकावट या सिर दर्द भी आज आपको हो।
1: और इसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आज यू नो आपके जो लाइफ पार्टनर है, इनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलते समय बहुत रिलीव्ड फील करेंगे। और पैसों के लेन देन के मामले में आज आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। डेफिनेटली आज काफ़ी डील्स वगैरह आप करेंगे दैट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, या थिंकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो आज पेशेंस जो है ये आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो या इसके साथ डील कर रहे हो, यू नीड टू नो कि आप सही कदम उठा रहे हैं।
2: तुला यानी लिब्रा, ऑफिस में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, आज आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बिजनेस से मुनाफा होगा, रोमांटिक लाइफ बहुत ही शानदार होगा आपका, और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। तो तुला के तो आज यू नो
1: भाग खुलने वाले,
2: हाँ तारे तारे हैं।
1: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा जा रहा है कि जॉब चेंज के लिए आज अच्छा दिन है। इतने दिनों से शायद दिमाग में एक प्लान था या फिर आप इसकी ओर सोच रहे थे, तो इस पर काम शुरू कर सकते हैं आप, आज ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है कि दूसरे के भरोसे पर अपने फैसले ना छोड़े। ये तो खैर किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट अ थिंग फॉर टुडे, लेकिन आज खास तौर पर ऐसा स्कॉर्पियंस के लिए बताया गया है कि दूसरे के भरोसे पर खुद के फैसले ना छोड़े। और उसके बाद धनु यानी सेक्रेटेरियस,
2: हाँ आपके लिए कहा गया है जो लोग बिजनेस या फिर पढ़ाई ट्रेनिंग से जुड़े हैं, आपके लिए अच्छा समय है। और आज यू नो कैश फ्लो आपका अच्छा रहेगा। और बाहर खाने पीने जा रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें, सावधान रहें कि क्या आप ले रहे हैं।
1: और आज मकर यानी कैप्रिकॉन्स, आपके लिए कहा गया है कि आज जहां पर नौकरी करते हैं वहां का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं, इनके लिए खास तौर पर आज फायदा बताया जा रहा है। और कुछ ज़रूरी खर्चे जो हैं ये आज आप कर सकते हैं। और भविष्य के लिए कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये करने होते हैं, करते रहना चाहिए, और ये आज आपको ज़रूर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आपके भविष्य को और भी सिक्योर बनाएगा फाइनेंशियली।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, ऑफिस में आज नए आइडियाज़ जो हैं ये आपके काम को एक अलग पहचान दिला सकते हैं। बिजनेस में सोच समझ कर पैसे इन्वेस्ट करें, लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर आज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
1: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आज बिजनेस के मामले में कुछ लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति खड़े कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए फैसले लेने तो मुश्किल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सक्सेस हासिल करना और भी मुश्किल होगा। आज आपके लिए कहा गया है अचानक से पैसों के मामले में फायदे के योग्य बन सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका जो है ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए सही लोगों की सलाह और सही लोगों से डील करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद मनी टुडे, मेक श्योर डू योर रिसर्च प्रॉपरली और तब जाकर आप ये फैसला लें। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल 20 मिनट हो रहे हैं 7:00।
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।
4: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
10: It's Woolworths Multi-Buy Week. Get more for less, like Sparkling Duet 1.5 litre bottles are just two for $2.50. And Dine Single Cat Food 85 gram, any 10 for just $12. T's and C's apply.
11: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down. And still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials, and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
13: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
14: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
1: वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे सेलिब्रिटी अलार्म, और डिस्कशन हम कर ही रहे थे अपना कि इसका आज क्या अंजाम होगा। एक्सपेक्टेशन मेरी ओर से तो यही है कि शायद कोई ना गेस कर पाए। रीज़न क्योंकि जिस तरह से ये आवाज़ हम आपको प्रेजेंट करेंगे, उस तरह से आपने इनको कभी नहीं सुना होगा।
2: एग्जैक्टली तो कोशिश करें पहले आवाज़ सुन लें, बाकी का बाद में देखेंगे क्या होता है।
15: ओनी तू लगती पंजाबन, लगती पटोला, लगती तू सारियां तो अखनी, तेनू सूट सूट करदा।
1: तो कौन है ये बताइए जरा।
2: मुझे इनके इस टैलेंट के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं था अंटिल।
1: ये भी कर सकती है।
2: हाँ, कि ये भी और अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं।
2: बातों से तो ऐसा लग गया होगा आपको कि ये कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है।
1: हाँ, वो कर देते हैं हम ना कभी कभी क्लूज दे देते हैं मैं तो कभी कभी जवाब ही दे देती हूँ बट खैर एनीवेज अभी आपने अगर इनको पहचान लिया है तो हमारे पास अपना आंसर आप भेजिए 5599 पर BF लिखना है सबसे पहले फिर उसके बाद अपना आंसर अपना नाम लिख कर भेजे और अगर नहीं पहचाना है तो एक बार फिर से सुनाते हैं आपको गेस कीजिए कौन हो सकते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म
15: ओनी तू लगती पंजाबन लगती पटोला लगती तू सारियां तो अखनी तेनू सूट सूट करदा
1: तो जल्दी जल्दी बताइए किनकी आवाज है ये BF स्पेस या आंसर ये नेम 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है
2: देखेंगे जो भी हाल होगा इसके बारे में और बातें कुछ देर बाद इस प्रोग्राम में हम करेंगे
1: आई एम होपफुल कि हमको मंडे को यही आवाज वापस से लानी होगी
2: आई हैव अ फीलिंग अगर कोई इनको पर्सनली नहीं जानता होगा
1: हाँ
2: तो
1: नहीं पहचान पाएंगे
2: नहीं पहचान पाएंगे
1: आई नो कार्तिक आर्यन ये किसने भेज दिया यार
2: सो BF आंसर और नाम 5599 पर आज तो चैलेंज है आपके लिए
1: बिल्कुल
2: हाँ अगर हिम्मत है तो पहचान कर दिखाओ
1: Right, let's see. 25 minutes after 7 for now. Filhal enjoy karte Bollywood's Most Wanted, followed by Chartbuster of this hour. Aur uske baad news headlines.
16: Bollywood's Most Wanted.
17: Gundi ghar dao. Ya seedha andar aao.
18: Main laun apna A game.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड के सिल्विया पार्क मॉल में पुलिस से भाग रहे एक आर्म्ड आदमी को पुलिस ने गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल शाम ब्रीफिंग में सुपरिटेंडेंट सनी पटेल ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि इंसिडेंट की क्रिटिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक डिसीज्ड व्यक्ति बेल पर था और घटना के वक्त अकेला था, जबकि उसके नेक्स्ट ऑफ किन को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है। तराइफिती सिविल डिफेंस ने गिस्बन और तराइफिती में ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग के बीच रेसिडेंट्स को सेफेस्ट फ्लडिंग और स्लिप्स के लिए अलर्ट रहने को कहा है। तोलंगा बे के उत्तरी इलाकों में आज रात 8 बजे तक 90 से 120 मिलीमीटर बारिश और 20 मिलीमीटर पे आवर तक पीक रेट्स होने की आशंका है, जबकि बे ऑफ प्लेंटी में भी हैवी रेन वॉच लागू है। मेट सर्विस के मुताबिक ये खराब मौसम रविवार तक जारी रहेगा, जिसके चलते लोगों को ड्रेन्स साफ रखने, लो लाइंग एरिया से दूर रहने और ध्यान से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। एनपीसी रग्बी के अंतर्गत कल नॉर्थ हबा की शानदार जीत वेलिंगटन के खिलाफ 47.27 से हुई। आज रात 7 बजे नॉर्थलैंड तारानाकी से खेलेगा। कल दिन में 2 बजे कैंटरबरी और बे ऑफ प्लेंटी का मैच खेला जाएगा। कल शाम 5 बजे ऑकलैंड होक्स बे को होस्ट करेगा। 7 PM पर मनुआतु ओटाको का मैच होगा। रविवार को दिन में 2 बजे साउथलैंड वाइकाटो से खेलेगा, जबकि शाम 5 बजे काउंटीज मैनुकाउ और टेस्मन का मैच खेला जाना है। NRL कंपटीशन के अंतर्गत अगर देखें तो कल रात 9:30 बजे ब्रोंकोस वॉरियर्स टीम को होस्ट करेगा। और इससे पहले कल हुए एक मैच में रूस्टर्स की जीत पैंथर्स के खिलाफ 12.26 से हुई। आज रात 8 बजे जो मैच होगा उसमें सी ईगल्स डॉल्फिन से खेलेगा। 10 बजे बुलडॉग्स और रेबिटोस की भिड़ंत होगी। कल 5 बजे शार्क्स कैनबरा रेडर्स से खेलेगा। 7:30 PM पर ईल्स वर्सेस काउबॉयज। रविवार को 2 मैचेस खेले जाएंगे। शाम 4 बजे नाइट्स और टाइटन्स का मैच खेला जाएगा, जबकि 6 बजे इस राउंड का आखिरी मैच वेस्ट टाइगर्स और ड्रैगन्स के बीच होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, देखो हम आ गए।
3: Attention, hum passengers. Your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with solid

0: flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Winter calls, Sky Tower answers.
2: Could be showers today, mainly just cloudy, a high of 17 degrees. Coming into the city, Southern Motorway starting to slow a little bit, but overall we're decent. 28 minutes, Manukau to the city. Slow patches on and off from Papatoetoe. Fine on the southwestern. The northwestern motorway, 22 minutes in from Massey. Slow from St. Luke's, a little heavy at Greyland. Northern 18 in from Constellation. Slow at Snow Planet, Constellation Drive and close to the bridge.
1: Discounted adult passes, just $30 direct at the Sky Tower this winter. Terms apply.
3: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
6: Showerdome.co.nz.
7: चाहे आप स्लो रोस्ट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो, या फैमिली के लिए डिलिशियस पीस बना रहे हो, The D Antonio Winter Sale has you covered. शॉप कीजिए Mitre 10 Mega Westgate and Henderson में और पाइए कुकवेयर और किचन एसेंशियल्स पर जबरदस्त डील्स. The D Antonio Winter Sale on now ends August 16th.
8: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
9: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, TCs, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera hi birthday, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
16: Many, many happy returns of the day. Aaj 14th of August ko agar apna birthday aap celebrate kar rahe hain. Sabse pehle Nilesh Awasthi ji, aaj salgirah aapko anekon baar shubh aur mubarak ho. Patni hai aapki Sonia Sarika. Bachche hain saath mein Ronil hain. Ronil Prakash, Nilesh Prakash, inhone aapko yaad kiya hai. Nikhil Awasthi hain. Aur jitne bhi parivar wale hain, dur aur kareeb se sabhi shubhkamnaen aur badhaiyan de rahe hain. Ishwar se aapki lambi umr ki kamna aur prarthna kar rahe hain. Hum sabhi ko, hum sabhi ki से भी आज का ये खास दिन आपको शुभ और मुबारक हो.
17: गुड मॉर्निंग, आई वांट टू विश माय मॉम इंद्रा हैप्पी 60th बर्थडे. ऑल ऑफ लव फ्रॉम डॉटर शिमल, दामाद रोनाल्ड एंड ग्रैंड डॉटर कायरा. वी लव यू, गॉड ब्लेस यू. आपने मैसेज किया है तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और इंद्रा जी, आज आपको 60th बर्थडे बहुत बहुत बार मुबारक हो. होपफुली यू हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय योर बर्थडे टुडे.
18: Morning Madness
17: आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम लेकर आ रहे हैं समय की ओर. देखिए तो बस 22 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में. और इधर हमने आपसे कहा था कि आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, इन सेलिब्रिटी अलार्म, इनको पहचानने में दिक्कत होगी. एंड हैंस प्रूवन, क्योंकि अभी तक सिर्फ कितने लोगों ने कोशिश की?
16: 1, 2, 3.
17: Only 3 people.
16: So I would say 1, 2, 3, start.
17: And we can definitely say ki difficulty hai, isliye to itne kam logon ne koshish ki.
16: Acha, pehle aap bahut dhyan se aakhri baar ye awaaz hum aapko suna rahe hain. Achhi tarah se ise aap sune ki kaun ho sakte hain ye.
17: We are not talking about the song that's playing. We are talking about the voice that's singing it.
16: Haan.
17: To ye hai wo awaaz. जो आज आपको पहचाननी है।
0: ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ
17: ਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਬਤਾਈਏ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ
16: BF अपना आंसर और अपना नाम 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है।
17: कुछ क्लूज दे दे क्या?
16: हाँ, एक क्लू आप दो पहले।
17: मैं? ओ माय गॉड।
16: अच्छा मैं दूँ?
17: मैं तो जवाब बता दूंगी गलती से क्लू देने गई तो।
16: अच्छा मैं क्लू देता हूँ कि ये जो शख्स है ये हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते।
17: अच्छा, हाँ। मुझे ये बात नहीं पता थी तो मैं तो ये क्लू दे भी नहीं सकती थी।
16: और ये शख्स जो है इंडिया के नहीं है
17: पर गा तो रहे बड़ा बढ़िया।
16: हाँ, गा रहे हैं क्योंकि म्यूजिक एंजॉय करते होंगे ना।
17: प्रैक्टिस किया होगा शायद बहुत बार।
16: आई एम नॉट रियली श्योर कि ये शख्स जो है ये इंडिया में नहीं रहते हैं।
17: अच्छा, इंडिया में नहीं रहते।
16: ये शख्स, पहला क्लू मैंने क्या दिया था
17: कि हिंदी नहीं बोल पाते।
16: हाँ, हिंदी नहीं बोल पाते। ये शख्स इंडिया के नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे कहा गया था कि आप प्लीज हिंदी में कुछ बोल सकते हो। तो उन्होंने कोशिश की थोड़ा बहुत, फिर कहा कि अगर मेरी माँ ने ये मुझे सुन लिया बोलते हुए तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा हिंदी सीख लूं।
17: अच्छा,
16: हाँ, पंजाबी थोड़ा मैंने
17: आज तक नहीं सीखा लगता है।
16: शायद सीख लिया हो।
17: ओके,
16: बस खास लोगों के साथ बोलते होंगे
17: प्रोबेबली।
16: एंड पंजाबी मैंने इनको बोलते हुए सुना है।
17: ओके,
16: थोड़ा एक दो लाइन
17: मैं जो क्लू दूंगी वो है ये कि इन्होंने इस देश का यानी न्यूजीलैंड का नाम काफी रोशन किया है अपने पर्टिकुलर फील्ड में।
16: अच्छा, अपने मैंने कहा ये इंडिया में नहीं रहते, आपने इतना भी बता दिया कि ये
17: नहीं, मैंने नहीं बोले न्यूजीलैंड में रहते हैं। मैंने बोले इन्होंने न्यूजीलैंड का नाम रोशन किया है।
16: अच्छा,
17: पर्टिकुलर फील्ड में।
16: तो अब आप कोशिश करें, काफी क्लूज हमने आपके आपको दिए हैं।
17: से टाइका वाइटीटी इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, पर वो न्यूजीलैंड में थोड़े ना फुल टाइम रहते हैं।
16: कि ये इंडिया में नहीं रहते हैं और इनको हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है। ये भी हमने आपको बताया है। और क्या क्लूज दिए हमने?
17: कि इन्होंने न्यूजीलैंड का नाम रोशन किया।
16: न्यूजीलैंड का नाम रोशन किया है, तो कौन हो सकते हैं ये? फाइनल कितने मिनट और अगला गाना हमारा कितने मिनट का?
17: 4 मिनट देते।
16: सो 4 × 2 से अराउंड 4-5 मिनट का टाइम आपके पास है। अब जरा सोचिए कि ये कौन हो सकते हैं। कम से कम कोशिश तो आप कर ही सकते हैं।
17: राइट, BF लिखना है सबसे पहले, फिर आपका जवाब कि ये शख्स कौन है अगर आपको अंदाजा है कोई भी, और फिर अपना नाम लिखकर हमारे पास 5599 पर आप सेंड कर दे, और देखते हैं कि आप में से कितने लोगों में सही जवाब दे पाते। एक एक्स्ट्रा कोशिश आज कृणाल ने भी की है। वेल, लेट्स सी क्या आपने कोशिश करते हैं या नहीं, और आप में से कोई सही जवाब दे पाता है या नहीं, थोड़ी देर बाद पता चलेगा जरूर।
14: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
17: 17 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। वैसे याद दिला दे, अभी तक हमारा बोर्डिंग कॉल जो है ये नहीं हुआ है, मतलब आपके पास टाइम है ध्यान से सुनने का, बिकॉज इफ द स्पेशल बोर्डिंग कॉल इज बीइंग कॉल्ड आउट ऑन द ब्रेकफास्ट शो टुडे, 60 मिनट्स रहेंगे आपके पास टू विजिट रोवर ऐप, और वहां पर एंटर कोड नाउ में जाकर आपको टाइप इन करना होगा बोर्ड नाउ, और उसके बाद सबमिट क्लिक करना होगा ताकि आप हमारे बोर्डिंग कॉल का हिस्सा बन सकें।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Accurate traffic.
4: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
5: Cloudy for us all day today and a high of 17 degrees. Into the city, we've got quick motorways, but there are some slow patches. Northern, slow at Snow Planet, Constellation to Milford and close to the bridge. 20 minutes Constellation Drive to town is really good. Northwestern 22 and from Massey, also quick, slowing from Point Chef, heavy at St. Luke's. Southern, slow patches from Papatoetoe, half an hour in from Monaco.
4: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
6: Rebel's 30th birthday continues with $30 deals on now. That's selected kids' clothing, hydro flasks and Nike equipment for only $30. Plus, save $30 off selected casual running and kids' shoes. $30 deals and so much more on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Dibba khul gaya.
8: Bharat bhai, tiffin khul gaya chhe. Sanjana ka dibba khul gaya.
9: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga. Dibba khul gaya. Haldi, mirchi, garam masala. Kashish masale. Achhe wale. Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
10: Keen to score 15 cents per litre off your fuel? From Friday to Sunday, scan your Club Plus card when you spend $100 at Pack and Save, New World or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722 462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: फिलहाल 10 मिनट रह गए हैं अभी ये 8 बजने में. सबसे पहले आज के हमारे सेलिब्रिटी का हाल देख लेते हैं. तो आपने
1: सेलिब्रिटी का हाल
14: क्या किया है आप लोगों ने मिलकर? कार्तिक आर्यन का नाम सबसे पहले आया,
1: वो हमने बताया.
14: रवि ने कहा समय रायना और सोनल गुप्ता हैं, कृणाल हैं, हरदीप हैं, साथ में सोम हैं. हरमीत ने कहा विराट कोहली. आपने क्लू में कहा था कि इन्होंने न्यूजीलैंड का नाम बहुत रोशन किया है.
1: हाँ, तो किया है ना विराट कोहली ने भी. पता है कैसे?
14: नहीं.
1: एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था
14: फेवरेट
1: नहीं, इन्होंने बताया था कि वो और अनुष्का शर्मा छुट्टी पर गए थे एक कंट्री, और वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है क्वींसटाउन, और उससे खूबसूरत जगह आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी.
14: हाँ, तो वही तो फेवरेट उनका ना वो. और अपर्णा ने कहा है रचिन रविंद्रा, अरविंद ने भी रचिन रविंद्रा कहा है. देविका मेनुकाउ से नाइस शो गाइस, थैंक यू सो मच, इन्होंने बोला. सरप्रीत सिंह और साथ में
1: रचिन रविंद्रा. किसी और का मैसेज आया है 0361, और अंशु ने मैसेज किया है रचिन. हमने किया था लास्ट वीक एंड उस टाइम पे लोगों को डेफिनेटली इनकी आवाज पहचानने में डिफिकल्टी हुई थी, बिकॉज वी हैड टू कंटिन्यू विद द वॉइस फॉर टू डेज बिफोर समवन गॉट द आंसर करेक्ट. बट वापस से हम नहीं करेंगे जो आवाज हमने ऑलरेडी कर दिया है. सो रचिन तो गलत है, बट
14: आज का जो हमारा करेक्ट आंसर एक ही पर्सन थे जिन्होंने विदाउट एनी क्लूज सही जवाब हमें दे दिया था,
1: सोनल
14: गुप्ता। और बाकी लोगों ने क्लूज के बाद सही आंसर हमें भेजा। एंड द करेक्ट आंसर आज के सेलिब्रिटी अलार्म का ईश सोधी।
1: ईश सोधी,
14: ईश सोधी।
1: ओके, मैं हमेशा इनका नाम ना ईश सोधी प्रोनाउंस करती थी, पता नहीं क्यों। तो इनका नाम है ईश सोधी।
14: हाँ, ईश सोधी,
1: बहुत अच्छा गाते यार।
14: हाँ, ब्लैक कैप्स क्रिकेटर और बहुत बहुत कमाल का खेलते हैं। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने आज कोशिश की
1: और अपने आंसर्स भेजे। सही पहचाना सोनल, अमेजिंग यू आर, क्योंकि इनकी वॉइस जो हमें लगा था कि शायद डिफिकल्ट हो इस अंदाज में पहचानने में, आपने पहचान लिया विदाउट एनी क्लूज। तो अब मंडे को एक नई वॉइस आपके लिए लेकर आएंगे, एक नई सेलिब्रिटी की इन सेलिब्रिटी अलार्म। बट राइट नाउ 8 मिनट बाकी है 8 बजने में एंड वी हैव गॉट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इंडियन फैशन को अगर यहाँ न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट किया जाए, एक ऐसे टाइप ऑफ मटीरियल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए विच इज एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर, तो वो कितनी बड़ी बात होती है ना। इस बार न्यूजीलैंड फैशन वीक के रनवे पर आपको मौका मिलेगा टू एक्सपीरियंस द इंडियन फैशन खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स, जहां पर 4 लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स ऑकलैंड में शोकेस करने वाले हैं कि कैसे ट्रेडिशनल हैंड स्पन हैंड वोवन फैब्रिक जो है ये एक अलग कंटेम्प्रेरी फैशन के साथ रीइमेजिन किया जा सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज कि आप भी इस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा जो है ये बने, क्योंकि न्यूजीलैंड फैशन वीक ये ट्यूजडे को रहेगा 18th अगस्त को, जहां पर 8:30 PM शो शुरू हो जाएगा खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स का, शेड 10 क्वींस वॉर्फ 89 क्वीन स्ट्रीट ऑकलैंड CBD में। और आपके पास मौका है कि आप इसका हिस्सा बने, जिसके लिए टिकट्स आप ग्रैब कर सकते हैं nzfashionweek.com/tickets/khadi ये विजिट करते हुए। अपने टिकट्स जो है ये आप जरूर ले सकते हैं और जो इंडियन डिजाइनर्स हैं इनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं विद द वेरी लव्ड फैब्रिक खादी एज वेल।
14: और राजेश प्रताप सिंह जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजाइनर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। इसके लिए एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं। टिकट्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम $79 गोइंग अप टू ओवर $200। अगर आप इस आइकॉनिक फैशन शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खादी लिखें KHADI, अपना नाम और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं। दीज 3 थिंग्स टूडे, खादी, अपना नाम और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, ये 5599 पर अभी से 8 बजे के बीच हमें भेजें।

0: Freedom's mattress flash sale is on now. Save 50% off mattresses, including Sealy and Freedom mattresses. Plus, save 50% off bedding. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
1: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system. Fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Make your space your own at Mitre 10. Upgrade your storage with a MaxRack Heavy Duty 5 Shelf Wire Unit, now $165. And get your fire going faster with Samba Fire Lighters. Grab 236 packs for $7. T's and C's apply. Shop now at Mitre 10.
3: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. An armed man shot dead by police while running towards Auckland's Sylvia Park Mall was on bail. Whether the air rifle he had was loaded or what his intentions were are still being investigated. Superintendent Sunny Patel says his vehicle was spiked after a stolen air rifle report from Gun City Penrose.
5: These events have unfolded very quickly in a busy area where people shopping at the mall and the afternoon rush hour were getting underway. I can reassure the public that there's no ongoing risk.
4: Fog is causing headaches at Auckland Airport. At least 9 flights have been cancelled, both departures and arrivals. There are also 19 odd delays. The harm caused by medical misinformation against children is being laid bare. A medical journal case study describes how parents of a young girl opted to use silver nitrate instead of prescribed antibiotics. Author Dr. Morgan Arnold says the child needed emergency surgery.
6: This was a really, really dangerous medical outcome where, fortunately, she was completely okay in the end, but for a period there, things looked pretty bad.
4: Multiple homes are on fire in the West Midlands as 40 locations across central and southern England hit record-breaking temperatures. Several people have been injured. To rugby with Shift 4, there are now 5 first five options in the All Blacks, with Richie Mo'unga joining the squad in South Africa. Coach Dave Rennie's made it clear that Reuben Love is still their preferred choice for the first test against the Springboks on Sunday week.
7: We're really happy with how Reuben's been going. It's about creating depth in those positions.
4: Josh Jacomb will start at first five against the Bulls on Sunday, with Bowden Barrett at fullback. Cody Taylor captains the side. And North Harbour are top of the NPC after thrashing Wellington 47-7 in the capital.
1: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari good brands bhi hai.
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: Super City Auckland में आज के मौसम के लिए बताया जा रहा है रह रहकर बारिश होगी और उसके साथ साथ मॉर्निंग फॉग एंड क्लाउड जो है ये दोनों हम एक्सपीरियंस करेंगे आज. सनसेट 5:47 PM पर होगा. टेम्परेचर 12.7 डिग्री तक पहुंच चुका है. हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 10 डिग्री टेम्परेचर रहेगा आज.
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज inspired furniture for everyday luxury living.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
9: इस घंटे यानी रश आवर को ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम शुरू करते हैं ट्रेंड पेट्रोल के साथ. यानी वो चीजें जो ज्यादा ट्रेंड करती है. इट वाज नॉट मी दो. आई लाइक टू क्लेरिफाई टू एवरीवन.
10: बाय द वे इतना आपको बता इस घंटे में सबसे पहले कि फोक की वजह से आज एक बार फिर ऑकलैंड एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कुछ फ्लाइट डिलेज जो है इसका सामना आप कर रहे हैं. अब ट्रेंड पेट्रोल सबसे पहले आपको बताएं ऐसा करते हैं आज न्यूजीलैंड इंडिया दोनों जगह को देखते हैं. ठीक है आप
9: नहीं ऐसा कीजिए आज न्यूजीलैंड का ही बताइए क्योंकि मेरे पास न्यूजीलैंड से रिलेटेड भी एक काफी ट्रेंडिंग खबर है. एंड आई वुड से कि दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर एवरीवन. तो आई लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो ऐसा करते हैं न्यूजीलैंड का करते हैं।
10: ओके, न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में कौन कौन सी चीजें जो है ये ट्रेंड कर रही थी? इट इज रायन फॉक्स पिछले 4 घंटों से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, इस मैच के बारे में भी हमने आपको बताया था। और पैंथर्स वर्सेस रूस्टर्स, यह मैच कल रात NRL का खेला गया नंबर 2 पर। और नंबर 1 पर जो घटना कल घटी है, सिल्विया पार्क न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मॉल में सिल्विया पार्क शूटिंग, सबसे ज्यादा लोगों ने उसके बारे में गूगल करने की कोशिश की है।
9: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ मेरे पास जो खबर है इट्स इन रिगार्ड्स विद यू नो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है न्यूजीलैंड में कितना एक्सपेंसिव है, हमें इसके बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज बीन ट्रेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। और यहाँ पर ग्रोसरीज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। एंड ऑन दी अदर हैंड वी कैन से कि ग्रोसरीज इज बेसिकली नॉट want, it's a need, you know, you have to have it, tabhi to aap survive kar paoge na. Kuch cheeze you can let go, certain brands ke saath aap compromise kar sakte hai if you want to save money, but then it's something that you need it, groceries to chahiye hi chahiye. To ek dairy farmer hai Dunedin mein aur inhone apne frustration ko बदला एक ऐप में जिसके तहत ये अब हर महीने पैसे जो है ये बचाते हैं। इनका नाम है विल डफ, जो कि एक डेयरी फार्म में काम करते हैं नियर डनीडन। और जब ये इस बात को लेकर एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि भाई अभी जैसे हम क्या करते हैं पैसे बचाने के लिए भी नो कि चलो यहाँ पर आपको सर्टन टाइप ऑफ चीज़ें सस्ते में मिलेंगी, दूसरे सुपरमार्केट में सर्टन टाइप ऑफ चीज़ें सस्ते में मिलेंगी, तो आप भाग भाग कर इधर उधर से ले लेते हो। पर उस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं और भी चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ी जाती है, जैसे फ्यूल वगैरह जो है इसका कॉस्ट कौन जोड़ेगा ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। सो विच इज़ वाई विल ने क्या किया, इन्होंने एक ऐप क्रिएट किया जिसका नाम है चेक माई ट्रॉली।
10: ओके,
9: चेक माई ट्रॉली जो है ये एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए शॉपर्स अपनी ग्रोसरी लिस्ट जो है इस ऐप पर डाल सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट। और वंस यू पुट दैट लिस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, तो इस ऐप पर कंपैरिजन होगा ऑफ द टोटल कॉस्ट बिटवीन डिफरेंट सुपरमार्केट्स आपके एरिया में। और आपको बताया जाएगा कि किस सुपरमार्केट में जब आप ये अपनी शॉपिंग लिस्ट की शॉपिंग करते हैं, जो भी सामान आपकी लिस्ट में है, आपको ज्यादा सस्ता कहाँ पर पड़ेगा।
10: अच्छा,
9: और वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ चीपर प्रोडक्ट्स जो है उसी सुपरमार्केट में ढूंढ कर देंगे। कमाल की बात ये है कि विल ने पर्सनली इस ऐप का इस्तेमाल किया और $148 a month ये बचा रहे हैं इस ऐप के जरिए, which is not a bad amount to save. और दूसरी ओर डनीडन की एक स्टूडेंट है जिनका नाम है लारा बिशल, इन्होंने $100 a month की सेविंग जो है ये की है, इंक्लूडिंग फाइंडिंग अ वन ब्रांड ऑफ टोफू जो $3 चीपर था एट अनदर सुपरमार्केट जहां से ये शॉपिंग नहीं करती थी बिफोर बिकॉज शी डिडंट न्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐप। अभी ऑफकोर्स और कॉम्पिटिशन है ग्रोसरी प्राइस चेकिंग को लेकर, चेक माई ट्रॉली जो है ये अदर कंपेरिजन भी करते हैं, जैसे कि ग्रोसा ऐप, आई हैव यूज्ड दैट ग्रोसा ऐप में मैंने इंडिविजुअल आइटम्स को चेक किया है एंड दिस ग्रोस सेव आई थिंक एक ऐप ये भी है, आई हैवंट यूज्ड दैट वन। So GrowSave का कहना है कि its users save at an average of around 13% per shop for someone spending $250 a week on groceries, that's potentially more than $1,000 a year. और Consumer New Zealand के इस रिसर्च में ये पता चला है कि Pack n Save was the cheapest supermarket in its comparison of 16 everyday grocery items across 4 cities over 8 weeks. और individual products अगर हम देखें, it can be cheaper at Woolworths and New World. लेकिन सुपरमार्केट वाइज पैक एंड सेव हैज बीन द चीपेस्ट ओवर 8 वीक्स अक्रॉस 4 डिफरेंट सिटीज कंज्यूमर न्यूजीलैंड की रिसर्च में। सो अगर आप चेक माई ट्रॉली जो है ये यू नो चेकआउट करना चाहते हैं, यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन सी इफ इट हेल्प्स यू टू सेव मनी, बिकॉज अगर पैसे बचते हैं देन वाई नॉट, इट्स अ टाइम टू डू दैट ना, यू कैन इन्वेस्ट वही पैसा कहीं और किसी और चीज में। सो दैट्स द ट्रेन पेट्रोल फॉर टुडे, जहां पर डनीडन के एक फार्मर ने एक ऐप बनाया जिसका नाम है Check my trolley to save money on his groceries.
10: तो आप पता लगा सकते हैं इसके बारे में और थोड़ी देर बाद what's your take?

0: फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
3: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
4: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
6: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
7: What's your take? What's your take? का वक्त अब हो चुका है और आज थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है बाकी दिनों के मिलान में हमारा टॉपिक. और आज हम सभी के लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं. प्रोफेशनल फ्रंट पर अगर देखे, कोलीग्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, या फिर आप के टीम मेंबर्स होते हैं अगर आप सुपीरियर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं. घर पर अगर देखे तो आपके फैमिली वाले होते हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, चाचा का, और फिर दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना सभी. और हर किसी के लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक तकिया कलाम होता है.
8: तकिया कलाम,
7: हाँ, एक फ्रेज होता है. अभी जैसे रुजबे को ले ले. मैं क्या बोल रहा था?
8: मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो ना.
7: सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ?
8: वो रेडियो पे नहीं बोलता ये. सो आई डोंट नो इफ एनीवन हैज नोटिस्ड इट, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि रेडियो पे वो नहीं निकलता उससे. या फिर शायद ही इज कॉशियस, या फिर शायद कोई ध्यान नहीं देता होगा इस चीज के बारे में. बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू अस इंडिविजुअली वो बोलता है.
7: रेडियो पर अगर आपने सुना होगा, हम सभी कभी ना कभी ये ना एक आदत सी हो जाती है, एक
8: वर्ड को लेकर.
7: हाँ, कोई वेल बहुत ज्यादा बोलने लगता है.
8: मैं बहुत बोलती हूँ.
7: कोई और इस्तेमाल,
8: यू यूज और अलॉट.
7: हाँ, क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर ना.
8: फिला वर्ड जैसा हो जाता हमारे लिए ना.
7: तो ये जो फिला वर्ड्स है, अब घर पर या बॉस कोई एक चीज जो हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता है, that really irritates you.
8: Oh.
7: हाँ.
8: Topic fun है, लेकिन contribution इस पे शायद बहुत कम होगा.
7: Let's see. Topic तो रख दिया भाई, अब आपकी मर्जी, चलाएं ना चलाएं.
8: अगर कोई एक particular शख्स आपके जहन में हो जो noticeable हो तो लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर अगर नॉटिसेबल नहीं हो तो लोगों
7: या फिर आप ऐसा कीजिए, आप हमारे बारे में भी बता सकते हैं, हम लोगों के बारे में.
8: दैट वुड बी
7: हम पर जो जो लोग
8: वो क्या बता सकते हैं. गुड मॉर्निंग. हम
9: नमस्ते मैडम. नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग?
8: नमस्ते जी, आप कैसे हो सर?
9: जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, बहुत पुरानी बात आपने मुझको एकदम सडनली याद दिला दी. एक हमारे कलीग थे, शायद अभी भी हैं, मैं उनसे 25-30 साल से मिला नहीं हूँ. जब मैंने बिल्कुल नौकरी शुरू की थी, ये बात 79 की है, तो वो उनकी एक आदत थी, वो बहुत दिलदार बहुत अच्छे खुशमिजाज आदमी थे, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। मैं अकेला रहता था तो मुझे खाना उना भी खिलाते थे। लेकिन वो उनकी एक आदत थी, कुछ भी बात करेंगे तो बोलेंगे जो है सो। तो अच्छा ऐसा है ना, कल हम छपरा गए थे जो है सो, और रास्ते में ना खाना बहुत खराब मिला जो है सो। वहाँ जाके हमने जब अपने अर्जुन से मिले ना, तो अर्जुन जो है सो हमसे कहता है कि आप जो है क्या कर रहे हैं
7: जो है सो।
9: ये सुनते सुनते आपके कप का खून खौलने लगेगा। लेकिन वो इतने दिलदार आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि मैं उनसे कभी कुछ कह नहीं पाया। सन 2002 तक वो मेरे घर आया जाया कर, 2000 में भी आए थे जब मैं इंडिया में था कुछ दिन के लिए। तो लेकिन मैंने देखा वो तब भी जब आए तो कह रहे अच्छा आप साउथ अफ्रीका कैसा रहा जो है सर, वहाँ जो है। उनकी आदत थी, उनके अंदर बसा
8: हुआ था। चलो वो आज भी देखो आपको याद है ना, और आप उनको कितने साल पहले से जानते थे, अभी यहाँ पर इतने सालों बाद भी आप उनको याद कर रहे हैं और उनके बारे में बातें कर कर हम सुबह सुबह उनको याद करते हुए हंस भी रहे हैं। तो ही इज बिकम अ रीजन ऑफ अ स्माइल एज वेल, यू नो।
7: थैंक यू सर,
8: थैंक यू आपके कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ वंडरफुल डे जी। गुड मॉर्निंग सपना, कैसी हो?
1: गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। पूजा जी आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग विजय भाई।
7: गुड मॉर्निंग, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी।
8: आप खुद बड़े दिनों बाद आए।
1: बहुत लेट हो जाता है हम लोगों को निकलने में, तो इसीलिए वो व्हाट्सएप टेक मिस हो जाता है हम लोगों का।
7: अच्छा अच्छा अच्छा,
8: इतना लेट में क्यों निकलती हो सपना, हमारा क्या होगा?
1: अरे आपका बहुत लोग है, मैं अकेली थोड़ी हूँ कॉल करने के लिए,
8: पर हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए ना।
7: अभी क्या
1: मैं एक,
7: हाँ एक चीज मैं आपको बताऊँ, तो उससे पहले क्या आप घर पर ही रहती हैं?
1: हाँ घर पे ही रहती हूँ, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए लेट निकलना होता है, अभी ठंडी है ना, सुबह उठते नहीं पड़ता।
7: हाँ हाँ, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप टेक घर पर सुन सकती है। देयर इज नो,
1: हाँ वो है नो, बट उस टाइम निकलने की जल्दी होती है ना विजय भाई, तो वो उस टाइम लगता नहीं, सिर्फ बच्चों को स्कूल पहुंचा दो टाइम पे।
7: यार आपने जिस तरह से विजय भाई बोला, इससे आगे मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा
8: है। शी इज बीइंग रियली स्वीट टू यू, सो यू वोंट से एनीथिंग।
7: अच्छा चलो बताओ तकिया कलाम के बारे में।
1: तकिया कलाम मुझे सैंडी का पता है।
8: क्या
1: सैंडी 100% बोलती है हर बात के बाद, 100%। तो राहत पटेल खान के शो में आई थी, वहाँ भी शी वाज टेलिंग दैट, तो फिर वो उसी से समझ में आ गया कि ये सैंडी ही है।
7: That's nice, that's nice.
8: थैंक यू सपना, हैव अ वंडरफुल डे,
1: टेक केयर,
8: बाय। चलो सैंडी के बारे में किसी ने नोटिस किया, शेरल आपने किसके बारे में नोटिस किया?
10: मैं दो जो बताऊंगी, एक मैं, गुड मॉर्निंग पूजा जी,
7: गुड मॉर्निंग,
8: गुड मॉर्निंग शेरल।
10: माय फ्रेंड्स, आई वर्क विद अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड देन एवरी 6:30 सभी बोलेंगे ओके शेरल या अखिल, व्हाट आर यू गोना डू इन द इवनिंग टुडे, एंड आई नेवर रियलाइज, आई ऑलवेज से वेल, एंड देन आई थिंक आफ्टर फ्यू वीक्स दिस समवन विल आस्क एंड दे'ल ऑल टर्न अराउंड, ऑल फाइव ऑफ देम, एंड दे'ल गो well, Cheryl, what are you gonna say? तो मैं well बहुत use करती हूँ, और दूसरी बात है कोई ना, I mean बोलता है बादाम खाना चाहिए, there is one person who says it all the time कि oh, I mean if something's put away somewhere या कुछ है, oh you need to eat बादाम, you need to eat बादाम, but then it came to a time when इतना ज़्यादा हो गया कि सभी अगर घर में किसी ने एक शूज उठाकर भी कबर्ड में डाल दिया तो उसमें था कि you have put it away. You have to eat badam. So I think I had to, I picked on it काफी ज़्यादा हो गया सबके सामने, फिर मैंने बोल दिया कि why do you have to bring that up all the time? I think you should have badam. But yeah, it was irritating. At a stage it got irritating.
8: Oh, okay. Thank you, Cheryl. Thank you. Have a nice day.
10: Have a good day.
8: You too. Bye. Good morning.
11: Good morning, Pooja and Vijay. How are you?
8: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
11: जी बढ़िया बढ़िया, मुझे बस याद आ गया ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो इरिटेटिंग वाली जो बात है। मैं फिजी में था उस टाइम, तो हम ट्रकिंग करते थे, ट्रकिंग तो हमारा फ्लीट मैनेजर था अवन सा कंपनी नाइन, बट तो अब हम चलाते हैं ट्रक हर दिन, तो वो ट्रक मैकेनिकली ब्रेक डाउन भी होता है रास्ते में ना,
8: right.
11: तभी टूट जाता है,

0: सिचुएशन था।
1: हाँ, या भी आप दांत दबा कर जो
0: कुछ भी चलाते हैं, आप दांत दबा कर।
2: मैं बस वही कर रहा हूँ, अभी भी वही कर रहा हूँ, उधर दांत दबा के चला रहा हूँ।
0: चलो
2: एनीवे
1: ठीक है जी, आप कैसे हो भाई?
3: बढ़िया जी, हरदीप बात कर रहा हूँ।
1: हरदीप, आप क्या दबाते हैं?
3: मेरा मेरी बात नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ काम करता है। तो जब उसने काम शुरू किया तो जो हमारी बॉस है ना, मालकिन बोलते हैं हम उसको।
1: अच्छा,
3: तो वो जब भी सुबह आती है तो वो बोलती है हवाया
0: हवाया।
1: हाँ भाई, हाँ
3: या तो उसका मतलब है हाउ आर यू।
0: मैंने सही बोला था, हाँ भाई, हाँ नहीं
3: हवाया, तो हवाया तो मेरे फ्रेंड को लगता था वो बोल रही है सेवैया।
1: अच्छा, हवाया
3: सवैया।
0: तो आपके फ्रेंड ने क्या
1: भाई
0: किया?
1: मैं तो जवाब भी नहीं दे पाता उसका, समझ में नहीं आता।
3: you know what I mean?
0: जी जी, समझ में आ गया मुझे तो।
3: और वो ये भी बहुत बोलती है you know what I mean?
0: अच्छा, ये भी बोलती है। इंटरेस्टिंग है यार हरदीप। बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपने बोला कि आपकी जो बॉस है वो हवाइयां जब बोलती है,
1: वो बोलती है दोस्त बोलता है,
0: उन्होंने कहा वो बोलती है, तो इनके दोस्त को लगता है कि वो बोल रही है सेवैया ना। हाँ, तो आपका दोस्त रेस्पोंड कैसे करता था वो मुझे जानना है।
3: वो अभी भी हंस देता है जब वो अभी भी बोलती है, तो अभी भी हंस देता है आगे से। अभी उसके सामने हंसता लेकिन थोड़ा इधर उधर होके हंस देता।
0: Okay, Ardeep, thank you so much for your call. Have a wonderful Friday. Thank you.
3: Thank you.
0: Thank you. मेरे को इनके बात से याद आ गई कि वो क्या बोलते हैं कि ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ लोगों का जो बोलने का तरीका, लाइक दे वेरी फास्ट स्पीकर्स प्रोबेबली, और कुछ लोग सर्टन वर्ड सर्टन तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो आपको डिफिकल्टी होती है समझने में। अब मेरे साथ ये बहुत होता है जहाँ पर अगर कोई एक सर्टन तरीके से कुछ बोलता मुझे नहीं समझ में आता, वो पूरी लाइन क्या पूरा कॉन्वर्सेशन बोल दे मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा।
1: कॉन्वर्सेशन बोलते हैं,
0: पूरा कॉन्वर्सेशन अगर हो जाए मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उस सिचुएशन में आई डू द सेम, मैं सिर्फ हंसती रहती हूँ और मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं पता मैं क्यों हंस रही हूँ, बट पूरा कॉन्वर्सेशन हो जाता है इस तरीके से। तो आई अंडरस्टैंड दैट। फाइनल कॉल, गुड मॉर्निंग।
4: मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: एकदम बढ़िया, आप कैसी हो?
4: बढ़िया बढ़िया, मैं आपका रेडियो सुन रही थी
0: जी।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने।
4: देखो सच में बहुत मेहरबानी है, मैं 1 week का बेबी हुआ है मेरा अभी, एंड आई एम लुकिंग आफ्टर हर। थैंक यू। अब आप नहीं बोलेंगे विजय जी?
1: नहीं नहीं, मैं तो सच में ही बोल रहा था।
0: He is genuinely grateful. बस उनका टोन थोड़ा डिफरेंट था।
4: I'm just making fun.
1: अच्छा बताओ।
4: थोड़ा टांग खींचनी चाहिए ना विजय जी के। विजय जी
1: मेरे पास थोड़ा ही बाकी रह गया।
0: मैंने खींच दिया।
4: कोई नहीं, वो मैं पूजा जी के लिए छोड़ देती हूँ।
1: बताओ जी।
4: आपका ये टॉपिक सुन के ना मुझे अपने कजन ब्रदर की याद आ गई। उसको पहले आदत थी सर को फ बोलने की।
0: सर को फ बोलने की?
4: हाँ, तो लाइक अगर उसको बोलना है कि मुझे शादी में जाना है तो वो बोलेगा कि मुझे शादी में जाना है।
0: अच्छा।
4: तो इट साउंड्स सो लाइक फनी समटाइम्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टॉयलेट जाना है तो हम हिंदी में बोलते हैं सुसु जाना है, तो हम उसे कह देते हैं अच्छा तो फिर क्या बोलेगा, कहता है दीदी यही बोलूंगा फुफू फुफू जाना है। तो हम लोग उसका इतना फन बनाते थे। तो उसका लास्ट ईयर शादी हुआ, अभी तो ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल ना हो ना, तो इंडियन आर्मी में।
1: हाँ,
4: वही मैंने पूछा उससे, मेरा पहला क्वेश्चन यही था। मैंने बोला भाई जो भी है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज, बट ये बता तू अभी भी सो को फ बोलते है या इट हैज सेटल ना? बोलते नहीं नहीं दीदी, अब तो मैं अच्छे से बोलता हूँ अब, क्योंकि कमांड देनी पड़ती है ना, तो हाँ। वहाँ तो फंबल हो
0: जाएगा। तो
4: या हाँ, तो मुझे आपके टॉपिक से उसी की याद आ रही थी अभी। चलो आई विल शेयर माय।
0: नाम क्या है आपके इस कजन का?
4: उसका देवेंद्र,
0: थैंक गॉड उनका नाम ऐसे नहीं था वरना नाम ही अपना कैसे बताता ना। बट थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए।

0: आपका नाम क्या है मैम?
1: मोनिका.
0: मोनिका, मोनिका, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप यू आर एंजॉयिंग योर टाइम विद योर लिटिल क्यूट बेबी. एक हफ्ते का बच्चा यार, सो सो क्यूट. आई मीन यू कैन इमेजिन. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस जर्नी.
1: थैंक
0: यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट न्यूज विद अस टू.
2: Thank you.
1: Have a good day.
0: You too. Bye. So, अभी यार बड़ा मजा आ रहा था और आज काफी लोगों ने अपने अपने कॉल्स भी करते हुए अपना जो यू नो ये शेक है स्टोरी शेक ही. सपना ने कहा है कि वो क्लियर कर दे, जब सैंडी 100% बोलती है वो इरिटेटिंग नहीं है. तो वी अंडरस्टैंड सपना. आपने सिर्फ बताया कि आपने उनका तकिया कलाम जो किया है ये पकड़ा था. पर थैंक यू आप सभी.
2: ये बात और है कि सैंडी को हम कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे कि सपना ने कैसे कैसे बोला. नहीं ऐसी कोई बात नहीं.
0: जस्ट जोकिंग. बट थैंक यू सो मच आप सभी के कॉल्स के लिए. अभी आप मैसेज कर सकते हैं इफ यू गॉट एनी स्टोरीज टू शेयर विद अस.
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply. चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक. प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी और जबरदस्त वैल्यू. सुपर हाइब्रिड सिस्टम.

0: 12 मिनट बाकी इस समय हमारे स्टूडियोज में 9 बजने में ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये रहेगा. और फिलहाल आज का ये इस घंटे का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपके लिए बेनी दयाल की आवाज में हम शामिल कर रहे थे अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी ABCD2. मैंने आपका माइक ऑफ किया था. यस
1: अभी क्या है ना कि आप सोच रहे होंगे कि 9 बजने वाले हैं, आज का बोर्डिंग कॉल हुआ
0: नहीं हुआ, क्या हुआ.
1: इतना हम आपको बताएं, आप BC और अपना नाम ये लिखकर 5599 पर भेज दो, फायदे में रहोगे.
0: राइट,
1: BC बोर्डिंग कॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है, BC लिखे और अपना नाम लिखे और 5599 पर जल्दी से विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स हमारे पास भेज दे.
2: द रश आवर brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win to return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
8: Kitchen Mania free installation.
9: Staying a cloudy one today, a high of 17. Fog impacting domestic flights at our airport once again, in and out, a number of delays and cancellations. Driving's been absolutely fine though. Southern Motorway, 28 minutes, Manukau to town. Slow from Mount Wellington, maybe a few heavy spots. Northwestern, 18 minutes in from Massey. Lots of traffic, but it's steady all the way. And Northern, 20 from Constellation. Just patchy here and there.
8: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
10: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापातोई. सोना संसार, संसार रिश्तों का.
11: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
12: Please use your imagination for the following ad.
13: If I won Powerball, I'd book my family a trip to, and I'd stay right here with my new.
12: Imagine winning $12 million this Saturday. Play in store or online.
14: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 12 panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: Ladies and gentlemen. Okay.

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो लो भाई, 7 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और आज का हमारा हम बोर्डिंग कॉल जो है ये हो चुका है,
3: बज चुका है.
2: द कॉल हैज बीन मेड. नाउ ऑल यू हैव गॉट टू डू इज रोवर पर जाए और जहां पर आपको दिखे एंटर कोड नाउ वहां टाइप करें बोर्ड नाउ और सबमिट पर क्लिक कर दें. इतना मैं आपको बताऊं, 4 दिन पूरे हुए हैं विद इन 4 डेज ऑफ द कॉम्पिटिशन. 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एवरी सिंगल टाइम जब कॉल आउट हुआ है अपनी एंट्री डाली है.
3: ओह रियली?
2: यस, देयर आर 2 पीपल जिन्होंने हर एक
3: बोर्डिंग कॉल पर एंट्री डाली है.
2: बोर्डिंग कॉल पर एंट्री डाली है एंड इन द फर्स्ट 4 डेज वी हैव रिसीव्ड क्लोज टू 700 एंट्रीज.
3: वो, बट द डेडिकेशन ऑफ दीज 2 पीपल मैन, they are competing for it. Yeah. That is amazing.
2: इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी चांस हो, तो आपको करना क्या है?
3: बोर्डिंग कॉल सुनते रहना है. When you hear the boarding call, make sure आप हमारे साथ जुड़े रहें और सीधे रोवा पर जाएं. रोवा ऐप पर जहां पर लिखा हो एंटर कोड, वहां पर आप जाकर बोर्ड नाउ ये लिखें और फिर सबमिट पर क्लिक करें और बदले में ड्रो में शामिल होकर थैंक्स टू सॉल्मन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु. विजिट flysolmons.com. इनकी ओर से आप रिटर्न एयर टिकट्स 2 लोगों के लिए और 100,000 डॉलर स्पेंडिंग मनी जीत सकते हैं.
2: और अगर आपको पेज का लिंक चाहिए BC, अपना नाम ये 5599 पर भेज दो.
3: और रिमेम्बर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज याद रहे रह रहकर बारिश जो है ये होगी, बादल भी छाए रहेंगे। सनसेट होगा 5:47 PM पर। खासतौर पर आज इवनिंग में बारिश जो है ये बताया जा रहा है ज़्यादा होगी। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 18 डिग्रीज तक रहेगा, ओवरनाइट 10 डिग्रीज, करंट टेम्परेचर 13 डिग्रीज है।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग।
4: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो?
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: तो आज का क्या बकते हो, क्या है आज की स्टोरी में?
6: बहुत सारी स्टोरीज हैं आज क्या बकते हो में, और कुछ पुरानी कहानियां हैं जो आज हम रिलीव करने जा रहे हैं। 2015 में बरेली में एक बंदर बस चलाता हुआ दिखा था।
1: रियली में? कि किसी की वो थी, क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन?
6: इमेजिनेशन नहीं, एक बंदर पार्किंग में खड़ी बस के अंदर जा पहुंचा, उसने इंजन स्टार्ट कर दिया और साथ ही गियर में भी डाल दिया बस को।
1: वाह वाह वाह यार।
6: उसके बाद बंदर ने इस बस को दो बार बसों से ठोका। हाँ,
1: और बस को दो अन्य बसों में जाके ठोका। ओके।
6: इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था 2016 में, छत्तीसगढ़ में ये हुआ था, जहां पर बबली को गिरफ्तार किया गया था।
1: बबली कौन?
6: बबली नहीं जानती आप?
1: नहीं, बंटी और बबली वाली बबली?
6: ये बबली बकरी है।
1: अच्छा।
6: बकरी को और उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि बबली बकरी ने पड़ोस में रहने वाले जज हेमंत रात्रे के घर में घुसकर फूल और सब्जियां चबा डाली थी। तो बकरी को भी गिरफ्तार किया गया, बकरी के मालिक
1: को भी।
6: हाँ,
1: क्योंकि बकरी ने खा ली।
6: हाँ।
1: क्या बात है यार, ये बकरियां होती है थोड़ी बदमाश टाइप्स, यू नो, उनको जहाँ नहीं जाना चाहिए वही जाएंगे वो। एनीवेज, आज आपके लिए क्या बकते हो स्टोरी हम लेकर आ रहे थे। एंड इधर चलिए, एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है, हाय, वे इज द ऐप वे वी एंटर द कोड, आई माइट बी ब्लाइंड, ही वाला इमोजी भेजा इन्होंने। फिर कहा है, कीप हियरिंग द बोर्डिंग कॉल बट कांट फाइंड द कोड एंट्री थिंग ऑन रोवा। फिर इन्होंने एक विंक वाला इमोजी जो ये भेजा है।
6: इसीलिए हमने आपसे कहा है, बहुत सिंपल है, आप BC बोर्डिंग कॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है BC लिखो। क्या हुआ?
1: हाँ, आगे बोलते रहिए।
6: BC लिखकर 5599 पर भेजो,
1: राइट,
6: उस पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली जो कंपटीशन का लैंडिंग पेज है,
1: हाँ, वहीं पे जाओगे सीधा,
6: डायरेक्ट एकदम वहीं पर हम आपको गिराएंगे।
1: हाँ,
6: लैंड कराएंगे और आप
1: क्या कर रहे हो आप?
6: हाँ, और आप वहाँ एंटर कर देना बोर्ड,
1: वहाँ पे लिखा होगा एंटर कोड नाउ।
6: हाँ,
1: तो क्या करना है, जहाँ पे एंटर कोड नाउ लिखा होगा वहाँ पे आपको टाइप करना होगा बोर्ड नाउ, BOARD स्पेस NOW, बोर्ड नाउ लिखकर आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
6: हाँ, और टर्म्स एंड कंडीशंस का भी वो टिक होगा, अगर आप टर्म्स कंडीशंस पढ़ चुके हैं तो उसमें टिक करके क्लिक ऑन सबमिट और आपकी एंट्री चली जाएगी।
1: That's it. It's really simple.
6: तो इट्स वेरी सिंपल। अगर ढूंढने में कोशिश हो डिफिकल्टी हो रही है आपको,
1: तो BC,
6: हाँ, या फिर हमारा फेसबुक पेज विजिट करें, वहाँ पर फीचर्ड फोल्डर में आपको एक पोस्ट मिलेगा इस कंपटीशन के बारे में, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो भी आप जो कंपटीशन पेज है उस पर चले जाएंगे। बट सिंपल थिंग इज BC
1: इजी है, वो जैसे फोन पे आया वैसे ही लिंक पर क्लिक कर ओपन किया। कुछ लोग DC लिख रहे हैं, DC नहीं BC लिख रहे हैं, भात चावल।
6: हाँ,
1: बी फॉर भात, सी फॉर चावल।
6: अरे बोर्डिंग कॉल बता रहे हैं ना।
1: हाँ, बोर्डिंग कॉल भी बोल रहे हैं, बट मेरे को कुछ अलग करना था, दैट्स व्हाई।
6: बोर्डिंग कॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है बस वही लिखना है BC। इस बात का भी ख्याल रखें, बी और सी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पेस नहीं होना चाहिए।
1: स्पेस दिया तो कहीं और चले जाओगे आप।
6: यस,
1: राइट। ये तो हो गई बातें अबाउट बोर्डिंग कॉल, जिसकी कॉल स्पेशल अनाउंसमेंट जो है ये हो चुकी है। अब आपको बस जाकर एंटर करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, याद रहे लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर ही करेंगे आप एंट्री, तभी जाकर आपकी एंट्री वैलिड होगी। दूसरी ओर आपको याद दिला दें, रक्षाबंधन प्रमोशन हमारा, सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू ये होने को है। आज टॉपिक हम आपको देंगे, उस टॉपिक के हिसाब से आपको अपने सिबलिंग को रिव्यू करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना होगा, और बदले में आपका नाम जाएगा ड्रॉ में, जहां पर आप जीत सकते हैं योर शेयर ऑफ $500, क्योंकि टोटल ऑफ $500 हम गिव अवे कर रहे हैं अमंगस्ट टू पीपल, तो आप भी विजेता हो सकते हैं जरूर।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं. सबसे पहले आपको याद दिला दें, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. एंड आई हर्ड द वॉइस ऑफ रवितेश देओ, क्या खूबसूरत गाते हैं यार ये, एंड वेरी अमेजिंग परफॉर्मर ही सीम्स टू बी. मैंने अभी तक इनको लाइव परफॉर्म करता हुआ कभी नहीं देखा, बट आई हैव जस्ट यू नो हर्ड हिम व्हाइल वी वर प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर शो, और बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहेगा. इमेजिन आप यू नो अगर डिवोशनल स्पिरिचुअल जर्नी जो है अपना ये म्यूजिक के साथ पसंद करते हैं एक्सप्लोर करना, या फिर जो डिवोशनल म्यूजिक है जैसे कीर्तन हो भजन हो ये आप बहुत पसंद करते हैं, उसका एक अगर आपको कंटेम्प्रेरी कॉन्सर्ट लाइक प्रेजेंटेशन मिले,
3: एक जेम सेशन,
2: या इमेजिन लाइक फ्यूजन आपको सुनने को मिले जहां पर लाइव बैंड एक और म्यूजिक प्ले करे और रवितेश देओ और उनकी इनक्रेडिबल टीम जो है ये आपके लिए लाइव परफॉर्मेंस करे, वोकल्स वोकल आर्टिस्ट जो है यहां पर परफॉर्म करे, तो पूरा का पूरा एटमोसफियर कितना अलग होगा. इट विल बी ब्यूटिफुल डिवोशनल बट एट द सेम टाइम अ वेरी कॉन्सर्ट लाइक एनवायरमेंट जिसका मजा आप उठा सकते हैं, बीट आप किसी भी जनरेशन के हो, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर जनरेशन. तो ये आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट की ओर से. एंड एक और तो ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ द ब्यूटीफुल कोर्स बिहाइंड दिस होल कॉन्सेप्ट, दिस होल शो भजन जैम्स के पीछे इज क्योंकि ये जो भजन जैम्स किया जा रहा है इट्स अ स्पेशल इवेंट बीइंग हेल्ड ताकि गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी जो है इनकी सहायता की जाए, इनको फाइनेंशियल योगदान जो है ये प्रोवाइड किया जाए. सो दिस इज बेसिकली अ ब्यूटिफुल इवेंट विद अ वेरी ब्यूटिफुल कोर्स एज वेल जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं. इट्स हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे 22 अगस्त को रात 7 बजे से एट वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में. टिकट्स भी काफी रीजनेबल है, ओनली $30, और अगर आपके पास बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 5 उनके लिए एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, और यहाँ पर स्नैक्स एंड कावा वगैरह जो है ये भी बेचा जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल. और अगर आपको यू नो कहीं फिजिकल लोकेशन पर जाकर टिकट लेने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी बंदोबस्त है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट आप ग्रैब कर सकते हैं बाय विजिटिंग eventbrite.co.nz. eventbrite.co.nz आप विजिट करें, ग्रैब योर टिकट्स. एंड फिजिकल लोकेशंस जिनमें जेस फ्रेश मार्ट, वेली फ्रेश, पापाटोईटोई और शिव प्रसाद एंड सन्स केल्स्टन जो है ये शामिल है जहां से आप टिकट्स जरूर ले सकते हैं.
3: ऑन द अदर नोट, आज 14th ऑफ अगस्त है और आज वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में होने जा रहा है राधे राधे बॉयज न्यूजीलैंड की पेशकश ग्रैंड भजन नाइट, और इसमें कलाकार रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अविनेश बलराम और यूएसए से आए हुए जूनिया अशोक. इन दोनों कलाकारों को पिछले साल आपने देखा था हनुमान विस्तार का भजन जो है जब इन्होंने गाया था, तो पिछले साल जहां पर विस्तार या कथा जो है ये जाकर रुकी थी वहीं से आगे के भजन जो है ये आज आप सुन सकेंगे वैदिक सेंटर में. और कुछ गिने चुने टिकट्स जयस फ्रेश मार्ट पापाटोईटोई से आप ले सकते हैं, वैसे आज 6:30 से जो गेट्स है ये आपके लिए खोल दिए जाएंगे और कुछ टिकट्स जो है गेट्स पर भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. तो $20 है सिर्फ टिकट का प्राइस और आप जाकर उसमें मजा ले सकते हैं. और इन दोनों कलाकारों को लगातार दूसरी साल एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं.
2: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि और एक बहुत ही खास जो इवेंट ये होने जा रहा है विच इज़ द 4th नेशनल न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22 को रहेगा विच इज़ नेक्स्ट सैटरडे एंड 23 को रहेगा विच इज़ नेक्स्ट संडे. बर्किनहुड स्काउट्स होल जो है यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं. सो एवरी वन वॉज लिसनिंग टू अस, अगर आप भी कैरम खेलना पसंद करते हैं, यू आर अ प्लेयर ऑफ एनी लेवल, इट डजेंट रियली मैटर, अगर आप पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा, इन्हें आप कॉल कर सकते हैं, इनसे आप बातें कर सकते हैं 021-090-85067 पर, और आप इनसे बातें करते हुए रजिस्ट्रेशन जो है ये भी जरूर कर सकते हैं. और साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने बातें की हैं सैंडी एंड रूसबे के साथ भी, इन अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे, जहां पर पंकज मोंगा जो है इनकी जर्नी और कॉमन मिथ सराउंडिंग द गेम कैरम इसके बारे में इन्होंने काफी बातें की हैं और क्यों नेशनल टूर्नामेंट्स आर एसेंशियल ताकि ऐसे क्लासिक स्पोर्ट्स को जिंदा रखा जाए, इस पर भी इन्होंने अपना जो राय है ये शेयर किया है. सो इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, इफ यू वांट टू नो द जर्नी ऑफ पंकज मोंगा द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन, तो आप CB लिखकर 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड अनफिल्टर्ड के रीसेंट एपिसोड में ये पूरा कॉन्वर्सेशन आप चेकआउट कर सकते हैं.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, Sif Rewapar.
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz
5: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
6: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
7: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
8: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
7: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
8: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी
7: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
9: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
10: टेक योर फेरी फ्रेंड्स बैक टू देयर रूट्स Add a little Jimbo's. Raw meat mixed into mealtime. Feed as a main meal, topper or treat. Get yours now in your supermarket pet fridge and give your pets the Jimbo's they deserve.
11: Hi everyone. New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
12: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
15: What's going on?
16: What's going on आपके लिए on the breakfast show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं if you remember हमने आपसे promise किया था कि रक्षाबंधन के मौके पर हमारा जो रक्षाबंधन promotion जिसमें भाग लेकर you can win yourself your share of $500 ये भी opportunity हम आपको जरूर देंगे
17: तो अब वो वक्त आ चुका है जहां पर आप में से दो लोग होंगे जिनको $250 each मिलने वाला है और simple सी चीज siblings performance review आपको हमें अब कॉल करना है लाइन हम खोल रहे हैं 0800-004866 यानी 0800-00 हम इस नंबर पर आप कॉल करें और कोई एक विषय हम आपको देंगे या कोई एक टॉपिक आपको हम देंगे जिस पर आपको अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस जो है उसे रिव्यू करना पड़ेगा आपको बताना होगा वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने किया है वो या फिर
16: कितना अच्छा है वो उस पर्टिकुलर चीज में या कितना बुरा है वो उस पर्टिकुलर चीज में एज अ सिबलिंग और टॉपिक हम आपको देंगे बस आपको अपने सिबलिंग के बारे में बताना है उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर
17: कल क्या हुआ था कि बहुत देर से कॉल्स आए और जब आ रहे थे तो उसके बाद बंद ही नहीं हो रहे थे बट वी कुड जस्ट टेक ओनली वन कॉल
16: क्योंकि टाइम नहीं था बिकॉज़ व्हाइल वी वर इनवाइटिंग द कॉल्स उसमें काफी टाइम चला गया ना
17: तो इसीलिए हमने कहा है कि लाइंस अब हम खोल चुके हैं 0800-004866 ये नंबर आप दबाएं अपने कीपैड पर कॉल आ जाएगा आंसर करें ड्रॉ में शामिल हो जाए क्या पता भाई किस्मत अच्छी रही तो $250
16: Yeah, and remember, when you give us a call on 0800-HUM, 0800-004866 par, ye toll-free number hai, iske liye aapko charge nahi kiya jayega. So, you can give us a call right now, and humare saath aaj humara Raksha Bandhan Siblings Performance Review mein aap part le sakte hain. Aaj ke topic bhi humare paas ready hai for us to ask you ki aapke sibling is particular maamle mein kitne achche hai, kitne bure hai, aur iska jawab dete hue aap drokka hissa ban sakte hain. We'll give you a minute टू गिव अस अ कॉल. अगर एक मिनट के अंदर अंदर आज कॉल आया, वेल एंड गुड, आपका नाम हम रो में शामिल करेंगे. अगर कॉल नहीं आया तो मजबूरन विदाउट एनी एंट्रीज हमें आगे बढ़नी होगी. बट वीड लव टू हियर फ्रॉम यू, ताकि ये जो मौके हम आपको दे रहे हैं विजेता बनने की, इसका फायदा आप जरूर उठाए ना.
17: या
16: कॉल आ रहा था पर जैसे मैंने हाथ आगे किया रिसीव करने के लिए वो डिस्कनेक्ट हो गया.
17: उनको आपके हाथ दिख गए होंगे
16: प्रोबेबली. वो सेम टाइम द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड.
17: सो रिमेंबर द नंबर टू कॉल, अब लेस देन अ मिनट टू गो, 0800 004866.
16: और घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक. जीके का सवाल नहीं पूछेंगे हम आपसे,
17: कुछ सोचना भी नहीं है आपको, बस अपने भाई या बहन के बारे में बता देना है,
16: पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है. ऐसा करते, रेडियो का रूल है शांति नहीं होनी चाहिए रेडियो. हाँ, पे
17: बिल्कुल शांति नहीं होनी चाहिए. कोई कॉल नहीं कर रहा है,
16: नहीं कर रहा है, म्यूजिक बेड बजने देते, हम चुप हो जाते हैं. 15 सेकंड बाकी है.
17: ओके, यू गॉट 15 seconds टू कॉल अस, लेट्स सी.
16: मैंने बोला चुप हो जाते हैं.
17: नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा चुप होने का.
16: आज आपका दिल नहीं कर रहा चुप होने का, क्या बात है.
17: 15 सेकंड का वक्त है और उतना टाइम तो नहीं लगेगा आपका कॉल, आपको कॉल लगाने में.
16: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Unfortunately, no entries today.
17: तो क्या करें भाई,
16: मिस्ड अपॉर्चुनिटी बेसिकली.
17: हम लोगों ने तो पैसे अलग रखे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं. जितने लोगों का नाम अभी तक ड्रो में शामिल हुआ है
16: उनमें से कोई जीतेगा,
17: उनमें से कोई जीत सकता है, या फिर आगे चलकर आप और भी अपॉर्चुनिटीज आपको अगर मिलती है तो उसमें साथ ही में फेसबुक पेज पर भी कॉम्पिटिशन
16: अभी आ रहा है. कॉल क्या करूँ, ले लू मैं,
17: ले लो अभी, इतनी मेहनत से
16: एडजस्ट कर लेंगे ना. गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग पूजा.
16: गुड मॉर्निंग, कहाँ थी आप, इतने देर से इंतजार कर रहे थे आपका.
6: एक्चुअली मैं एवरी मॉर्निंग आप लोग को सुनती हूँ, कई बार कॉल लगाती हूँ पर लाइन बिजी आती है तो मैं
16: आज
6: मेरा कॉल नहीं लग पाता.
16: आज किसी का भी कॉल नहीं आ रहा था, देखो हम तो बोल चिक चिक कर बोल रहे थे, बट फाइनली यू कॉल्ड, सो थैंक यू सो मच, वी ट्रूली अप्रिशिएट दिस. सबसे पहले तो अपना नाम बताइए.
6: माय नेम इज प्रिया.
16: प्रिया, और प्रिया आज किस सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू आप करने वाले, मतलब आप

0: Yeah.
1: Is he really good at keeping your secrets or is he really bad?
0: No. वो मेरा secret नहीं रखता है, वो बता ही देता है. जब छोटे थे ना तो मम्मी को बता देता था, और जब मेरी शादी हो गई ना तो मेरे हस्बैंड को बता देता है. Oh my gosh.
1: तो आपने सबक नहीं सीखा, आप क्यों सीक्रेट शेयर करते हैं उनसे जब वो बहुत बहुत बुरा हाल है उनका इस मामले में?
0: हाँ, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं ना जो शेयर करने वाली बातें होती है ना वही शेयर करती
1: हूँ. जो सीक्रेटिव ना हो आपके लिए.
0: हाँ, मतलब उतना सीक्रेट ना हो, वो सीक्रेट बट उतना ना हो कि भाई हाँ किसी को नहीं पता चलना चाहिए. तो हाँ,
1: तो मतलब अगर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, हार्दिक को तो जरा भी पता नहीं चलना चाहिए ये बात.
0: हाँ.
1: और आप कैसी हैं उनके सीक्रेट्स रखने के मामले में?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ वैसे, मैं ना किसी को नहीं बताती. अगर उसने बताया ना मुझे कुछ भी
1: झूठी,
0: मैं किसी को भी नहीं बताती, इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताती अभी भी. बट वो ही बता देता है, मेरे हस्बैंड का उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो वो उसको भी बताता है, मेरे को भी बताता है. हाँ, बट मैं किसको नहीं बताती.
1: चलो
0: फिर जब मेरे हस्बैंड उस टॉपिक को लेके मुझसे बात करते हैं ना, तो मैं हैरान हो जाती हूँ. भाई इसने बोला था किसी को मत बता रहा, इसने आपको बता दिया.
1: चलो, थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कॉलिंग. आपका नाम हम डेफिनेटली ड्रो में शामिल कर रहे हैं. एंड विशिंग यू ऑल द वे बेस्ट.
0: थैंक यू विजय जी.
2: थैंक यू मैम. बाय बाय. Hollywood's most wanted. Gundi khad jao. Ya seedha andar aao. Main laun apna A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: the Claire Turners.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: What's going on?
4: 20 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में द ब्रेकफास्ट शो विद विजय ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
5: हम दोनों को ना अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है
4: मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई एम ऑल गुड
5: आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बट हम दोनों को हो रहा है सर्टेन वर्ड्स प्रोनाउंस करने में हम थोड़ा कर रहे हैं
4: नहीं अभी क्या है ना कि स्टूडियो में इतना शोर
5: आपको क्या हो रहा है
4: मैं परेशान हो गया मेरा सर दुखने लगा
5: वो मैं
4: इतने सारे लोग शोर मचा रहे थे स्टूडियो में आकर
5: हाँ बहुत सारे लोग हमारे स्टूडियोज में वेरी ट्रू राइट अभी क्या है ना आज के डेली राउंड अप हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको आज की हैवी रेन वार्निंग्स जो है फॉर ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ आइलैंड जो है ये लागू किया गया है इसका मतलब गंभीर बारिश जिसके बारे में पहले भी आपको बताया था लो लाइन इलाकों में इनफैक्ट बाढ़ चढ़ने की भी चेतावनी जो है ये लागू की जा रही है और ये जो वार्निंग्स हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा कहा गया है कि मोटरिस्ट्स ऑन द नॉर्थ आइलैंड ईस्ट coast drive according to the conditions especially overnight and tomorrow kyunki heavy rain warnings jo hai they come into effect for some areas aur sath hi sath aapke liye ye bhi kaha ja raha hai orange heavy rain warning jo hai ye in effect hai for bay of plenty west of kawarau until 3 pm today aur aise mein aur bhi bahut se ilakon ke liye jo heavy rain warning hai ye lagu ki gayi hai aur sath mein ye bhi kaha ja raha hai ki kal bhi aisa hi weather jo hai ye experience kiya jayega
4: और उसके साथ अगली जो खबर है नेशनल पार्टी लीडर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन आज क्राइस्टचर्च में हैं और आज वहां पर भाषण करने वाले हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो फेल्ड पार्टी लीडरशिप कोशिश की गई थी उनके खिलाफ और फिर उसके बाद कल जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं वो भी आए थे लक्सन का कहना है कि ही डज नॉट नो द नंबर्स इन कॉन्फिडेंस वोट ही वन उन्होंने कहा कि ओनली टू पीपल नो दोज नंबर्स एंड ही इज नॉट वन ऑफ देम क्रिस पैंक ने जो है इन्होंने कहा कि वो इस साल के चुनाव में उम्मीदवारी नहीं करेंगे जब क्रिस्टोफर लक्सन ने उनके सारे पोर्टफोलियोज जो है ये हटा दिए और ये आज का जो कहा जा रहा है कि स्पीच है यहाँ पर कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो है ये स्पेशल होने जा रहे हैं सो जैसे ही कुछ डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे ये आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे
5: और इसके अलावा एक खबर आ रही है कि 1 in 10 इंश्योर्ड कीवीज जो है ये फिलहाल अपना हेल्थ इंश्योरेंस गिव अप कर रहे हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है फॉर मेनी न्यूजीलैंडर्स और इस नए रिसर्च में कहा गया है 9% ऑफ पीपल विद हेल्थ इंश्योरेंस दे हैव कैंसल्ड देयर कवर इन 2025 विच वेंट अप फ्रॉम 7% 2022 के मिलान में अकॉर्डिंग टू मार्टिन जैकिंस रिसर्च ये कहा गया है कि 80,771 पीपल कैंसल्ड major medical cover 32,126 dropped comprehensive cover or 5,774 cancelled minor medical covers health insurance cost jo hai ye badh chuka hai 74.4% se over the 5 years compared to with overall inflation jo ki 24.9% se bada tha average health insurance claims per member ye badh chuka hai $1,097 se jo 2021 mein tha to $1,921 jo 2025 mein tha many people who are keeping insurance are choosing cheaper policies higher excesses ya fir fewer benefits ke sath wo apne insurance policies jo hai ye le rahe hain so why is it happening ki medical treatment jo hai is becoming more expensive claims are increasing aur premiums jo hai ye badh rahe hain kyunki log jo hai inki umr badh rahi hai and as a result it is difficult to make a choice for many families ki kya wo apna increasingly expensive premiums pay karte rahe ya fir risk le and go without a private health cover ye report highlight karta hai ki growing inequality notice की गई है एंड अबाउट 49% ऑफ पीपल इन न्यूजीलैंड्स वेल्थीएस्ट नेबरहुड्स हैव हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर्ड टू विद जस्ट 18% इन द मोस्ट डिप्राइव्ड एरियाज और ये जो एरियाज ऑफ कंसर्न है कि अगर ज्यादा पीपल अपने प्राइवेट इंश्योरेंस को अबंडन करते हैं तो मोर प्रेशर वुड बी प्लेस्ड ऑन द ऑलरेडी स्ट्रेच्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम
4: सो दैट्स योर डेली राउंड अप ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
3: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट Unlock your property's true sale value with

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
1: आज की पहली बात, कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ कीमती है। जिंदगी में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले दूसरा खोने के बाद।
2: Oh, that is so true.
1: और आज की दूसरी बात, वो बचपन ही था जो हर मौसम में मुस्कुराता था। वो बचपन ही था जो हर मौसम में मुस्कुराता था।
2: बस यही,
1: बस सोचे
2: है, काफी डीप बात है ये। बट यार आई लाइक यू दो बातें। आप जब नहीं थे ना दो हफ्ते, मैंने दो बातें नहीं की क्योंकि मेरे को पता है मेरा अंदाज वैसा है ही नहीं। मैं उतनी गहरी बातें जो है उस अंदाज से नहीं बोल सकती कि लोग उस पर सोच विचार करें, यू नो। बट वेरी ट्रू, सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव मेंशन्ड आज की दो बातों में। उम्मीद है कि आप भी इनसे कुछ सीखें, कुछ समझें और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। जाने का समय हो रहा है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एंजॉय योर फ्राइडे एंड हैव फन इन योर वीकेंड। मंडे को मिलते हैं ठीक से बच्चे पर एक बार फिर से द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर।

0: Doctor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. जितने भी लोग हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन हैं, आप लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद. और ऐसे में आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से कल इंडिया के लिए भी एक ही दिन, भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया इंडिपेंडेंस डे का, और आज पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है. तो आप सबको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद. अब मैं बात करती हूँ जब वीकेंड के बारे में और मैं समय के बारे में बात करती हूँ, तो मैंने समय से पूछा कि भाई तुम किसके हो, तुम अमीर के हो या गरीब के हो. तो समय ने पता क्या बोला हंसकर, समय ने हंसकर कहा, जिसने मेरी कद्र की मैं उसी का हूँ. तो याद रखिएगा, टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ वेरी वैल्यूबल, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. इसे किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप इसको अब अपने वीकेंड पर यूज़ करेंगे, बिल्कुल ये उसी पे डिपेंड करता है. अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, मैं काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ चुकी हूँ स्टूडियोज़ में आपका साथ निभाने के लिए 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे. और ये सब आपके लिए हो जाता है कशिश फूस के सौजन्य से, उनकी बदौलत आपके लिए ऐसा मौका आता है जहाँ मैं आपसे हंसती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बातें भी करती हूँ. बस थोड़ी देर बाद कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. अच्छा, एक चीज़ जो थी कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में आती रही कि हम बीमार नहीं भी होते तभी भी हम अपने ऐसा फील होता है ना कि गले में कुछ खराश आ रही है, कुछ हो रही है, या फिर यू प्रॉब्ली डोंट नोटिस दैट यू आर रिपीटिंग थ्रू आउट द डे. व्हाई डज दैट हैपन, क्या हो रहा है, चलो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं.
0: बचाओ क्या,
3: बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम कभी भी बोर्डिंग कॉल अनाउंस कर सकते हैं. तो $1,000 कैश मिलने वाले अलोंग विद 2 रिटर्न टिकट्स टू वनुआटू. और ये कैसे, कब, कैसे मुमकिन होगा, बस आप हमारे प्रोमो के ज़रिए तो सुनते चले जा रहे हैं. जैसे ही हम बोलेंगे बोर्ड नाउ, तो आपको इमीडिएटली हमारे रुवा ऐप पे जाना है, बोर्ड करना है. अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो BC लिख के 5599 पे कंपटीशन के पेज लिंक पर आप पहुंच सकते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी समझ सकते हैं. अ बिग थैंक यू टू सोलोमन एयरलाइंस जो 4 बार हफ्ते में फ्लाई करते हैं नॉनस्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू. एंड विजिट कर सकते हैं आप flysolomons.com के ज़रिए.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा की तरफ अगर हम चलते हैं तो यू बेली नोटिस के कोई रिपीटेडली ये इस तरह से थ्रोट अपना क्लियर कर रहा होता है, मे बी नो फीवर, नो कोल्ड, नो सोर थ्रोट या कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट ये थ्रोट जो क्लियर करना होता है, ये कॉन्स्टेंट क्लियरिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि म्यूकस होता है आपके गले में। समटाइम्स यू नो इट्स रिएक्टिंग टू सम इरिटेशन, ड्राइनेस, नेजल ड्रेनेज या रिफ्लक्स। तो इस तरह से आप लगता है कॉन्स्टेंट क्लियरिंग जो है, और मोस्टली यू नो इट्स अ साइन कि कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है ना। बट इसके साथ ये भी होता है कि थ्रोट कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इवन टू द स्मॉलेस्ट ऑफ सेंसेशन हमें लगता है कि पता भी नहीं चलता कभी आप थ्रोट को क्लियर कर रहे हैं इरिटेशन की वजह से, और फिर ओवर द टाइम एक ही सिम्टम आपका हैबिट बन जाता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स जो है पोस्ट नेजल ड्रिप, ये जो होता है ये म्यूकस फ्रॉम योर नोज टू द साइनसेस और फिर ये वापस आपको थ्रोट की तरफ लेकर आता है और फिर आपकी नोज तक पहुंच जाता है। ये एलर्जीज, ये क्रॉनिक साइनसाइटिस और साथ साथ नेजल कंजेशन, एक्सपोजर जहाँ पे आपको डस्ट पोल्यूशन के साथ होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ये आपकी थ्रोट क्लियर करने में यू नो एक हैबिट बनाने में कामयाब हो जाता है। नेजल म्यूकस जो होता है वो नॉर्मल होता है और ये कभी कभी पार्टिकल्स जो उसमें इरिटेंट जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब ये थिक होने लग जाता है म्यूकस, और उससे क्या होता है कि नोज़ जो है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। नाउ देर इज़ पॉसिबली समथिंग कॉल्ड अ रिफ्लक्स या साइलेंट रिफ्लक्स। ये होता है ये स्टमक के जो कॉन्टेंट्स है वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, इट रीचेज द थ्रोट और द वॉइस बॉक्स। अब जब तक आपका ये एसिड रिफ्लक्स जो एक क्लासिक एग्जांपल है, प्रॉबेबली आपको पता भी नहीं चलता है कि बर्निंग सेंसेशन आपके चेस्ट में होना शुरू हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ द थ्रोट जो इन्फेक्शन की तरह वो होता है यू नो ये आपको पता है कि आपके टमी से आ रहा है, वो रिफ्लक्स हो रहा है, उल्टा आ रहा है, भारी पड़ रहा है, लेकिन ये थ्रोट पर या वॉइस बॉक्स पर इफ़ेक्ट करता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके टमी में होती हैं ये आपके थ्रोट और वॉइस बॉक्स की तरफ जब पहुंचते हैं तो ये एक सेंसेशन बन जाता है। तो ऑफन व्हाट हैपेंस इज थ्रोट क्लियर इससे होने लग जाता है, इसे कहते हैं साइलेंट रिफ्लक्स। और ये प्रॉब्लम होती है जब आप बड़े मील्स लेते हैं स्पेशली ड्यूरिंग बेड टाइम, या फिर अल्कोहल, या फिर कैफिनेटेड या स्पाइसी फूड, दिस कैन वर्सन द सिचुएशन। अब ये टाइमिंग जो है ये थ्रोट के सिम्टम्स जो हैं ये काफ़ी नोटिसेबल हो जाते हैं स्पेशली आफ्टर योर मील्स। ओके, सो ये एक चीज़ जो है जहाँ पे ड्राई इंडोर एयर है या एयर कंडीशनिंग, डिहाइड्रेशन, सिगरेट का स्मोक या कोई और किसी तरह का सेकेंड हैंड स्मोक, यानी कि घर में आप तो स्मोक नहीं करें लेकिन कहीं आपको कहीं से वो स्मोक की पैसिव जो कहते हैं ना स्मोकर्स आप बन जाते हैं, डस्ट हो, केमिकल इरिटेंट्स हो, ये आपके थ्रोट को अनकंफर्टेबल फील कराने लग जाता है। समवन हु स्पीक्स फॉर आवर्स, जैसे हम बोलते हैं टीचिंग, प्रेजेंटिंग, शाउटिंग, टॉकिंग, यू नो इस तरह की चीज़ें आपके वॉइस बॉक्स में स्ट्रेन डालते हैं। ये इरिटेशन सटल हो सकती है, कोई ड्रामेटिक पेन नहीं होता, इंस्टेड एक ड्राई पैच होना शुरू हो जाता है, एक टिकलिंग सी फीलिंग आपके थ्रोट में आनी शुरू हो जाती है और फिर आप थ्रोट क्लियर करना शुरू कर देते हैं। डोंट थिंक दैट द मेडिसिंस आर गोइंग टू बी द कल्प्रिट फॉर इट, क्योंकि ये आपकी ड्राइनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आती हैं। ओके, सो ये ड्राइनेस कैन बी ड्यू टू इवन सम काइंड ऑफ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग। ये आप आवाज़ को रोज़ अगर यू नो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बार बार थ्रोट को क्लियर करना, मॉर्निंग में आप ठीक होते हैं और दिन में जैसे जैसे दिन बदलता जाता है ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। एक चीज़ है कॉन्स्टेंटली यू नीड टू डू इज गेट योर सेल्फ एज एन ENT चेक डेफिनेटली। और जब ENT चेक आप कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपना जो म्यूकस चेक करें और ये लेट मील्स, थ्रोट क्लियरिंग, कंजेशन, ड्राई इंडोर एयर और प्रॉबेबली दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू विल रियलाइज दैट दीज आर द पॉसिबल थिंग्स विच मेक दिस हैबिट ऑल द मोर अनोइंग। कोशिश कीजिए ये इसे आप संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे, बाय रेगुलेटिंग योर रूटीन।
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
2: वी गॉट टू गो।
0: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. Two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Auckland's growing with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
6: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live your California dreams in LA or San Fran. Relax in Honolulu. Head to Dallas and experience southern hospitality at its finest. Or take a trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong. Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
8: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office shout out.
2: So, office shout out में Go Bananas की टीम जो है ये इस समय मुझे सुन रही है एंड अ बिग थैंक यू टू यू. आपने ये लिख के नहीं भेजा कहाँ से, तो लगता है कि जितने भी Go Bananas की टीम है वो सब शायद सुन रही हो, यू नेवर नो. सो बिग शाउट आउट टू ऑल द Go Bananas टीम फ्रॉम हम स्टूडियोज. मैं हूँ काशिका और मेरा साथ आपके साथ 12 बजे तक रहने वाला है. बाय द वे, एक खास बात आपको मुझे और बतानी है, और वो बात ये है दैट आप कितने लोग जो हैं ये जानते हैं कि एक न्यूजीलैंड फैशन वीक होता है. ऑफ कोर्स आई थिंक वी ऑल नो. अब ये न्यूजीलैंड फैशन वीक में खादी बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है, इसमें इंडियन डिज़ाइनर्स जो आ रहे हैं ऑकलैंड में, और ये एक ट्रेडिशनल हैंडस्पन फैब्रिक जो खादी होता है, कंटेम्प्रेरी फैशन था, अब एक फैशन का नाम बन चुका है, और इसे हेड कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ लेकर आ रहे हैं राजेश प्रताप सिंह, और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर है. इनके साथ और भी डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और ये शोकेस करने हैं इंडिया न्यूजीलैंड का फैशन. तो ये डिज़ाइनर बहुत ही बड़ा दिन होगा हमारे लिए. 18 अगस्त को 8:30 बजे ये होने वाला है, और अगर आपको ये टिकट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप डबल पास जीतना चाहते हैं. खादी लिख के भेजिए 5599 पे KHADI और आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड करेंगे. ऑफ कोर्स अलोंग विद दिस nzfashionweek.com/tickets एंड खादी के जरिए आप ये टिकट्स खरीद भी सकते हैं.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे आपको पता है कि 200 स्टाफ के करीब स्काई सिटी के रोल्स जो हैं ये इम्पैक्ट होने वाले हैं, बिकॉज दे आर रिव्यूइंग, स्काई सिटी इज रिव्यूइंग देयर ऑपरेशनल मॉडल।

0: Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better and win better. क्योंकि ऐसे में रक्षाबंधन बहुत जल्द आने वाली है इसी महीने. और हम चाहते हैं हम एक भाई बहन की जोड़ी को डेफिनेटली हम कुछ आगे भी लेके जाएं. यानी कि हम चाहते हैं आप हमें कॉल करें. अब ये लकी कॉलर कोई भी हो सकते हैं, भाई या बहन. और आपको अपने भाई या बहन के बारे में कोई सिचुएशन जो आपको लगता है कि आज तक आपको याद है, आपकी मेमोरी के ज़रिए कोई बेस्ट टाइम या गुड टाइम, या फिर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने भाई बहन को भूल नहीं सकते, आपके लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्टिव हो रहे हैं, या फिर वो जैसे अभी हमारे प्रोमो में सुन रहे हैं, क्या आपकी बहन आपकी माँ बन गई, क्या आपके भाई आपके पिता बन गए, ऐसा कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं. 0800 00 हम पर आप ज़रूर कॉल करें. तो लकी विनर्स जो हैं वो $250 ईच लेके जा सकते हैं. 28th August के दिन ये ड्रॉ भी होगा. वाइल वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द टेलीफोन कॉल टू कम इन, हम चाहते हैं कि आप हमारे फेसबुक के पेज पर भी जाएं उसके बारे में इस गाने के बाद. और कॉल अगर आपकी आ रही है तो जल्दी से रोवा के ज़रिए, आई नो डिले होता है, कॉल करिए फटाफट इस गाने के बाद. आई टेक योर कॉल.

0: ईट बेटर लिव बेटर, बट मुझे इंतज़ार है आपकी कॉल का। कोई भी भाई या बहन, आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी मिलनी है आपकी, बहुत अच्छी लगेगी, और आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना भी और भी उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो 0800004866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड आई विल पुट यू इन द ड्रॉ स्ट्रेट अवे। अपने भाई या बहन की कोई भी ऐसी बात आपको लगता है जो आज तक आपके लिए यादगार बन चुकी है, जो आपको लगता है कि यू नो यू शुड बी डूइंग दैट। मेरे भी ब्रदर सिस्टर्स में एज डिफरेंस बहुत था, एंड वो हमेशा से ही, मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो मेरे लिए मेरी माँ समान है। मम तो है नहीं अब, लेकिन फादर भी नहीं है, लेकिन जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरे लिए मेरी बहन का, मेरी बड़ी बहन का घर मेरा मायका बन जाता है। तो वो बहुत उसी तरह से तैयारी करती है जिस तरह से मेरी माँ मेरे लिए तैयारी करा करती थी। तो भाई ये कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे डेफिनेटली। आप यू नो एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर कुछ फील करते हो तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ कॉल कीजिए, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँगी। ऑफकोर्स आपका नाम हम ड्रॉ में तभी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पर चले जाते हैं। हमारे पेज पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही एक यादगार मोमेंट था आपके लिए। उस यादगार मोमेंट को आपने संभाल के रखा, संजो के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप यू नो उससे भी फोटो को ऐड करें, अपने भाई या बहन का नाम भी ऐड करें। चलिए हमारे पहले कॉलर का फोन आ चुका है। नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, किनसे बात कर रही हूँ मैं?
1: नमस्कार कशिका, गौरव दिस साइड।
0: हेलो, हाउ आर यू?
1: मैं तो बस बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
1: बताइए का आखिरी दिन कैसा जा रहा
0: है? आप सबके टेलीफोन कॉल का इंतजार
1: मैं भी बस ड्रॉ में एंटर होने का इंतजार कर रहा था।
0: चलो चलो बताओ।
1: मैंने बस अभी अभी रेडियो ऑन करी, तो आज आई डोंट नो कि आपने पूछा क्या है कि अपनी सिस्टर के साथ अच्छी मेमोरी।
0: यप बताइए।
1: हाँ तो भाई मेरे को अच्छी मेमोरी तो नहीं याद, पर मेरे को बुरी मेमोरीज बहुत सारी याद है।
0: चलो रिव्यू करो, रिव्यू करो, बताओ बताओ।
1: एक बार क्या हुआ था, हम छोटे थे, लाइक आई वाज, हम चार भाई बहन है, तीन भाई है एक बहन है, बहन सबसे छोटी है।
0: क्या नाम है बहन का?
1: सोना जी।
0: अच्छा ओके।
1: तो वो हम सब में ना एक एक साल का डिफरेंस है, हमारे पेरेंट्स प्रोडक्टिव थे तो एक एक साल का डिफरेंस हम सब में।
0: ओके
1: ठीक है। तो क्या हुआ, हम थे मेरा बड़ा भाई और मैं लड़ रहे थे, लाइक वी वर अबाउट 6 or 7 समथिंग। तो तब ना दहेज में ना ड्रेसिंग टेबल मिलता था जिसमें शीशा लगा होता था, तो मम्मी का दहेज, पापा का दहेज में आया था। अब हम लड़ रहे थे और हमने वो तोड़ दिया।
0: ओह नो।
1: मेरे भाई ने या मैंने किसी को, हम दोनों ने धक्का दिया एक दूसरे को और वो टूट गया। हाँ। हमारे पास कुत्ता था एक, ब्राउन, वो ब्रूनो नाम था उसका।
0: हाँ।
1: तो हमने सोचा कि इसके ऊपर इल्जाम डाल देंगे कि इसने तोड़ा।
0: अच्छा फिर
1: अब शाम को पापा आए, अब होता है ना चार में से कोई ना एक कोई चुगलखोर होता है।
0: हाँ।
1: अब वो निकली मेरी बहन।
0: ओहो।
1: अब उसने पापा को बता दिया कि भाई पापा कुत्ते ने नहीं तोड़ा, आपके दो कुत्ते ना उन्होंने तोड़ा।
0: ओके
1: तो हमारे ना, हमारी एक गली में ना एक पानी की पाइपलाइन जाती थी बहुत बड़ी सी। अभी वो 607 पापा ने हमें नंगा किया और हमें मुर्गा बना दिया उस पाइपलाइन पे ताकि पूरी गली देखे।
0: ओके
1: तो ये एक मेमोरी है जहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। फिर तो पता नहीं है ऐसी कितनी मेमोरीज है। मेरे यहाँ आने से पहले उसने मेरे को मेरी बीवी से पिटवा दिया मेरे कर करके, क्योंकि मैं यहाँ पे था, मेरी वाइफ इंडिया में थी, उसने उसके कान भरे और बस हो गया
0: कलेश
1: कि आपका पति आपको वहां जाके भूल गया, देखो वो ऐश मार रहा है और आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हो ये वो। बस
0: अभी बातचीत होती है कि नहीं होती है, लड़ाई लगते
1: होती है? नहीं बातचीत होती है। तो ना मेरे को ना ये सारी चीजें ऐसे पता चली जब उसने अपने ब्लॉग में डाला सारा का सारा। अब उसके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खाते हैं, लाइक 500,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं उसके। तो वो पूरे जग हंसाई करवाती है हमारे।
0: अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। गौरव मैंने आपका नाम और सोनाली का नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया।
1: उसका नाम रहने दीजिए, वो डिजर्व नहीं करती, आप लड़ रहे हो। उसे उसे बता दूंगा कि हाँ भाई उसका दादा था।
0: ओके ओके,
1: हार गई।
0: अच्छा चलो ठीक है, ओके ठीक है, बाय
1: बाय बाय, थैंक यू
0: थैंक यू। Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
4: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
5: The Afterpay Day sales are back. Score up to 70% off thousands of brands like Harvey Norman, PB Tech, Hallensteins, and Zed when you check out with Afterpay. And Sunday, TCs, fees, and credit checks may apply. See afterpay.com for Afterpay terms.
6: Dinner is sorted with fresh deals at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And Pam's carrots or brown onions, select size, $3.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर पर्पस इन लाइफ। आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी।
8: मौत मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
7: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर फिल्म्स। आवारापन रेटिंग TBC।
9: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
10: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customize.
9: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
10: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
9: Elite Bathroomware.
10: A reflection of you.
11: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
12: Jen didn't think she needed a DVS system.
13: Oh, I've got insulation in that.
12: But Jen had forgotten about the mold on her walls and curtains.
13: Ah, yeah.
12: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mold and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
14: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: So, ड्रीम डायरी में जब मैं पहुंच जाती हूँ तो मैं अपना एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ. आई ड्रीम्ड ऑफ ब्राउनीज. अब ये ब्राउनीज एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स अ ट्रीट दैट आई थिंक वन हैज़ टू बी आई बीन थिंकिंग अबाउट गिविंग माई सेल्फ. और बिना किसी गिल्ट के मन करता है कि बहुत सारा मीठा खाऊं. ऐसा कुछ नो शुगर नो डायबिटीज नथिंग एट ऑल. बट ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मीठा खाने से वी ऑल नो दैट व्हाट कैन हैपन, इट कैन लीड टू समथिंग एल्स, बट दैट्स फाइन. तो या सो आई जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट. तो अगर आप ये ड्रीम करते हैं तो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपन्स. तो मैंने अपने आप सुबह जाके चेक किया. मैंने कहा व्हाई डिड आई ड्रीम ऑफ ब्राउनीज आउट ऑफ ऑल द थिंग्स. तो बेसिकली इट्स ऑल दैट यू आर स्टिल डिजर्विंग सम ट्रीट फॉर योर सेल्फ. बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, भागी हूँ दौड़ी हूँ पूरे जुलाई के महीने में. तो अभी एंड इट्स ओवर ड्यू. और देखिए ना कितना ओवर ड्यू है कि अभी आज आधा महीना खत्म हो रहा है, 15 अगस्त आ जाएगी कल, आज 14 अगस्त है. क्या करे, ये ट्रीट तो ड्यू है.
0: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: इतना कुछ होता रहता है और मैं जानना चाहती हूँ, अगर हमारे कोई पाकिस्तानी भाई बहन हमें सुन रहे हैं और कोई आप ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं फॉर दी आज़ादी मुबारक जो आप को मैं बहुत तहे दिल से देना चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं 0800 हम पर कॉल करें या 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं. इट विल बी ग्रेट टू जॉइन योर कम्युनिटी इन द सेलिब्रेशंस ऑन द रेडियो इटसेल्फ हियर विद मी ऑन हम

0: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
4: 19 साल बाद शिवम इज बैक, अ मैन हॉन्टेड बाय ग्रीफ एंड लॉस, सर्चिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ. आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी एंड दिशा पाटनी.
5: मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है.
4: आवारापन 2 नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अ फिल्म.
6: आवारापन
4: रेटिंग टीबीसी.
7: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
8: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
10: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
10: तो क्या करें?
1: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
14: हाँ. अच्छा
13: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
14: मिसेस सिंह.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
2: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
1: हम टाइम चेक. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Support is in place for the officer who fired the fatal shot at an armed man near Auckland's Sylvia Park Mall. The offender had been tracked after fleeing Gun City in Penrose with a stolen air rifle yesterday afternoon. Police are unsure if responding officers knew what type of firearm he was carrying at the time. National has its sights set on bolstering growth across the South Island. Christopher Luxon says if the party's re-elected, they'll invest in infrastructure, exports, energy and public services needed to drive its next chapter. The plan includes making public transport funding available for Queenstown Gondola Solutions and completing Tower 3 at Christchurch Hospital. Police are warning against dangerous behaviour ahead of a large bike ride planned for South Auckland. There were reports of participants blocking roads, intimidating drivers and swarming vehicles in previous events. An effective predator control is being credited for a tripling of bat activity in Kahurangi National Park. Doc's Moira Pride says it's a challenging task given the Peka Peka's flying range.
17: They can travel 25 k's in the night, so it's not a small area that we're talking about, but they tend to come back to the same area for their roosting.
16: In sport, a 3-over par opening round for Kiwi golfer Ryan Fox at the PGA Tour's FedEx Cup event in Memphis. He's tied for 60th place, just two golfers behind him, Rory McIlroy and Robert McIntyre. And a rugby with Shift 4 All Blacks coach Dave Rennie is glad to have captain Adi Sevier back in the squad. He's joined them in Pretoria.
18: He settled in well. He'll be on light duties today based on the travel. But yeah, good to have the skipper back in.
16: Sevier stayed at home for the first two tour games and won't feature on Sunday against the Bulls.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
19: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
20: सूचित किया जाता है कि अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की माँ, भूतपूर्व सुवा और मांगरी के ठाकुर भाई, गोपाल भाई पटेल की पत्नी ताराबेन पटेल की मृत्यु सूरत इंडिया में हो गई. प्रार्थना सभा कल सुबह 9 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार मैनेकॉ मेमोरियल गार्डन में सुबह 11 बजे होगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 0272-810-968 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। अलका, कल्पा, नीता, ममता, मुक्ता और डॉक्टर हर्षद पटेल की मां भूतपूर्व सुवा और मांगरी के ठाकुर भाई गोपाल भाई की पत्नी तारा बहन की मृत्यु सूरत इंडिया में होगी। प्रार्थना सभा शनिवार को यानी कि कल सुबह 9 बजे एंस फ्यूनरल होम नौसेट क्रिमेशन में किया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार मैनेका मेमोरियल गार्डन में सुबह 11 बजे होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0272-810-968 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि अनुराधिका डेविड जैनेट और जोसेफ की मां ज्वालापल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आने वाले सोमवार को सुबह 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0210-434-283 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। अनुराधिका डेविड जैनेट जोसेफ की मां ज्वालापल की पत्नी मैंगरी ऑकलैंड के तरुण देवी ज्वाला उर्फ राधा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार के दिन 11 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 0210-434-283 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
19: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
4: वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर वेयर लर्निंग इज फन। कॉल 0800-462626।
20: आज का फोरकास्ट बताया जा रहा है इट फील्स लाइक 14 डिग्रीज राइट नाउ, 547 पर सनसेट बताया गया है।
4: वॉल

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। 14th अगस्त का दिन है और आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप सबको जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। और कल का दिन जो है इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हम की टीम से, मेरी ओर से, काशिका की ओर से, माई टाइम लेकर मैं हाजिर हो जाती हूँ 12 बजे तक। आपका मेरा साथ है, 10 से 12 बजे का ये जो टाइम होता है आपका मेरा, वो लेकर आ जाते हैं कशिश फूड, जिनके सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है। कहाँ से सुन रहे हैं भाई, आपको याद दिला देते हैं कि हम बोर्डिंग कॉल जो है ये कभी भी हो सकती है और आप 2 रिटर्न टिकट्स टू वानुआटू जीत सकते हैं विद सॉलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 ऑफ स्पेंडिंग मनी। तो आपके लिए ये जो है कभी भी बोर्ड नाउ आ सकता है। जैसे ही बोर्ड नाउ आए आपको क्लिक करना है और रोवा ऐप पर पहुंच जाना है। 30 मिनट्स का टाइम है और आप जाकर फटाफट अपनी एंट्री उसमें कर दीजिएगा, क्लिक करिएगा सबमिट एंड दैट्स अबाउट इट। और साथ साथ आप को अगर डाउट हो रहा है कि कैसे आप वहाँ उस कंपटीशन पेज पे पहुँचे, आप बीसी लिख के भेजें और आपको हम कंपटीशन की पेज की लिंक भेज सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो कि हम बोर्डिंग कॉल आपके लिए ये अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट जो है, आइडिया जो है, जो लेकर आए हैं, वो थैंक्स कहना चाहते हैं टू सॉलोमन एयरलाइंस, जो 4 बार हफ्ते में फ्लाई करते हैं नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआटू। एंड विजिट कर सकते हैं flysolomons.com के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी जब आप हमारी कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं।
1: बचाओ क्या

0: सो मिड मॉर्निंग मज़ा में आज मैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम है फूड डिवोर्स. अब ये टर्म जो है यूके में जो है ये चल रही है. इट्स अ वेरी ड्रामेटिक नेम इज़न्ट इट. ये एक्चुअली कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं होता है. इंस्टेड जो कपल जो एक साथ रहते हैं दे चूज़ टू ईट सेपरेटली और ये जो खाना होता है एक रेगुलर सोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बन जाता है. ये क्यों बनाया, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और ऐसे में मुझे तो ये खाना था, मुझे तो वो नहीं खाना था. तो उस चीज़ को कहते हैं फूड डिवोर्स. और ये सरप्राइजिंगली बड़ा सिंपल है. आप एक साथ बैठते ज़रूर हैं, आप एक ही टेबल पर बैठते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता. आप अपना खाना खाते हैं, वो अपना खाना खाते. सो दैट्स बेसिकली कोई डिबेट नहीं है उसके रिलेटेड. ये फूड डिवोर्स डज नॉट मीन एक्चुअली कि अगर कोई कपल है वो स्प्लिट कर रहा है. इट्स क्वाइट द ऑपोजिट. ये डिसाइड किया जाता है कि कोई चीज़ जिस पे आप अग्री नहीं करते खाने में, आप खुद का अपना अपना खाना खाइए. को हो सकता है किसी को घर का खाना पसंद है, हो सकता है किसी को टेक अवे पसंद आता है, हो सकता है किसी को अर्ली डिनर पसंद है, हो सकता है किसी को लेट नाइट डिनर पसंद है. ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डाइट्स, एलर्जीज, स्ट्रॉन्ग फूड प्रेफरेंसेस, टाइमिंग्स, जहां आप एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते. तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग एवरी मील, जहां आप एक नेगोशिएशन कर रहे होते कल मैं ऐसे करने वाला हूं, आज तुमने ऐसा किया, तो कपल्स चूज टू ईट सेपरेटली. हाउ डज दैट वर्क वेल? आई थिंक ये डिनर पे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डू व्हाट यू वांट, ये करना वो करना, ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली क्वाइटन डाउन. सो ये एक आइडिया फूड डिवोर्स का आ गया बीच में. और यूके में जहाँ बहुत सारी एनर्जी एक दूसरे को मनाने में, एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट ना आने पे जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके बाद सॉर्ट हो जाता है एक सिंपल अपना मील लेने के हिसाब से. ये कॉन्सेप्ट जो है, कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमें आपका मील शेयर नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स कर सकते हैं, एक दूसरे का मील भी शेयर कर सकते हैं, नो ऑब्लिगेशन टू ईच अदर दो. लेकिन ये काफ़ी हद तक चल रहा है एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग वेरी वेरी वेल. लोगों के दिमाग से उनके जो मैरिटल लाइफ है या उनके जो पार्टनर्स के साथ हैं वो एक ईज हो गया, प्रेशर हट चुका है. ये कभी कपल साथ में बैठ के भी खा लें, इट डजंट मैटर, बट इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन. सो इन केस यू आर डूइंग इट ऑलरेडी, फैंटास्टिक. मे बी इसका नाम आपको शायद नहीं पता होगा, बट फूड डिवोर्स इज द टर्म यूज बाय The Metro UK.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
6: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
7: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
8: Dad's loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. A new water blaster, a new drill, a new barbecue, lawn mowers, edges.
7: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house.
9: Dads are always working on a project.
7: Bunnings is the best place to find a Father's Day present.
10: Bunnings Warehouse.
6: Lowest prices are just the beginning.
11: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health. Because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
12: Briscoe's is taking savings to the extreme with at least 40% off store-wide and incredible 60% off thrill-seeking savings. Don't miss at least 40% off store-wide. End Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
13: Flights to the Gold Coast now on sale with Qantas. Trade winter layers for sunshine, beach walks, rooftop cocktails and unforgettable family adventures. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends August 14. Terms and conditions apply.
14: Choice aapki hai at Winger Motors. Selected nay Omuda or Jeku models par paye 3.9% finance ya $2,000 cash back. Premium design, technology aur zabardast value. Super hybrid system.

0: Plus. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
3: अरे तो सिक्स वर्ड स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है मेरे पास और इन्होंने लिखा अनदर ईयर न्यू चैप्टर इन लाइफ. अनदर ईयर न्यू चैप्टर इन लाइफ. सो थैंक यू वेरी मच. आपका टेक्स्ट आया है 2125 एंड आपने नाम नहीं लिखा और आपका टेक्स्ट है, आपने लिखा स्टेइंग पॉजिटिव एंड लिविंग माई लाइफ. वाओ, स्टेइंग पॉजिटिव एंड लिविंग माई लाइफ. 7007 आपका बिल्कुल बॉन्ड वाला नंबर लगता है. कम ऑन, दिस इज ब्यूटिफुल.
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: काशिका।
1: वाह
2: हाँ। वैसे 5th of August के दिन एक अनाउंसमेंट हुआ था कि अजय देवगन इज कमिंग ऑन बोर्ड एज अ होस्ट फॉर क्राइम पेट्रोल 2026। ये एक पॉपुलर क्राइम शो जो है सोनी एंटरटेनमेंट पे और सोनी लिफ्ट पर आता है। कई रिपोर्ट्स में पता चला दैट ही इज रिप्लेस्ड अनूप सोनी और यू नो कितने साल से जो इसे होस्ट करते चले आ रहे हैं, बट दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अजय देवगन हैज डेफिनेटली नॉट रिप्लेस्ड अनूप सोनी एज द होस्ट ऑफ क्राइम पेट्रोल। अनूप सोनी इज नोन टू मी पर्सनली एज वेल एंड

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: So, अब आपके लिए एक एक्सपीरियंस जो है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते, अगले सैटरडे के दिन शाम 7 बजे वैदिक सेंटर में रवि तेज देव जो है ये एक इनक्रेडिबल लाइव बैंड के साथ कंटेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जो टैलेंटेड वोकलिस्ट जो हैं म्यूजिशियंस के साथ अकंपनी करने वाले हैं. नाउ दिस इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजेड कल्चरल ट्रस्ट और ये एक इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फीजी लेकर आने वाले हैं. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप मिस आउट नहीं करना चाहते. eventbrite.co.nz के जरिए आप ये टिकट्स जाकर खरीद भी सकते हैं. इसके साथ साथ कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है जो आप इंटरेस्टेड होंगे. और आपको बता देती हूँ, आज शाम को हो रहा है राधे राधे बॉयज़ का ग्रैंड भजन नाइट हनुमान विस्तार. अविनेश बलराम और साथ साथ जूनियर अशोक जो हैं ये ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आपके लिए अमेजिंग वैदिक सेंटर में आज शाम को एक्सपीरियंस रहने वाला है. इसके साथ साथ ऑकलैंड भक्ति संघ सत्संग जो है ये आपके लिए एक ग्रैंड 3 कॉर्नर कीर्तन नाइट लेकर आने वाले हैं 21 अगस्त के दिन वैदिक सेंटर में. $20 की टिकट्स भी हैं. डेफिनेटली आप मिस आउट मत कीजिएगा.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.

0: रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में आपको मैं बता रही थी कि लेफ़्ट ओवर सब्जीज के साथ हम क्या कर सकते हैं. अब लेफ़्ट ओवर सब्जीज के साथ हम मिक्स पकौड़े भी बना सकते हैं. वेरी वेरी गुड आइडिया. तो क्या करना है आपको, एक बड़े बोल के अंदर बेसन लेना है और ड्राई जो करी हुई जो लेफ़्ट ओवर करीज हैं, ड्राई सब्जी होनी चाहिए, वो आपने उसमें ऐड कर दिया. अब आप उसमें पानी ऐड करें थोड़ा सा इफ़ रिक्वायर्ड. वैसे सॉगी हो जाती कभी कभी सब्जियाँ जो होती है ना थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, बट थोड़ी एडजस्ट कीजिएगा सीजनिंग्स जो आपके हिसाब से सही है, आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से. ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, या अगर अजवाइन डालनी है अजवाइन भी ज़रूर आप डाल सकते हैं. छोटा छोटा प्याज डालना है आप डाल सकते हैं, लहसुन डालना है तो लहसुन, और बस डीप फ्राई कर लीजिएगा. दैट्स अबाउट इट. ये लेफ़्ट ओवर आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया. बट अ बिग थैंक यू टू यू शर्ली जो आपने मुझे ये भेज दिया. थैंक्स अ टन फॉर दिस. ओके नाउ एक चीज़ तो हमने पता है कि कल हमने सुना भी कि एक आर्म्ड मैन जो था ही वॉज फ्लीइंग द पुलिस एंड ही वॉज शॉट इन ऑकलैंड के सिल्विया पार्क में. कल दोपहर की ये बात थी, लेकिन ये पता चला था और दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज ऑन बेल. सो दिस वॉज सम इंफॉर्मेशन विच हैज़ कम थ्रू नाउ एंड पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन वॉट एग्जैक्टली हैपन. सो वी ऑल नो कि अराउंड 2 o'clock के शायद एक ए राइफल इन्होंने गन सिटी पेनरोज से चोरी करी और उसके बाद पुलिस जो है इनके पीछे थी और उसके बाद ये एक ड्राइव ऑफ करके किसी कार के अंदर और फिर वो सिल्विया पार्क तक पहुँचे, लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको ट्रैक किया जा रहा था. एंड फर्स्ट ही वेंट टू पाकुरंगा प्लाजा, फ्रॉम देयर ही ड्रोव टू अराउंड पैनम्योर माउंट वेलिंगटन हाईवे और उसके बाद अराउंड 2:50 ही रीच्ड सिल्विया पार्क. And that's about it. And rest we all, I think, know most of the thing. He was locked. Put in some kind of a bail. He was definitely there. But yes, बहुत से लोग affect हुए थे, बहुत से लोग traumatized भी हुए थे, बहुत सारी shooting की आवाज़ भी आई थी. And I hope whoever is there, who was there at that time in Sylvia Park, I hope you are safe.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार आज का दिन कहलाता है TGIF और ये है शुक्रवार आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे की सुबह 10 बजे कशिश फूड्स के सौजाने से आपके लिए माय टाइम लेकर मैं आ जाऊंगी 10 से 12 बजे का ये सफ़र आपके साथ बहुत बहुत खूबसूरत रहा आई लव्ड इट एंड साथ साथ जो पाकिस्तान के जो हमारे भाई बहन हैं उनको आज जश्न आज़ादी की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और कल जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपसे मुलाकात कल वहां पर महात्मा गांधी में जरूर होगी डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स बाय बाय